सुप्रभात। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आज दिन रविवार है। सक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 7 जून सन 2026। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:55 और 42 सेकेंड हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा।

0: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। चंद पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जाँच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक

0: धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। NTA ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। NTA ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में ना आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। KL राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: नमस्कार, आप हमें आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से सुन रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:05 और 9 सेकेंड हो चुके हैं। आइए अपने खूबसूरत दिन की शुरुआत करते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना से। जिस प्रकार सूर्य की प्रकाशमय किरणें रात के अंधकार को मिटा देती है, उसी प्रकार ईश्वर का बोध होना और उनकी भक्ति हमारे मन और बुद्धि में छिपे तमस को दूर करता है। हमें नित्य ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये खूबसूरत सा भजन।

मोको कहाँ ढूंढे बंदे। ये प्यारा सा भजन अभी आपने सुना लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौड़ की जुगलबंदी आवाजों में। श्रोताओं, आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद।

0: सही है। मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फेरिए माना, नींव से लेकर छत तक, भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
2: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: श्रोताओं, आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना। आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में ये भजन।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की।

0: और डायरेक्ट टू हार्ट,
1: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
0: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
1: दूरदर्शन डीटीएच सर्विस डीडी डायरेक्ट प्लस।
0: फॉर डिटेल्स लॉग ऑन टू www.ddindia.com।
2: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
3: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
5: श्रोताओं, आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में।

0: कषाय दहन शांतिम याति रागादिभि समम चेतः प्रसत्तिमाधत्ते वृद्ध सेवावलंबिनाम। जो लोग बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं उनकी मनोविकार रूपी अग्नि शांत हो जाती है, चित्त में निर्मलता आती है और प्रसन्नता प्राप्त होती है। सत्तत्व निकषोद्भूतम विवेकालोकवर्धितम येषां बोधमयं चक्षुः ते वृद्धा विदुषां मताः। जिसके तत्व परीक्षा करते करते ज्ञान रूपी आंखों में विवेक का प्रकाश जगमगाता रहता है, ऐसे ही महापुरुषों को विद्वान लोग वृद्ध पुरुष कहते हैं। सुधांशु रश्मि संपर्काद विसर्पति यथाम बुधिः तथा सद्वृत्त संसर्गात नृणाम प्रज्ञापयो निधिः। जिस प्रकार चंद्र की किरणों के संसर्ग से समुद्र में वृद्धि होती है, उसी प्रकार सदाचारी लोगों के संसर्ग से, उनकी सत्संगति से मनुष्य के बुद्धि रूपी समुद्र में भी विस्तार होता है, उनकी बुद्धि भी बढ़ती है। कुर्वन्नपि तपस्तीव्रम विदन्नपि श्रुतार्णवम नासादयति कल्याणम चेद वृद्धान अवमन्यते। चाहे व्यक्ति कितना ही घोर तपश्चर्या करे, शास्त्र रूपी समुद्र का भी पारगामी हो जाए, किंतु यदि वह वृद्ध जनों का अपमान करता है तो उसे कल्याण की और मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। दहति दुरित कक्षम कर्म बंधम लुनीते वितरति यम सिद्धिम भाव शुद्धिम तनोति जयति जनन तीरम ज्ञान राज्यं च दत्ते ध्रुवमिह मनुजानाम वृद्ध सेवैव साध्वी। भली भांति की गई वृद्ध सेवा से, बड़ो बूढ़ों की सेवा से निश्चय ही मनुष्य के पाप रूपी वन का भस्मीकरण हो जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं, कर्म के बंधन कट जाते हैं और संयम की सिद्धि होती है, परिणाम निर्मल होते हैं और संसार रूपी समुद्र का किनारा प्राप्त हो जाता है। इसलिए बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए, ऐसी शास्त्रों की आज्ञा है। समाम्बुभि क्रोध शिखी निवार्यताम नियम्यताम मान मुदार मार्दवैहि यंच मायार जव शस्त्र धारया मुनीश लोभश्च परिग्रहात्ययात्। जब क्रोध रूपी अग्नि प्रज्वलित हो रही हो तब उसे क्षमा रूपी जल से बुझा देना चाहिए, अभिमान को मृदुता से जीतना चाहिए, माया का भाव मन में जब जागृत हो तो उसे सरलता से मिटाना चाहिए, और जब लोभ की वृत्ति बढ़ रही हो तो उसे अपरिग्रह की भावना से दबा देना चाहिए। येन येन निवार्यन्ते क्रोधाद्या परिपन्थिनः स्वीकार्यम् अप्रमत्तेन तत्तत् कर्म मनीषिणा। बुद्धिमान मनुष्य वही है जो आलस्य छोड़कर ऐसा ही कार्य करता है जिनसे मन के विकार नहीं होते, क्रोध आदि उत्पन्न नहीं होते, ऐसे ही जो कार्य करता है वही वास्तव में बुद्धिमान है। व्यवहारे सुषुप्तो यः सजागर्त्यात्मगोचरे जागर्ति व्यवहारेऽस्मिन् सुषुप्तश्चात्मगोचरे। जो व्यक्ति सांसारिक विषयों के प्रति उदासीन रहता है वही आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में यत्नशील रह सकता है। इसके
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे अमर वाणी। ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप हमें आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से सुन रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:35 और 30 सेकेंड हो चुके हैं।

श्रोता आप सुन रहे थे भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना। ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप हमें आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से सुन रहे हैं। प्रस्तुत है अमर वाणी।

आज प्रातः 6:40 पर भक्ति भाव श्रोताओं के लिए श्री रामचरित मानस से संगीतमयी पाठ का प्रसारण किया जाएगा। प्रातः 6:55 पर आप रूबरू होंगे देश दुनिया की खबरों से, जिसका प्रसारण किया जाएगा हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं में हमारा दिल्ली आकाशवाणी केंद्र से।

उर्दू प्रेमियों के लिए उर्दू कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा प्रातः 9:30 पर हमारे लखनऊ आकाशवाणी केंद्र से, और खबरनामा वो सुन सकेंगे प्रातः 8:30 पर हमारे दिल्ली आकाशवाणी केंद्र से।

सुगम संगीत का आनंद आप ले सकेंगे प्रातः 9:50 पर, दोपहर 12:55 पर और शाम 8:15 पर। श्रोताओं, आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश का प्रसारण किया जाएगा प्रातः 10:05 पर।

फिल्म संगीत प्रेमियों के लिए कार्यक्रम पूर्वा सुहानी प्रातः 7:31 पर, हिट्स सुपर हिट्स प्रातः 8:45 पर, गीतांजलि प्रातः 11:30 पर, गीत सुहाने दोपहर 12:30 पर, गीत मंजरी 12:45 पर और एक ही फिल्म से शाम 7:31 पर प्रसारित किया जाएगा।

लोकगीत प्रेमियों के लिए लोकगीत कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 11:05 पर एवं शाम 6:45 पर। महिलाओं और बहनों के लिए कार्यक्रम नारी जगत का प्रसारण किया जाएगा दोपहर 1:15 पर।

बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल मंच आप सुन सकेंगे दोपहर 12 बजे। भोजपुरी भाषा प्रेमियों के लिए भोजपुरी समाचार शाम 6 बजे और भोजपुरी कार्यक्रम देश हमार शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। युवाओं के लिए कार्यक्रम युवा वाणी शाम 5:05 पर, ग्राम जगत शाम 5:35 पर, हिंदी कार्यक्रम शाम 8 बजे एवं अखिल भारतीय संगीत सभा का प्रसारण किया जाएगा शाम 10 बजे से। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की प्रसारित की जाने वाली चंद कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है आप सभी के लिए श्री रामचरितमानस से संगीतमयी पाठ।

राम लक्ष्मण को छोड़ जब सीता को भी किसी भांति गंगा तट से लौटा लाने की मंत्री सुमंत्र की सभी युक्तियां निष्फल रहीं, तो उन्होंने रथ को अयोध्या की ओर हांका। राम से बिछुड़ते हुए रथ में जुटे अश्वों की हिनहिनाहट रूपी विकलता देख पास खड़ा निषाद समूह सिर धुन धुन कर पछताने लगा। गंगा पार करने के लिए नाव की आवश्यकता थी। राम ने नाव मांगी किंतु केवट नाव नहीं लाता, कहता है, मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के बारे में सभी कहते हैं कि वो मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। यदि उसकी नाव भी मुनि पत्नी की भांति उड़ गई तो उसके परिवार की तो रोजी मारी जाएगी। लक्ष्मण यदि उसे तीर भी मार दें तो भी वो बिना राम के चरण पखारे उन्हें नाव पर नहीं चढ़ाएगा। कैसा विलक्षण दृश्य है! एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं। जिन्होंने वामन अवतार लेकर जगत को तीन पग से भी छोटा कर दिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र गंगा पार कराने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, और फिर गंगा पार ले जाकर वही केवट उतराई नहीं लेता, कहता है, नाथ आज मैं कह न पावा।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र से आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमयी पाठ। ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए।

0: प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details, log on to www.ddindia.com।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
5: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं हमारे दिल्ली आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः आर्थिक परामर्श परिषदः सदस्यैः समं आकारितस्य उपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्।

0: राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्ष के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं के आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की खबरों का खंडन किया है। NTA ने कहा कि ये छात्रों उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। NTA ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बनाए। न्यू चंडीगढ़ में खेल समाप्त होने तक कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। KL राहुल ने 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। आज पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवा के साथ बिजली चमकने की भी आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: www.thepodcast.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 220-24075 या 228-6016 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details, log on to www.ddindia.com।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
5: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.com।

0: www.sbs.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
3: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
4: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
3: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
4: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
3: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
4: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
5: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। चंदपलों में आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार।
6: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
7: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
6: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
7: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
6: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
7: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना।
5: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।
8: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में 516 करोड़ रुपए की 265 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन की सरकार के विकास कार्यों से प्रदेश की बनी नई पहचान। मुख्यमंत्री ने की राजकीय रेलवे पुलिस के कार्यों की समीक्षा।

0: रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को अधिक परिणामोन्मुख बनाने पर दिया जोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया भर में छाई आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदला भारत। और प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए कल से 10 जून तक आयोजित होगी परीक्षा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर परीक्षा की तैयारियों का किया गया पूर्वाभ्यास। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के माध्यम से ही प्रदेश की नई पहचान बनी है। मुख्यमंत्री कल गोंडा में 516 करोड़ रुपए लागत की 262 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास को लेकर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास विजन के तहत सरकार बिना भेदभाव घर घर तक विकास योजनाएं पहुंचा रही है।
1: हर पात्र व्यक्ति को, वह किसी जाति का हो, किसी मत संप्रदाय का हो, अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसको योजना का लाभ दिया जाएगा। और यही तो मोदी जी ने कहा था, सबका साथ और सबका विकास।
0: इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कल ही तुलसीपुर में देवी शक्ति पीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन किया और मां से सुखी स्वस्थ एवं समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राज्य की रेलवे पुलिस के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि प्रदेश में रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, तकनीक सक्षम और परिणामोन्मुख बनाया जाए। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा, महिला सम्मान, अपराध नियंत्रण और त्वरित पुलिस सहायता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अभियोजन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अपराधियों को त्वरित एवं प्रभावी दंड सुनिश्चित करने पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचाल प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के सफल समापन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने कल वहां दीनदयाल हस्तकला संकुल का दौरा किया। सदस्यों ने भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा की समृद्ध विरासत को दर्शाने वाले संग्रह को देखा। इससे पूर्व प्रतिनिधिमंडल ने भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का भ्रमण किया। बौद्ध तीर्थ स्थल के दर्शन के दौरान प्रतिनिधि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित नजर आए। ब्राजील से आए प्रतिनिधि लुकास ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह अनुभव उनके लिए बेहद प्रेरणादायक और अविस्मरणीय रहेगा। प्रतिनिधियों ने बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर का भी भ्रमण किया। इस अवसर पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि इस भ्रमण का उद्देश्य विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की वास्तविक संस्कृति, धरोहरों और जीवंत परंपराओं से रूबरू कराना है।
2: ब्रिक्स मीटिंग, उसमें कई सारे ट्रैक्स होते हैं, उसमें ट्रेड है, इन्वायरमेंट है, कल्चर इज आल्सो वन ऑफ द ट्रैक ऑफ ब्रिक्स मीटिंग्स। तो कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट ट्रैक है और कल्चर के हम बातें तो करते हैं मीटिंग में, जब तक दिखाएंगे नहीं तो उनको शायद उतना समझ भी नहीं आए। हम चाहते हैं कि हम जो भी कल्चर के बारे में बात करते हैं उसको हम दिखाएं भी।
0: प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर कल बस्ती पहुंचे। मीडिया से बातचीत में श्री राजभर ने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करती है, इसलिए वो इतने लंबे समय तक शासन करने वाले प्रधानमंत्री बन रहे हैं।
3: मोदी जी पर देश के 140 करोड़ जनता विश्वास कर रही है और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाया। 10 जून को 12 साल कार्यकाल पूरा उनका होगा और देश में आजादी के बाद पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी होंगे जो लगातार लंबे समय तक देश में शासन करने वाले प्रधानमंत्री गिने जाएंगे।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चित

0: आवश्यकताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच 3 दिवसीय दौरे पर एक दिन पूर्व लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल दौरे के दूसरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने हरदोई रोड स्थित मिलेनियम पैलेस में पश्चिम मंडल 2 के प्रबुद्ध नागरिकों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ संवाद बैठक की। प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा कल से 10 जून तक प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार परीक्षा की तैयारियों का पूर्वाभ्यास किया गया। कानपुर में प्रशासन ने व्यवस्थाओं को लेकर गोष्ठी आयोजित की। साथ ही रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिवहन निगम रियायती दरों पर परीक्षार्थियों को सेवा उपलब्ध कराएगा। प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक शीघ्रता से पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वाराणसी में आयोजित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ऊर्जा मंत्री श्री शर्मा ने योजना की प्रगति, उपलब्धियों और आगामी कार्य योजना की विस्तार से समीक्षा की। एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और प्रोत्साहन से देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है।
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा और प्रोत्साहन से पूरे देश में सोलर रिवोल्यूशन हो रही है, सौर क्रांति हो रही है। उसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा लगभग 2 साल पहले की गई थी और उस योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में काम हो रहा है। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी हम लोग पीएम सूर्य घर को लेकर के प्रगति कर रहे हैं।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि विस्तारित कर दी है। विद्यार्थी अब आज मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल यानी 6 जून तक ही निर्धारित थी। अयोध्या के श्री राम मंदिर परिसर में स्थित शेषावतार मंदिर के शिखर पर आगामी 23 जून को ध्वजा स्थापना होगी, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया, कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में 516 करोड़ रुपए की 262 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों से प्रदेश की बनी नई पहचान। मुख्यमंत्री ने की राजकीय रेलवे पुलिस के कार्यों की समीक्षा। रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को अधिक परिणामोन्मुख बनाने पर दिया जोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया भर में छाई आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदला भारत और प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए कल से 10 जून तक आयोजित होगी परीक्षा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर परीक्षा की तैयारियों का किया गया पूर्वाभ्यास। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान,

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है आप सभी के लिए फिल्म संगीत कार्यक्रम पूर्वा सुहानी। आइए सुनते हैं आरती फिल्म से ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। बोल हैं मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत है रोशन का। तो आइए सुनते हैं आरती फिल्म से ये गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना दोस्ती फिल्म से ये प्यारा सा गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बोल थे मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आप आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र से सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम पूर्वा सुहाने। कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम पूर्वा सुहानी। आइए सुनते हैं तकदीर फिल्म से ये प्यारा सा गीत। इस गीत को सुरबद्ध किया है उषा मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने। बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तो आइए सुनते हैं तकदीर फिल्म से ये गीत।

तकदीर, इस फिल्म से अभी आपने सुना ये गीत। श्रोताओं, आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम पुरवा सुहानी। आइए सुनते हैं जीवन मृत्यु फिल्म से ये प्यारा सा गीत। इस गीत को सुरबद्ध किया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने, बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आप सुन रहे हैं किशोर कुमार को, फिल्म है पिया का घर। इस फिल्म से आप सुन रहे हैं ये गीत। इस गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

फिल्म संगीत कार्यक्रम पूर्वा सुहानी में ये आखिरी गीत आप सुनेंगे मुकेश की आवाज़ में। बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो आइए सुनते हैं उपहार फिल्म से ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म संगीत कार्यक्रम पूर्वा सुहानी। कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य
3: घर। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।

0: गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव JK सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। NTA ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। NTA ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारम्भ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
2: Collaborate closely to maintain security.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
4: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या

0: वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
2: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
1: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
3: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संतफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
1: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
4: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक के बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा

0: ने भारत की अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
1: केरलम के साथ

0: ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जलमदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। होम मिनिस्टर अमित शाह कॉल्स फॉर शार्पर विजिल ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स। National Testing Agency dismisses claims of NEET UG 2026 re-exam paper leak as false, warns of strict action against those spreading such content. West Bengal government to undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state. India hands over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal. International Air Transport Association says India will be significant player to air traffic boom in Asia-Pacific region by 2044. And in football, India beat defending champions Bangladesh 3-1 to win SAF Women's Championship for record sixth time. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has called for a sharper

0: और फुटबॉल में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर लगातार छठी मर्तबा ख्वातीन की सैफ चैंपियनशिप जीत ली है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने माली लेन देन, इमारतों की तामीर और बैन अलाक्वामी सरहदों पर जायदादों पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत पर जोर दिया है। अमित शाह की तरफ से हिदायत उस वक्त सामने आई जब उन्होंने शिमाल मशरिकी रियासत के सरहदी इलाकों से मुतालिक BSF के त्रिपुरा फ्रंटियर हेडक्वार्टर में एक मीटिंग की सदारत की। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ीरे दाखला ने यह हिदायत भी की कि गुज़िश्ता 5 साल की ज़मीन से मुतालिक रिकॉर्ड्स की जांच कराई जाएगी। जनाब शाह ने कहा कि मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहनी चाहिए और मनशियात की स्मगलिंग में मुलविस लोगों की पूरी चेन से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरहदी ज़िलों में माली ज़ाब्तगी को यकीनी बनाना रियासतों की जिम्मेदारी है। जनाब शाह ने हिदायत दी कि कलेक्टर्स और GST अफसरों को भी तरबियत दी जानी चाहिए और बराह रास्त टैक्सों के मरकजी बोर्ड CBDT जाली करेंसी का सर्वे कराए। वजीर दाखला ने कहा कि सरहदी इलाकों में रहने वालों को तरबियत देने के लिए कैंपों का अहतमाम किया जाना चाहिए ताकि मनशियात और आतिशी असलाह के खतरात से निपटा जा सके। उन्होंने हिदायत दी कि इन कैंपों से पटवारियों, मकामी पुलिस और BSF अमले की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। मीटिंग में इस बात को उजागर किया गया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बैन अलाक़्वामी सरहदों से मुत्तसिल इलाकों के आला मेयारात को यकीनी बनाने के तहत पूरी तरह कारबंद है, जबकि वो सरहदी इलाकों की मजमूई तरक्की और सलामती के लिए मरकज़ और रियासतों के दरमियान करीबी तालमेल को फ़रोग दे रहा है। आदित्य दत्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: कौमी टेस्टिंग एजेंसी NTA ने NEET UG 2026 के दोबारा हो रहे इम्तिहान का सवालिया पर्चा लीक होने, उस तक पेशगी रसाई और फरोख से मुतालिक सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश कर रहे दावों को मुस्तरद कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि ये मुनज़्ज़म जालसाजी गिरोहों का काम है जो तलबा और उनके कुनबों की बेचैनी पर पनपते हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: NTA ने कहा है कि इम्तिहान की मोतबरियत पूरी तरह कायम है और उम्मीदवारों के लिए मुनसिफाना और महफूज इम्तिहान को यकीनी बनाने के लिए सभी ज़रूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। NTA ने कहा है कि वो इस तरह के चैनलों, अकाउंट्स और मवाद की सरगर्म तरीके से पहचान में लगा हुआ है और मुतल्लिका प्लेटफॉर्म्स और साइबर जराइम हुकाम से इसे हटाने और कार्रवाई करने में मसरूफ़ है। एजेंसी ने उम्मीदवारों और तलबा को मशवरा दिया है कि वो किसी तरह का कोई माली लेन देन ना करें, ना ही इसी तरह के किसी मैसेजेस को आगे बढ़ाएं और ना ही धोखेबाजों के फरेब में आएं। NTA ने उम्मीदवारों से अफवाहों को नज़रअंदाज करने और मोतबर मालूमात के लिए NTA की मुस्तनद वेबसाइट और चैनलों पर ही इन्हेसार करने की अपील की है। नई दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकजी वजीर मुमलिकत अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में डिजिटल सेहत इको निज़ाम को फ़रोग देने के तई अहद बस्ता है। आकाशवाणी न्यूज़ के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 90 करोड़ से ज़्यादा मुनफरद आभा शिनाख्ती कार्ड्स बनाए हैं और 100 करोड़ से ज़्यादा डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड्स को इन आभा ID से मुंसलिक कर दिया गया है। मुकम्मल इंटरव्यू 100.1 MHz आकाशवाणी FM गोल्ड और इजाफी मीटरों पर आज शाम 7:10 पर मोदी हुकूमत के 12 साल की हमारी खसूसी सीरीज़ में नशर किया जाएगा। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि BJP सरकार रियासत में दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों जैसे अहम मजहबी मकामात पर सहूलतें बढ़ाने की गरज से बड़े तरक्याती इकदाम करेगी। कोलकाता में एक प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि तारकेश्वर में आइंदा होने वाले सराबनी मेला के लिए वसी इंतजाम किए जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस की साबिका इंतजामिया पर तनकीद करते हुए वजीर आला ने इल्ज़ाम लगाया कि मगरबी बंगाल ने गुज़श्ता 15 साल के दौरान रोजगार के मौके की कमी और निज़ाम में बदउनवानी की वजह से काफ़ी नुकसान उठाया है। जनाब अधिकारी ने जोर देते हुए कहा कि टीएमसी हुकूमत के दौरान खुशामद पसंदी की सियासत ने तरक्की को पीछे छोड़ दिया है। मगरबी बंगाल को एक मुकद्दस रूहानी सरजमीन बताते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि खुशामद पसंदी

0: लाकानूनियत और सरमायाकारी की कमी का दौर अब ख़त्म हो गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल पीएम इक्तिसादी मुशावरती कौंसिल के मेंबरों के साथ एक मीटिंग की सदारत की। वज़ीर आज़म और इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल ने आलमी उथल पुथल के दौर में भारत की माशी तरक्की को मज़ीद फ़रोग देने की खातिर मुख्तलिफ इकदामात और तजवीज़ों पर तबादला ख्याल किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने इस मीटिंग में भारत की इक्तिसादी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात से मुतालिक मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा मीटिंग के शुरका ने इस्लाहात के सफर में और तेज़ी लाने, नीज रहन सहन और कारोबार करने में सहूलत को यकीनी बनाने के बारे में भी अपने अपने नुक्ते नज़र पेश किए। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने साल 2015 के जलजले के बाद के तामीर नौ प्रोग्राम के तहत 72 सेहत मराकज और 12 सकाफती विरसों से मुतालिक प्रोजेक्ट्स नेपाल को सौंपे हैं। नेपाल के अपने हम मनसब शिशिर खनाल के साथ नई दिल्ली में मुलाकात के बाद उन्होंने वर्चुअल तरीके से इन मराकज और प्रोजेक्ट्स को नेपाल के हवाले किया। दोनों रहनुमाओं ने सरहद पार जाती तरसील जर को आसान बनाने के लिए मुश्तरका तौर पर यूपीआई इंडिया और नेपाल के यूपीआई को जोड़ने का आगाज़ किया। दोनों रहनुमाओं ने डिजिटल इंडिया भाषिनी और काठमांडू यूनिवर्सिटी के दरमियान कौमी डिजिटल बुनियादी ढांचे की मुश्तरका तख्लीक से मुतालिक मफाहमत नामे का तबादला ख्याल किया। जनाब खनाल के साथ अपनी मुलाकात के दौरान वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी तवील और खुली सरहद पर सलामती को बरकरार रखने के लिए करीबी तआवुन से काम कर रहे हैं और दोनों मुल्क ज़रूरत पड़ने पर हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। इस मौके पर जनाब शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे अहम साझेदार है और नेपाल भारत को अव्वलीन तरजीह देता है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल और भारत महज दो मुल्क नहीं बल्कि शानदार कदीम तहजीब के फरीक भी हैं। इंडोनेशिया के वजीर खारजा सुगियोनो नई दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां वो वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ 8वीं भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मुश्तरका सदारत करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा ने बताया कि मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमा भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी का जायजा लेंगे और दो तरफा तआवुन को मजीद वसत देने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल करेंगे। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA ने कहा है कि भारत एशिया बहरुल काहिल खित्ते में हवाई ट्रैफिक की तरक्की की दास्तान में अहम रोल निभा रहा है। IATA के मुताबिक एशिया बहरुल काहिल खित्ते में साल 2044 तक हवाई मुसाफिरों की तादाद बढ़कर 4.1 अरब हो जाएगी। एशिया बहरुल काहिल के लिए IATA के इलाकाई नायब सदर शेल्डन ही ने कल ब्राज़ील के शहर में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि गुज़िश्ता बरसों में खित्ते की हवाबाजी की तरक्की की दास्तान में भारत का तआवुन काफ़ी अहम रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में तेज़ी से उभरते हुए शहरी हवाबाजी के घरेलू बाजारों में से एक है। जनाब ही ने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता 5 से 10 साल के दौरान एशिया बहरुल काहिल खित्ता काफ़ी मजबूत रहा है और अगली एक दहाई के दौरान भी इसके मुस्तहकम बने रहने का इम्कान है। 14.2 किलोग्राम वाले खाना पकाने वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। ये इजाफा आज से नाफिज हो गया है। दिल्ली में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत अब 942 रुपये होगी, जबकि इससे पहले ये 913 रुपये थी। केरलम के 7 जिलों में बहुत शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पेश है हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
1: केरलम में त्रिशूर, पलक्कड़, मल्लापुरम, कोझिकोड, वायनाड, किन्नौर और कासगौड़ के शुमाल करिकली ज़िलों में आज बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाकी 7 ज़िलों में शदीद बारिश से मुतालिक येलो अलर्ट का ऐलान किया गया है। तवक्को है कि पीर तक केरालम में शदीद बारिश जारी रहने का इम्कान है। आज सुबह केरालम में तकरीबन सभी ऑब्जर्वेटरीज़ की तरफ से बारिश की इतला दी गई है। केरालम के साहिली इलाकों में मछलियाँ पकड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: भारतीय महकमा मौसमियात ने साहिली कर्नाटक, केरलम और माहे के मुख्तलिफ मकामात पर आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा शिमाल मशरक

0: कि भारत अंडमान निकोबार जजायर कर्नाटक कोंकण और गोवा लक्षद्वीप महाराष्ट्र जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल सिक्किम तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी आज दिन में बारिश का इम्कान है। मौसमियात की एजेंसी ने आंध्र प्रदेश बिहार झारखंड मध्य प्रदेश उड़ीसा तेलंगाना मगरबी बंगाल और सिक्किम के मकामात पर आज गरज चमक के साथ आंधी चलने की पेशगोई की है। वहीं साहेली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में आज गर्म लू की सूरत हाल रहने का इम्कान है। इसी तरह उड़ीसा में आज रात गर्मी की सूरत हाल जारी रहने का भी इम्कान है। फुटबॉल में भारत ने खवातीन की सेफ चैंपियनशिप 2026 का टाइटल जीत लिया है। गोवा के शहर मारगांव में कल खेले गए फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 1-3 से हरा दिया। इस तरह भारत ने छठी मर्तबा ये चैंपियनशिप जीती है। फाइनल मैच में भारत शुरू ही से बांग्लादेश पर हावी रहा। दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ जारहाना खेल का मुजाहरा किया। पहले हाफ में प्यारी ज़ियाक्सा ने गोल करके भारत को बढ़त दिलाई। अलबत्ता बांग्लादेश की तरफ से ऋतुपूर्णा ने गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। हाफ टाइम तक स्कोर 1-1 था। खेल के दूसरे हाफ में भारत पूरी तरह खेल पर हावी हो गया और सेन फिदा ने शानदार दूसरा गोल करके भारत को फिर से शक्कत दिलाई और फिर लिंडा कॉम ने तीसरा गोल करके मैच भारत के हक में कर दिया और इस तरह भारत मैच 3-1 से जीत गया। हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप तीसरी बार जीत लिया है। काका मिगाहारा में खेले गए फाइनल में भारत ने जापान को 1-4 से शिकस्त दी। अफगानिस्तान के खिलाफ वाहिद टेस्ट मैच में भारत आज न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे दिन 3 विकेट पर 368 रन से आगे अपनी पहली इनिंग्स फिर से शुरू करेगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में इक्तसादी मुशावरती काउंसिल मीटिंग के दौरान मगरबी एशिया की सूरत हाल के घरेलू मईशत पर पड़ने वाले असरात पर तबादला ख्याल की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। मीटिंग के दौरान मुमताज़ माहरीन इक्तसादियात और पॉलिसी माहरीन ने मगरबी एशिया कशीदगी और इसके भारतीय सप्लाई चेन पर असरात पर खसूसी बातचीत की। वहीं इनकलाब ने कौमी राजधानी खत्े में पड़ रही शदीद गर्मी को भी अहम खबर बनाया है। अखबार के मुताबिक NCR में कई मकामात पर दर्ज हरारत 43 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर दाखला अमित शाह ने माली लेन देन इमारतों की तामीर और बैन अलाक़वामी सरहदों पर जायदादों की खरीद व फरोख्त पर कड़ी नजर रखने की जरूरत पर जोर दिया है। कौमी जांच एजेंसी ने नीट UG 2026 के दोबारा हो रहे इम्तिहान का पर्चा लीक होने के दावों को मुस्तरद करते हुए इसे गलत करार दिया है। वहीं उसने इस तरह की खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। मगरबी बंगाल हुकूमत रियासत में अहम मजहबी मकामात पर सहूलतों को बढ़ाने की गरज से बड़े तरक्याती इकदाम करेगी। भारत ने सेहत से मुतालिक 72 सहूलतें और 12 सकाफती विरासती प्रोजेक्ट्स नेपाल को सौंपी हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कहा है कि भारत 2044 तक एशिया बहरुल काहिल खत्ते में हवाई ट्रैफिक के जबरदस्त इजाफे में कलीदी रोल अदा करेगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: श्रोताओं, आप हमें मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 kHz तथा FM 100.1 MHz पर आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र से सुन रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8:45 और 18 सेकंड हो चुके हैं। प्रस्तुत है आप सभी के लिए फिल्म संगीत कार्यक्रम हिट्स सुपर हिट्स। आइए सुनते हैं साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ ये प्यारा सा गीत। इस गीत को सुरबद्ध किया है महेंद्र कपूर ने और संगीतकार हैं रवि। फिल्म है हमराज। तो आइए सुनते हैं हमराज फिल्म से ये प्यारा सा गीत।

हमराज फिल्म से अभी आपने सुना ये गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में। श्रोताओं, आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम हिट्स सुपर हिट्स। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत। इस गीत के बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने, संगीतकार हैं जयदेव और फिल्म का नाम है हम दोनों।

0: मुनीम जी, इस फिल्म से अभी आपने सुना ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। गीतकार थे साहिल लुधियानवी और संगीतकार थे एसडी बर्मन। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम हिट्स सुपर हिट्स। कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद।
1: पापा, लाइए 3,000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ।
2: हैं?
1: है नहीं, हाँ, सीधे यूपीआई से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ।
2: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
6: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
7: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
7: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
7: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
6: For details, log on to www.ddindia.com।
8: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम हिट्स सुपर हिट्स। आइए सुनते हैं गुमराह फिल्म से ये गीत महेंद्र कपूर की आवाज में। संगीतकार हैं रवि और गीतकार हैं साहिल लुधियानवी।

फिल्म संगीत कार्यक्रम हिट सुपर हिट्स में आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये प्यारा सा गीत। इस गीत को सुरबत किया है लता मंगेशकर ने, संगीतकार हैं मदन मोहन और फिल्म का नाम है अदालत।

अदालत, इस फिल्म से अभी आपने सुना इस गीत को लता मंगेशकर की आवाज़ में। श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम हिट सुपर हिट्स इस कार्यक्रम का आखिरी गीत है अनपढ़ फिल्म से। इस गीत को सुरबद्ध किया है लता मंगेशकर ने। संगीतकार हैं मदन मोहन और गीतकार हैं रजा मेहंदी अली खान। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत फिल्म अनपढ़ से।

0: अनपढ़ इस फिल्म से अभी आपने सुना ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम हिट सुपर हिट्स कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। चंपलों में आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से प्रसारित अगला कार्यक्रम।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे पीएम सूर्य घर योजना में उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के निदेशक रविंद्र सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता ओम अवस्थी।
2: केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश के 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में देश में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है। प्रदेश में अब तक 5 लाख से अधिक सोलर रूफटॉप पैनल लगाए जा चुके हैं, जिससे प्रतिदिन लगभग 5 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली उत्पन्न हो रही है। प्रदेश में सोलर एनर्जी से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यूपी नेडा के निदेशक रविंद्र सिंह जी। आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल में सौर ऊर्जा क्षेत्र में हुए बदलावों को आप किस तरह से देखते हैं? उत्तर प्रदेश की उपलब्धि इसमें कितनी महत्वपूर्ण है?
3: जैसा कि आपने बताया, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी सौर ऊर्जा को और अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। यदि हम पीएम सूर्य घर योजना की बात करें तो विशेष रूप से इसमें हमें लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। अभी तक उत्तर प्रदेश में स्कीम के शुरू होने से लेकर अभी तक 5,65,000 के आसपास घरों को

0: डिक्रिप्ट कर दिया गया है और इससे 1900 से ज्यादा मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हम ले पाए हैं।
1: जी, प्रदेश में अप्रैल 2026 में 30 दिनों के भीतर 51,882 संयंत्र स्थापित करने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना। इतनी तेज गति की प्रगति जो हुई है, इसके पीछे क्या रणनीति काम आई?
0: हम निरंतर अलग अलग चीजों को ट्राई कर रहे हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम इस स्कीम के लाभों को पहुंचा सकें। इसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि ये स्कीम बहुत ही अच्छे से डिजाइंड है, इसके प्रोविजन बहुत ही अच्छे हैं जिनकी से लोगों को काफी फायदा हो रहा है। उदाहरण के तौर पर इसमें 3 किलोवाट का अगर कोई व्यक्ति अपना सोलर रूफटॉप लगाता है तो केंद्र सरकार की तरफ से 78,000 रुपए की उसको सब्सिडी मिलती है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार भी अपनी तरफ से 30,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है और इसके अलावा लोगों के पास में बैंक से लोन लेने की सुविधा भी उपलब्ध होती है जिसमें बैंक 6% की बहुत ही कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराता है। और अगर लॉन्ग टर्म में हम देखें तो जो मासिक ईएमआई होती है वो इतनी कम होती है कि उससे ज्यादा कई बार लोगों की सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा की बचत हो जाती है। इसी प्रकार से नेट मीटरिंग भी की गई है जिससे कि जो एक्सेस एनर्जी किसी घर में अगर उत्पादित होती है तो उससे उनका बिजली का बिल भी कम हो जाता है। इसके अलावा हमने आईसी एक्टिविटीज का जागरूकता का प्रचार प्रसार के बहुत सारी चीजें की हैं। विभिन्न जनपदों में हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम इस संदेश को पहुंचा पाए कि इस योजना के क्या क्या लाभ हैं।
1: आपने बताया जैसे कि लगभग प्रतिदिन करीब जो है 5 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली जो है इस योजना के तहत उत्पन्न की जा रही है प्रदेश में, तो इससे आम उपभोक्ताओं के जीवन में किस तरह से राहत पहुंची है, उसका क्या असर पड़ा है?
0: जैसा कि आपने बताया रोज लगभग 5 करोड़ से अधिक की इसमें विद्युत की उत्पादकता हो रही है। आपने जैसे मेंशन किया था कि अप्रैल में हमारा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, मैं बताना चाहूंगा कि मई महीने में हम उससे भी ज्यादा कर पाए और लगभग 64,000 के आसपास हम पूरे माह में इसमें अचीव कर पाए हैं। तो इस हिसाब से प्रत्येक दिन अगर हम देखें तो अपने आप में सिर्फ इस योजना के तहत ही 7 मेगावाट के आसपास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ रही है। तो निरंतर इसमें कैपेसिटी जो है उसमें भी वृद्धि हो रही है, जो लगातार हमारी सौर ऊर्जा उत्पादित हो रही है घरों में उसमें भी वृद्धि हो रही है।
1: जी, आपने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारें मिलकर सब्सिडी दे रही हैं, तो अभी तक लाभार्थियों को प्रदेश के कितने सब्सिडी प्राप्त हो चुकी है?
0: अभी तक हम स्कीम के शुरू होने से लेकर अब तक की बात करें तो केंद्र सरकार की ओर से 3600 करोड़ की सब्सिडी लाभार्थियों तक पहुंचा चुके हैं हम, और इसी प्रकार से राज्य सरकार की तरफ से भी अपनी ओर से 1200 करोड़ से अधिक की सब्सिडी दी गई।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, इसको हासिल करने के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
0: हमने पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके गाइडेंस में उनकी प्रेरणा से रिन्यूएबल एनर्जी में 22,000 मेगावाट से अधिक का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसमें कई सारे हमने कंपोनेंट्स रखे हैं। एक तो इंडिविजुअल रूफटॉप सोलराइजेशन का है जो कि हमारा पीएम सूर्य घर में कवर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम बड़े यूटिलिटी स्केल सोलर परियोजनाओं को भी टारगेट कर रहे हैं जिसके तहत हमने 14,000 मेगावाट का टारगेट रखा है अलग अलग जनपदों में जिसमें खास करके बुंदेलखंड के जनपद भी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त कृषि के क्षेत्र में हमने पीएम कुसुम एवं अन्य योजनाओं से भी 2,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को अचीव करने का लक्ष्य रखा है।
1: आपने पीएम कुसुम योजना का जिक्र किया, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, किस तरह से इस योजना से उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो लाभान्वित हो?
0: पीएम कुसुम में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं तो उसमें से जो यूपी नेडा जिन कंपोनेंट्स को क्रियान्वित कर रहा है उसमें एक है सीवन। इसमें हम किसानों को जो उनका निजी पंप होता है उसके सोलराइजेशन के लिए को स्कीम को क्रियान्वित करते हैं और इसमें भी भारत सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। मुझे ये बताने में खुशी है कि इसमें अभी तक हम पीएम कुसुम सीवन कंपोनेंट में 7,800 से अधिक किसानों को लाभान्वित कर चुके हैं और इसमें भी उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान।
1: जी, सौर ऊर्जा क्षेत्र रोजगार सृजन का कितना बड़ा माध्यम बनकर उभरा है?
0: सौर ऊर्जा क्षेत्र के माध्यम से रोजगार में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। जो पीएम सूर्य घर में हम अधिक से अधिक घरों को इसमें लाभान्वित कर पाए हैं इसका एक प्रमुख कारण ये भी रहा है कि हमने ज्यादा से ज्यादा नए वेंडर्स को इसमें जोड़ने की कोशिश की है। अभी हमारे पास में कुल मिलाकर 6,500 से ज्यादा वेंडर पंजीकृत हैं और अकेले मई माह में ही हमने 700 से ज्यादा वेंडर्स को पंजीकृत किया है। तो इससे ये पता चलता है कि वेंडर्स में भी इसमें बहुत ज़्यादा रुचि है, उत्साह है, और सभी वेंडर्स कोशिश कर रहे हैं कि इन योजनाओं के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचा सके। और इसमें अगर हम रोज़गार की बात करें तो 70,000 से ज़्यादा तो डायरेक्टली रोज़गार पहुंचा है, और अगर हम पूरे इकोसिस्टम की बात करें तो उसके अलावा 1 लाख अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप से भी विभिन्न प्रकार से रोज़गार हुआ है। इसी प्रकार से सोलर दीदी कार्यक्रम के तहत भी हम महिलाओं का एम्पावरमेंट के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी हम इस चीज़ के क्रियान्वयन में और प्रचार प्रसार में जोड़ रहे हैं।

0: आपने सोलर पावर दीदी कार्यक्रम का जिक्र किया, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, ये कार्यक्रम क्या है, इससे किस तरह से महिलाओं को आगे लाया जा रहा है, किस तरह से उनके लिए लाभान्वित हो रही है।
1: सोलर दीदी योजना के तहत हम विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से महिलाओं को इस पूरे अभियान में जोड़ रहे हैं। इसमें इन महिलाओं की ट्रेनिंग की जा रही है हमारे वेंडर्स के माध्यम से, और फिर इन्हें इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है जिससे कि पूरा जो रूफटॉप सोलर का एक इकोसिस्टम है उसमें ये अपना वैल्यू एडिशन कर सकें। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि शुरू शुरू में जब उपभोक्ता सोलर रूफटॉप को अडॉप्ट करते हैं तो उनके मन में एक स्वाभाविक सा एप्रिहेंशन होता है कि इसका मेंटेनेंस कैसे होगा। तो इसमें हमारी रणनीति ये है कि हम अधिक से अधिक लोकल लोगों को इसमें जोड़ें जो कि पहले से अपने आसपास की कम्युनिटी से जुड़े हुए हों। तो इससे लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी ज़्यादा इफेक्टिव होगी और साथ के साथ में रोजगार भी।
0: जी, प्रदेश में सोलर पावर और क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बड़ी संख्या में निवेश आया था, इसको लेकर क्या काम किया गया, कितने प्रोजेक्ट धरातल पर अभी उतर आए हैं?
1: अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले कई जो भी इन्वेस्टर समिट हुए हैं और GDC सेरेमनीज हुई हैं इनमें निवेशकों ने विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत अधिक उत्साह दिखाया है। अभी तक करीब 2.5-3 लाख करोड़ की परियोजनाएं हैं जो उनका MOU हो गया है और GDC के लिए वो रेडी हैं। अभी हम GDC 5 की तैयारी कर रहे हैं और उसमें भी आज की तारीख में 7,500 करोड़ की परियोजनाएं ऐसी हैं जो धरातल पे बिल्कुल शुरू हो गई है।
0: आपने बताया कि बहुत सारी परियोजनाएं धरातल पर आ रही हैं, तो ये सोलर परियोजनाएं कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में कितनी महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं? साथ ही यह परियोजनाएं जो पर्यावरण और कृषि के दृष्टिकोण से कितनी महत्वपूर्ण होती हैं?
1: इसमें मेरा मानना है कि जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है वो कई तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि समय के साथ में जैसे जैसे हमें अपना औद्योगिकरण बढ़ाना है और जिस प्रकार से AI और डेटा सेंटर्स आ रहे हैं तो जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और अगर उस पावर को हमें अचीव करना है तो ये ज़रूरी है कि हम पूरी तरीके से कन्वेंशनल एनर्जी पर अपने आप को सीमित न रखें बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में भी निरंतर प्रयास करते रहें। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी कोशिश है कि इस प्रकार से हम स्वावलंबी बने। इसके लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े एनर्जी की नीड्स के लिए। और यदि हम पर्यावरण की बात करें तो निश्चित रूप से रिन्यूएबल एनर्जी इसमें बहुत ही पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बहुत प्रभावी है।
0: ये सोलर परियोजनाएं खासकर ग्रामीण परिवेश की अगर बात करूं तो कृषि क्षेत्र में किस तरह से इस्तेमाल हो रही है और किसानों को इससे जोड़ने के लिए किस तरह के कदम उठाए गए?
1: किसानों को भी जोड़ने के लिए हमने PM किसुम स्कीम के तहत काफी प्रयास किए हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था C1 कंपोनेंट के तहत तो सीधे ही हम किसानों तक इस स्कीम को ले जाते हैं और इसमें कई किसानों ने उत्साह दिखाकर इसको अडॉप्ट किया है जिससे कि जो उनके पंप होते हैं ट्यूबवेल्स होते हैं उनको वो सोलराइज कर लेते हैं। तो एक तरीके से ये उनको आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। और इसके अतिरिक्त एक और कंपोनेंट भी है PM कुसुम स्कीम में C2 जिसके तहत हम पूरे फीडर लेवल पे सोलराइज करते हैं। तो उस फीडर से जिन जिन भी किसानों तक विद्युत पहुंच रहा है उनको भी इस बात में मदद मिलती है कि समय से और पर्याप्त ऊर्जा उन तक पहुंचे।
0: क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिन वेंडर्स का आपने जिक्र किया, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसके लिए भी क्या वेंडर्स को खास तौर पर ट्रेन किया गया है कि ये योजना खासकर PM सूर्य घर योजना सिर्फ शहरों तक सीमित ना रहे, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचे, क्या उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से जो वेंडर्स हैं उनकी रीच को बढ़ाने के लिए काम किया?
1: ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि PM सूर्य घर योजना केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित न हो। इसलिए हमने अलग से इस ग्रामीण क्षेत्रों को भी चिन्हित किया था, टारगेट रखा था और हमने कोशिश की थी कि इसकी रीच अधिक से अधिक जगहों तक पहुंच सके। और इसके लिए हम रेगुलरली ट्रेनिंग कराते रहते हैं। अलग अलग जनपदों में हम अपना स्टाफ भी भेजते हैं जो वहाँ के वेंडर्स हैं।
2: श्रोता, आप हमें आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से सुन रहे हैं। प्रस्तुत है आप सभी के लिए देशभक्ति गीत।

श्रोता आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। चंद पलों में आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से प्रसारित उर्दू कार्यक्रम।

0: थोड़ी ही देर में होगा। ये आकाशवाणी लखनऊ है, पेश है उर्दू कार्यक्रम। पेशकश आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की है।
1: सामईन आदाब, उर्दू प्रोग्राम के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में आपका मेजबान मोहम्मद फर्रुख जमाल। ख्वातीनो हजरात, आज का उर्दू प्रोग्राम खराज तहसीन है जनाबे बशीर बद्र के नाम। समाअत फरमाइए इस हवाले से एक खसूसी तमसीली प्रोग्राम, उन्वान है जुगनू जो सितारों की महफिल में खो गया। तहरीर और आवाज़ है मोहम्मद फर्रुख जमाल की।

रहने को दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। दुनिया अदब का एक और चिराग खामोश हो गया, एक शोख जुगनू जो तारीक रातों को अपने अशार से रोशन और ताबनाक किए हुए था, अचानक हमसे बहुत दूर चला गया, इतनी दूर कि अब वहां से लौटकर आना भी मुमकिन नहीं। लेकिन वो तो हमेशा चहकने

तुझे एक मुट्ठी जमीन दे, ये जमीन कितनी सिमट गई। मुझे एक मुट्ठी जमीन दे। शेर सुनिएगा आप, मुलाजा फरमाइए शेर।

0: जहां मेरा नाम लिखा गया वहीं रोशनाई उलट गई।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।

कहूँ। तेरी याद आए तो चुप रहूं, जो मैं चुप रहूं

जहाँ मेरा नाम लिखा गया वहीं रोशनाई उलट गई। तेरी याद आए तो चुप रहूं, जो मैं चुप रहूं तो गजल

मुझे सिसकियों ने जगा दिया, मेरी कच्ची नींद चट गई। चंद्र और दूसरी गजल के जैसे मैंने अर्ज किया था, कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई। सुनिएगा,

गई मैं चराव, कभी हम मिले भी तो क्या मिले, वही दूरियां वही फासले। सुनिए, कभी हम मिले भी तो क्या मिले, वही दूरियां

झिझक गई बशीर बद्र का असल नाम सैयद मोहम्मद बशीर था। 15 फरवरी सन 1935 को कानपुर में पैदा हुए। उनका आबाई वतन फैजाबाद जिले का मौजा बकिया है। बशीर बद्र साहब के वालिद सैयद मोहम्मद नज़ीर महकमे पुलिस में मुलाजिम थे, लिहाजा उनके तबादलों की रेल एक जगह से दूसरी जगह चलती रही। बशीर बद्र ने तीसरी जमात तक कानपुर के हलीम कॉलेज में तालीम हासिल की। उसके बाद उनके वालिद का तबादला इटावा हो गया। वहां पर उन्होंने मोहम्मद सिद्दीक इस्लामिया कॉलेज से हाई स्कूल का इम्तिहान पास किया। अभी उन्होंने हाई स्कूल का इम्तिहान पास आउट किया ही था कि एक सानहा उनकी जिंदगी में पेश आया, जिसने उनके जिंदगी के शिराजे को बिखेर कर रख दिया। वालिद का इंतकाल हो गया।

कि आम इंसान भी ये कह उठता है, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। लेकिन बशीर बद्र ने हालात से फरार हासिल नहीं किया, बल्कि इन हालात के पस मंजर में पोशीदा दबीज लहरों ने बशीर बद्र से ऐसे अशार कहलवाए जो तजुर्बों की आग की भट्टी पर पूरी तरह पके हुए थे।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
5: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
6: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
1: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे सुगम संगीत कार्यक्रम। ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी करने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। NTA ने कहा कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म

0: के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने वर्ष 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो भारत पहुंच चुके हैं। श्री सुगियोनो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन गतिविधियों के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में वर्ष 2044 तक हवाई यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपये की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपये हो जाएगी। अमरीकी सेना ने होर्मूज जलडमरू मध्य में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा माने जाने वाले 2 ईरानी ड्रोनों को रोककर नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान ने बताया कि अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। रूस की मीरा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शनिवार को खेले गए फाइनल में 19 साल की एंड्रीवा ने पोलैंड की माया च्वालेंस्का को सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से मात दी। इस उपलब्धि के साथ ही एंड्रीवा फ्रेंच ओपन जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले वर्ष 1992 में 18 साल की मोनिका सेलेस ने यह खिताब अपने नाम किया था। उधर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज शाम अलेक्जेंडर ज्वेरेव और फ्लेवियो कोबेली आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने कर्नाटक के तटीय हिस्सों केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में आज लू चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं, आप हमें आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से सुन रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10:05 और 11 सेकंड हो चुके हैं। प्रस्तुत है आप सभी के लिए आकाशवाणी के 90 साल पर आधारित फिल्म संगीत कार्यक्रम हेलो फरमाइश। इस कार्यक्रम के संचालन किया है अन्नपूर्णा जी ने और प्रस्तुतकर्ता हैं नूर मोहम्मद। तो आइए सुनते हैं आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश।
3: नमस्कार, मैं अन्नपूर्णा आप सभी श्रोताओं का आपके पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। श्रोताओं, जैसा कि आपको पता है कि अभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, तो चलिए इसी विषय पर आज हम इस कार्यक्रम में अपने कॉलर्स से बात करेंगे। तो चलिए लेते हैं कार्यक्रम की पहली कॉल।
4: हेलो फरमाइश।
5: मैम, हेलो फरमाइश का टाइम चेंज हो गया है क्या?
4: नहीं, बिल्कुल नहीं।
5: तो हर बार देता है?
4: दस पांच पेर हर संडे को।
5: ओ, हर संडे को। लेकिन आज से सैटरडे है मैम।
4: सैटरडे रिकॉर्डिंग होती है।
5: सुनते थे, मैं करती थी, रोज देता था, वो बंद हो गया है ना?
4: वो रोज बंद हो गया है, संडे को वीकली हो गया है।
5: मेरा दिल टूट गया, क्यों बंद हुआ मैम? मुझसे कोई गलती हो गई मैम? कल मैम आपका नाम?
4: अन्नपूर्णा। पर्यावरण दिवस के बारे में बात

0: कर रहे हैं सभी अपने स्कॉलर से।
1: मैम मैं
0: तो
1: आपने अच्छा टॉपिक उठाया। हेलो मैम, हेलो एवरीवन, हेलो गोरखपुर, दिस इज प्रियदर्शनी मिश्रा एंड आई एम फ्रॉम ओडिशा।
0: आप तो
1: जी
0: बिल्कुल आरजी हो गई हैं, है ना?
1: मैम आपके संगत का असर।
0: हाँ
1: मैम मैं ये बोलना चाहती हूँ, पर्यावरण हमेशा जून 5 को हम मनाते हैं, तो मैं इतना ही बोलूंगी पर्यावरण हमारे लिए है, हम इसको साफ साफ साफ रखना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ सांस लेते हैं। अगर ये खराब हो जाएगा, हम नेक्स्ट जनरेशन को अपने पर्यावरण के बारे में नहीं बता सकते।
0: बिल्कुल,
1: हमारे प्रकृति, हमारे अभी
0: पेड़
1: हमको
0: पौधे ज्यादा
1: सचेतन।
0: से ज्यादा लगाने चाहिए, है ना?
1: जी जी
0: पृथ्वी
1: मैम,
0: को
1: एक
0: साफ
1: एक
0: रखना
1: पेड़
0: चाहिए,
1: जो
0: प्लास्टिक का
1: उपहार,
0: कम यूज करें, पानी की बचत
1: हाँ
0: करें।
1: पानी तो बचाइए, प्लास्टिक तो बंद कीजिए, फिर
0: जी
1: हम जो पेड़ लगाइए उपहार देना चाहिए, पेड़ गिफ्ट बंद करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: हाँ,
0: बहुत बढ़िया
1: और
0: बात।
1: एक बात मैं बोलूंगी, जो हमारे प्रकृति हमको चेतावनी दे रहा है उसको अनसुना नहीं करना
0: बिल्कुल
1: चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और एक बात, पहले मौसम बदलता था, अभी ये जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण, पर्यावरण खराब के कारण मौसम बिगड़ता है।
0: जी
1: हाँ,
0: जी
1: अभी
0: जी
1: हम
0: जी
1: प्रकृति को लौटाएंगे,
0: जी
1: वो उसने हमको सब कुछ दिया है। अब
0: जी
1: नाउ दिस इज आवर टर्न टू गिव समथिंग, रिटर्न समथिंग फॉर आवर एनवायरनमेंट।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। अब समय है हमें मिलकर प्रकृति को लौटाने का,
1: जी
0: है ना? जो
1: मैम, मैम
0: हमने
1: अभी शायरी
0: प्रकृति से
1: बोलूं?
0: छीना है उसे
1: जी
0: हम
1: मैम,
0: वापस करें, है ना?
1: वापस देने के लिए।
0: तो जी
1: जी
0: बिल्कुल,
1: मैम, मम्मी
0: बहुत
1: मैम
0: बढ़िया
1: अभी शायरी
0: बात।
1: बोलूं?
0: जी, बिल्कुल बोलें।
1: जी, मंजिल तुम पाओ, रास्ता हम बनाएंगे,
0: जी
1: खुश तुम रहो, खुशियां हम दिलाएंगे, बस दोस्त बन के रहो, बस दोस्त बन के रहो, दोस्ती हम निभाएंगे।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फरमाइश भी
1: जी,
0: बता दे साथ में।
1: तो आपके पसंद का बजा दीजिएगा, मेरी फैमिली की और आपको।
0: चलिए प्रियदर्शिनी जी, नाम बहुत अच्छा है आपका। चलिए आपको सुनवाते हैं अपनी पसंद का ये गीत।
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी बताएं।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, किससे बात हो रही है मेरी?
1: लगा
0: हाँ जी, हेलो फरमाइश में ही लगा है। किससे बात हो रही है मेरी? नाम बता दें।
1: ये पूजन
0: शिव पूजन जी, बताएं क्या हाल चाल आपके?
1: हाल चाल तो बहुत बढ़िया है।
0: बढ़िया है। तो कुछ खास बताएं, क्या करते हैं आप?
1: करते हैं
0: खेती करते हैं। अभी आपको पता है पर्यावरण दिवस था, इसके बारे में कुछ पता
1: हाँ
0: है आपको?
1: हाँ मालूम है पर्यावरण।
0: जी। तो पर्यावरण के लिए क्या करते हैं, मतलब क्या सोचा आपने? कल तो कुछ दिमाग में आया होगा ना, मैं भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करूं पर्यावरण के लिए।
1: पहले से हमारे पास जगह खाली है, उसमें लगाना है।
0: जी।
1: हाँ तो कल तो नहीं लगाया, अभी यहाँ बारिश हुई नहीं
0: कल नहीं
1: लगा।
0: लगाया, लेकिन एक संकल्प जरूर लीजिए। पर्यावरण दिवस सिर्फ एक दिन नहीं होता है, आने वाला दिन हर एक दिन पर्यावरण के नाम करना चाहिए। वृक्ष लगाएं, प्लास्टिक का कम ही उपयोग करें, पानी बचाएं, ये सारी चीजें करते रहेंगे, हम छोटे छोटे स्टेप लेते रहेंगे तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। तो फरमाइश भी बता दें साथ में।
1: हाँ जी, 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है सब जी।
0: चलिए शिव पूजन जी, सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पे ये गीत।

0: हेलो फरमाइश,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। किससे बात हो रही है मेरी?
1: व्यास नंद शुक्ला,
0: व्यास नंद जी, क्या हाल चाल आपके?
1: सब बढ़िया है? आप बताइए।
0: मैं भी बढ़िया जी। व्यास जी, बताएं कुछ खास?
1: और खास क्या है, इसमें अधिक मास चल रहा है, चारों तरफ शिव जी का जय जयकार हो रहा है।
0: जी, शिव जी का जय जयकार हो रहा है। तो इस
1: तीन साल आता है ये
0: जी
1: अधिक
0: जी
1: मास।
0: जी और इस अधिक मास के साथ साथ में पर्यावरण दिवस भी कल था।
1: रेडियो में सुनना मिला है।
0: हाँ, रेडियो में सुनने को मिला है। तो रेडियो तो जन
1: क्योंकि
0: जागरूकता का एक माध्यम है ना?
1: हम रेडियो को ही सैटेलाइट करते हैं।
0: तो रेडियो के माध्यम से ही हम भी बताना चाहते हैं आपको कि इस पर्यावरण दिवस के जो अभी कल बीता है, उसको बीत जाने के लिए नहीं आया था वो।
1: पर्यावरण के विषय में हम यही कहेंगे, जितना हो सके लोग पेड़ लगाएं
0: जी जी जी
1: और जल का उतना ही उपयोग का जितना आवश्यकता है।
0: जी जी इसलिए भी था, मतलब सिर्फ ये रेडियो पे बोलने की बात नहीं है, हमें इनिशिएटिव भी लेने की ज़रूरत है। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर हम वृक्ष नहीं लगाएंगे, हमारी आगे की जनरेशन, हमारे बच्चे, हमारी जो नई युवा पीढ़ी है, आने वाली है, उनके लिए बहुत
1: वैसे
0: बड़ी
1: हम
0: दिक्कतें हो
1: तो ये
0: जाएंगी
1: काफी नहीं है,
0: जी।
1: तो हम करने में असमर्थ है, यदि
0: अच्छा,
1: सुझाव तो दे सकते हैं।
0: सुझाव बिल्कुल दे सकते हैं। और असमर्थता जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ये जान लीजिए, ये मान लीजिए। आप नहीं कर
1: जैसे कि
0: सकते, निर्देश दे सकते हैं, अपने घर वालों को करवा सकते हैं ना? तो परिवार तो इसीलिए होता है ना जी। तो चलिए, ये तो बातें हो गई हमारे पर्यावरण के विषय में, और आज की फरमाइश भी बता दे साथ में वेद व्यास जी।
1: शिव जी का कुछ भजन आप बता दीजिएगा।
0: मैं आपको सुनवाती हूँ आपकी फरमाइश पे ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: हाँ जी, किससे बात हो रही है
1: हेलो
0: मेरी?
1: फरमाइश, नंदलाल निषाद बोल रहे हैं नौसढ़ से। बढ़िया
0: नंदलाल जी, बताएं क्या हाल चाल आपके?
1: बढ़िया है दीदी, आपन काज आप कैसे बाटी?
0: मैं भी बढ़िया नंदलाल जी। तो बताइए, कल
1: और
0: तो
1: पुन्ना दीदी बोल रहे हैं का?
0: हाँ, अनपूर्णा बात कर रही हूँ।
1: आओ
0: आज
1: दीदी,
0: हम
1: क्या हाल चाल है आपका?
0: मैं बढ़िया आज हम लोग पर्यावरण दिवस के विषय में बात कर
1: अरे
0: रहे
1: हाँ
0: हैं
1: दीदी, हमको पता है,
0: जी
1: एक पेड़ माँ के नाम लगाना ही चाहिए,
0: जी जी जी जी जी
1: लेकिन लोग
0: पर
1: काटते हैं लगाते नहीं है।
0: जी, तो
1: ये
0: काटते हैं
1: तो लगाना
0: लगाते
1: जरूरी,
0: नहीं।
1: हमने लगाया है दीदी, पेड़ आम का लगाए हैं, एक पेड़ इस साल नहीं फरक, पिछले साल फरा था, इस साल नहीं फरा है।
0: कोशिश करिए कि हर साल एक पेड़ लगाए, है ना? एक क्या
1: नहीं, कोशिश रहता है, हमारे घर में
0: जी।
1: सब लोग इस पे जागरूक हैं।
0: और पर्यावरण को हम अगर
1: सबसे
0: बचाएंगे
1: ज्यादा मेरे भाई है राजेंद्र निषाद,
0: जी।
1: सबसे ज्यादा वो है से जागरूक। एक मेरा लड़का है गोलू, छोटा,
0: जी।
1: वो तो बहुत दीवाना है पेड़ पौधे लगाने में।
0: चलिए, बड़ी अच्छी बात है, उसको प्रोत्साहित करिए। और
1: आप पढ़ा
0: इसी
1: लिखा
0: प्रोत्साहन
1: लड़का है,
0: जी, बताइए।
1: रोटी और कपड़ा मकान का गाना सुना दीजिए। हाय हाय रे मजबूरी। ठीक
0: चलिए नंदलाल जी, सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पे
1: ठीक है,
0: ये
1: नमस्ते
0: गीत।
1: दीदी।

0: हेलो फरमाइश,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते। किससे बात हो रही है मेरी?
1: छपिया माफी से रीना शर्मा बोल रही हूँ।
0: रीना जी, बताइए क्या हाल चाल आपके, क्या करती हैं रीना?
1: घर पे रहते हैं, हाउस वाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो रीना जी क्या खास है आज कल, क्या चल रहा है इन गर्मियों में?
1: आज दाल निकाल रहे हैं चक्की से, जो चक्की जो घर पे रहता है ना उसी
0: अच्छा
1: से ही हाथ से
0: अच्छा
1: निकाल रही
0: अच्छा
1: हूँ।
0: अच्छा मतलब दाल की जो खड़ा दाल होता है उसकी आप उसको दो हिस्से में मतलब
1: हाँ
0: उसको बना रही हैं, उस वो जो आपके वहाँ जाता जाता है क्या,
1: हाँ वो यही चक्की बोलते हैं उसे।
0: चक्की आपने बोला, लेकिन उसको बोलते हैं क्या, जाता बोलते हैं ना?
1: हाँ जाता वाला बड़ा वाला रहता है, छोटा वाला है।
0: अच्छा, तो इसको चक्की बोलते हैं, है ना
1: हाँ इसको चक्की बोलते हैं।
0: जी? तो ये तो बहुत मेहनत का काम है ना?
1: कोई नहीं, थोड़ा
0: थोड़ा
1: सा मेरा।
0: आपके आसान है ना? चलिए बढ़िया बात। और घर का अनाज, उसकी बात ही अलग है जी। पीछे से बड़ी हंसी की आवाज आ रही है, जान सकती हूँ कौन हो?
1: हमारी बच्ची है ना, वही वो हंस रही है। साजन
0: अच्छा, तो रीना जी फरमाइश भी बता दे अपनी।
1: का घर है, फिल्म का नाम, गाने का बोल है, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का फल आएगा।
0: चलिए बढ़िया रीना, सुनाते हैं आपकी फरमाइश पे ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी मैम, नमस्कार। जय श्री महाकाल।
0: नमस्कार, बताएं।
1: मैम, शिवा लोहट MP विदिशा से बात कर रहा हूँ। मैम
0: जी शिवा लोहट जी, बताएं क्या
1: जी, मैम
0: हालचाल
1: बस
0: आपके, क्या करते हैं आप?
1: मैम बढ़िया है। एक्चुअली मैं ब्लाइंड हूँ और समाज सेवा करते रहते हैं मैम, जैसे कि पक्षियों को पानी रखना हो गया, गाय को चारा रखना हो गया, पानी रखना हो गया,
0: जी बहुत
1: और
0: बढ़िया,
1: वर्षा ऋतु में पौधरोपण करना हो गया।
0: क्या बात है। तो पौधरोपण आपने बताया, अभी तो पर्यावरण दिवस था तो
1: जी,
0: पर्यावरण।
1: कल से ही हमारी मैम जो मिशन चालू हो गया है, तो लगभग अभी थोड़ी बारिश जोर हो जाए तो फिर उससे ज्यादा तेजी हो पाएगी। जी
0: जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम है उसमें। जी
1: जी
0: जी
1: जी सभी लोगों को और जितने भी देशवासी हैं सबको एक पौधा जरूर लगाना चाहिए
0: बिल्कुल
1: मैम।
0: बिल्कुल, करोड़ों की जनसंख्या है हमारी, और हम चाहें तो अपनी भारत देश का पूरा स्वरूप बदल सकते हैं वृक्ष लगा
1: जी
0: के, है ना?
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: इस हरियाली
1: मैम,
0: को।
1: मैं तो ये
0: जी
1: बात कहूंगा, जैसे कि हम जन्मदिन मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं, तो वृक्ष लगा के भी हम कुछ चीजों को सेलिब्रेट कर सकते हैं मैम।
0: बिल्कुल, बहुत बढ़िया विचार आपके। हम वृक्ष जरूर लगाएं, कोई मौका हो, कोई खास दिवस हो, हमारा जन्मदिन हो, वृक्ष जरूर लगाएं। जी, और इस पर्यावरण दिवस पे सिर्फ वृक्ष लगाना ही काफी नहीं होगा, हमको पानी की भी बचत के लिए इनिशिएट

0: इनिशिएटिव लेना होगा, साफ सफाई पे भी विशेष ध्यान देना होगा, है ना, मृदा को प्लास्टिक से सुरक्षित करें, है ना, कम से कम प्लास्टिक का यूज करें, तब इस पर्यावरण दिवस का जो हमारा संकल्प पूरा होगा, है ना, कि हम हर एक व्यक्ति, हर एक समाज का हर एक व्यक्ति खुद से, स्वयं से इनिशिएटिव ले इन सारी चीज़ों को करने के लिए। छोटी छोटी स्टेप से शुरुआत होती है, एक कदम बढ़ाएं हम तो पीछे से हजारों कदम उठ जाते हैं, है ना। तो
1: और मैं भी ये सोचता हूँ हर चीज को सरकार पे नहीं थोपना चाहिए, कि कभी ऐसे धरा पे कोई ना कोई डैथ तो बनता है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, और आपके इन विचारों के साथ ही, आपके इन इनिशिएटिव के साथ ही अपनी फरमाइश भी बता दे।
1: मैं, मूवी का नाम है यादें, इसमें एक गाना है, कुछ साल पहले यारों यही बात हुई थी, हमको भी मोहब्बत किसी के साथ हुई थी।
0: चलिए शिवा लोहट जी, सुनते हैं आपकी फरमाइश पे ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी बताएं, किससे बात हो रही है मेरी?
1: रूबीना बोल रहा है।
0: बताएं रूबीना
1: आप
0: जी, क्या?
1: अन्नपूर्णा मैम बोल रहे हैं ना?
0: हाँ जी रूबीना, मैं अन्नपूर्णा बोल रही हूँ।
1: सॉरी, किस लोग ठीक है?
0: हाँ, सब बढ़िया। तो रूबीना जी बताएं, क्या हाल चाल आपके?
1: बढ़िया है, अपना सुनाइए।
0: मैं बढ़िया। रूबीना बताइए, 5 जून को पर्यावरण दिवस था, पता है आपको इसके बारे में?
1: नहीं, पता था।
0: अच्छा, तो पता रहना चाहिए, आप आकाशवाणी लग रहा है रोज नहीं
1: सुनते
0: सुनती
1: हैं
0: हैं।
1: आकाशवाणी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए। बच्चे आए हैं बहन की, तो उसी बच्चों ही में रह गए, इसलिए
0: जी, अभी पर्यावरण दिवस
1: नहीं
0: था
1: सुन
0: और
1: पाए।
0: हम सभी को इस दिन को बहुत उत्साह से मनाना चाहिए। मनाने का मतलब ये है, सिर्फ उस दिवस के दिन ही ये पर्यावरण दिवस नहीं होता है, एक जन जागरूकता का माध्यम है वो दिवस। और उस दिन के बाद भी आप उस दिवस को मना सकती हैं, पेड़ पौधे लगाएं, वृक्षारोपण करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमको पानी की बचत करनी चाहिए, प्लास्टिक का कम यूज़ करें, है ना? ये है असली पर्यावरण दिवस का महत्व, है ना? लड़की हो या लड़का, फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो
1: बहुत
0: रूबीना,
1: अच्छा जानकारी दिया है हमारी अन्नपूर्णा मैम
0: हाँ अच्छा, तो आप भी
1: ने।
0: मेरी जो मैंने जानकारी दी आपको, उस जानकारी को स्प्रेड करिए, फैलाइए उस जानकारी को, और लोगों को जागरूक करिए, खुद भी जागरूक हुई है ना रूबीना? फरमाइश बता दे साथ में।
1: हमको दीवाना कर गए फिल्म है ना, उसी पिक्चर का, भुला देंगी तुमको सनम दीदी।
0: चलिए रूबीना, सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पे ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मैं विकास प्रयागराज से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: हाँ
1: हाँ, अभी कॉल कट गई थी।
0: जी जी जी विकास जी बताएं।
1: जी मैम, मैं एक ड्राइवर हूँ और आपका कार्यक्रम हम लोग सुनते हैं, जितने भी कार्यक्रम आपके यहाँ से प्रसारित किए जाते हैं,
0: जी जी
1: और हमें बहुत अच्छा लगता है गोरखपुर आकाशवाणी कार्यक्रम सुनते हुए।
0: जी
1: और हम लोग कॉल लगा रहे थे, कॉल मिल ही नहीं पा रही थी। इस पर हमें एक गाना सुनना था, जिसी प्रोग्राम में
0: जी
1: फिल्म कलाम रहेगा चमत्कार, और गाने का बोल है, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: चलिए विकास जी सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पे ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी योगेश जी बताएं क्या हाल चाल आपके।
1: बढ़िया है, अच्छे हैं।
0: अभी पर्यावरण दिवस था आपको पता है।
1: हम भी मनाए और पेड़ भी लगाए हैं और बहुत पहले जो पेड़ लगाए थे वो बहुत बड़ा बड़ा हो गया है।
0: अच्छा क्या बात है, चलिए बढ़िया। तो बता दे फरमाइश भी बता दे।
1: सिलसिला मूवी से सुनवाते ये देखा है तो ख्वाब तो ये सिलसिले हुए।
0: ठीक है योगेश जी, चलिए सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पे ये की।

0: तो श्रोताओं, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे पर्यावरण के विषय में। उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। चलते चलते आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे नूर मोहम्मद और तकनीकी सहयोग रहा शुभ्रदीप मिश्रा और अजीत राय का। अब अन्नपूर्णा को दीजिए इजाजत। ऐसे ही हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए और हमें कॉल करते रहिए। नमस्कार।
1: 0551220538 6।
2: हेलो
3: हेलो
4: हेलो
1: हेलो फरमाइश।
5: हेलो फरमाइश।
6: श्रोताओं, आप सुन रहे थे अपना पसंदीदा फिल्म संगीत कार्यक्रम हेलो फरमाइश। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे नूर मोहम्मद और इस कार्यक्रम का संचालन किया था अन्नपूर्णा जी ने। ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। चंद पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: के साथ मैं मुनीष शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करना का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियोनो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारत

0: भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री जहाजों पर दागे गए 2 ईरानी ड्रोनों को रोककर नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान ने बताया कि अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार हैं। ईरान ने कल कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। रूस की मीरा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शनिवार को खेले गए फाइनल में 19 साल की एंड्रीवा ने पोलैंड की माया च्वालिंस्का को सीधे सेट्स में 6-3, 6-2 से हराया। पुरुष क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने पहली पारी में 102 ओवर में 5 विकेट पर 456 रन बना लिए हैं और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं रजनी गुप्ता। आइए सुनते हैं देवी गीत।

0: श्रोताओं, लोकरंग कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
6: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
7: आकाशवाणी @90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमे ना जानवरों को घूमने दें।
1: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, लोकरंग कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं रजनी गुप्ता को।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ, लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details, log on to www.ddindia.com।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग, और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
6: श्रोताओं, लोकरंग कार्यक्रम में आज आप सुन रहे

इस मंगल गीत के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम का आगाज करते हैं एयरलिफ्ट फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे सुरों में पिरोया है अमाल मलिक, अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार ने।

अमाल मलिक, अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज़ों में आप ये गीत सुन रहे थे एयरलिफ्ट फिल्म से। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं तेरी मेरी कहानी इस फिल्म से। इस गीत को सुरों में पिरोया है वाजिद ने, गीत के बोल लिखे हैं प्रसून जोशी ने।

वाजिद की आवाज़ में आप ये गीत सुन रहे थे तेरी मेरी कहानी फिल्म से। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं दिल मांगे मोर फिल्म से। आवाज़ें हैं सोनू निगम और सुनिधि चौहान की।

0: जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

Akashvani at 90. श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं खानदानी शफाकाना फिल्म से। आवाजें हैं तुलसी कुमार और जुबिन नौटियाल की।

श्रोताओं, राबता फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं बच्चों का विशेष कार्यक्रम बाल मंच। इस कार्यक्रम में आपसे बातचीत करेंगी रंजना मिश्रा। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं दीपांकर मिश्रा।

0: बच्चों हम एक बार फिर लेकर आए हैं आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम बाल मंच। बच्चों आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच हैं बहुत ही खास मेहमान महमूद हसन जी, जिनसे बातचीत कर रहे हैं दीपांकर मिश्र। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।
1: बच्चों जय हिंद, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मजे में होंगे आप लोग। आप लोगों की छुट्टियां हो चुकी हैं और ढेर सारी मस्ती हो रही होगी, मजे हो रहे होंगे। कुछ लोग मुझे पूरा यकीन है ननिहाल की ओर भी निकल गए होंगे, घूम रहे होंगे, बर्फ के गोले खा रहे होंगे, मस्ती हो रही होगी। तो चलिए इसी मस्ती को आगे बढ़ाने के लिए आज हम अपने कार्यक्रम में ढेर सारी चीजें आपके लिए लेकर आए हैं। और इस कार्यक्रम में आप सभी नन्हे दोस्तों की महफिल में एक बड़े ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर महबूब हसन। डॉक्टर महबूब हसन यूं तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में उर्दू विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं, लेकिन इनकी विशेष अभिरुचि जो है वो आप लोगों में है, या आप लोग यानी कि आप बच्चों में, और आपके साहित्य में, आपके लेखन में इनकी बड़ी ही दिलचस्पी है। तो चलिए डॉक्टर साहब से बातचीत शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है बच्चों की हमारी इस महफिल बाल मंच में आपका।
2: बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर मिश्र साहब।
1: डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप तो उर्दू भाषा से जुड़े हैं, उर्दू साहित्य से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है और उसी में आप अकादमिक तौर पर काम भी कर रहे हैं, बाल साहित्य की ओर कैसे आपका रुझान हुआ और कैसे आप बाल साहित्य से जुड़े, बच्चों के साहित्य से आपका परिचय कैसे हुआ?
2: बहुत अच्छा, बहुत खास सवाल आपने किया है कि आप उर्दू के लिए लिखते हैं। दरअसल हमें ये समझना चाहिए कि साहित्यकार पूरे समाज का होता है। वो किसी एक भाषा या जबान में जब साहित्य रचता है इसका मतलब यह है कि वो वही जबान जानता है। तो इस तरह से ये समझना चाहिए कि साहित्यकार या अदीब आप जिसको कहते हैं पूरे समाज मुआशरे के लिए होता है। एकेडमिक जिम्मेदारियों के साथ साथ हम लिखते भी हैं समाज के लिए, अपने लिए लिखते हैं, और लिखते रहना एक तरह से जिंदगी के चलते रहने की एक निशानी है। तो मैं बच्चों के लिए कविताएं लिखता हूं, कहानियां भी लिखता हूं, अभी मेरा शौक।
1: तो बच्चों के लिए जो आप लिखते हैं मैं भी पढ़ते ही रहता हूं, और बड़ी मजेदार आपने कविताएं लिखी हैं, बड़ी मजेदार कहानियां लिखी हैं जो दिल को छू जाती हैं, और अक्सर आप किसी खास विषय को ध्यान में रखते हैं जो बच्चों का ज्ञानवर्धन भी करती है। तो आज की इस महफिल में भी हमारे साथ ढेर सारे बच्चे जुड़े हैं, छोटे भी बच्चे हैं, बड़े भी बच्चे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप बातचीत को आगे बढ़ाते हुए एक कोई अपनी एक प्यारी सी

0: हमें सुनाए, कौन सी कविता आज पहले आपने सुनाया?
1: जी जी, मैं बिल्कुल अपनी नज़में कविताएं सुनाऊंगा। इससे पहले मैं बच्चों के ज्ञान के लिए दो बातें मैं कहना चाहूंगा कि जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि छुट्टियां आ चुकी हैं, बच्चे बिल्कुल एक तरह से मस्ती हाँ और खुशी के मूड में हैं, तो बच्चों से ये शेयर करना मैं जरूरी समझता हूँ कि छुट्टी के साथ साथ ये बारिश का मौसम भी आया है। तो जब भी कोई नया मौसम आता है तो हमारे लिए एक नया संदेश लेकर आता है, वो संदेश बड़ा खास होता है। बारिश का मौसम आने का मतलब यह है कि हम नए पेड़ लगाएं। बगैर पेड़ लगाए न तो हम अपने समाज को, पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं। तो इस एतबार से तो मैं इस सिलसिले में उड़ जाती चिड़िया अपनी पहली जो कविता है पेश करना चाहूंगा। बार बार क्यों आती चिड़िया, आकर फिर उड़ जाती चिड़िया, हाँ हाँ देखो जोया बेटी, तिनके चोंच मिलाती चिड़िया, मौसम जब बारिश का आता, घर अपना है बनाती चिड़िया, जब जब भी वो अंडे देती, कहीं ना आती जाती चिड़िया, जू ही बच्चे बाहर आते, सारा ध्यान लगाती चिड़िया, भूख से बच्चे चू चू करते, दाना उन्हें खिलाती चिड़िया, बच्चे जब जब प्यासे रहते, चोंच में पानी लाती चिड़िया, पंख निकल आते हैं जैसे, उड़ना उन्हें सिखाती चिड़िया, जू ही बच्चे उड़ने लगते, दूर कहीं उड़ जाती चिड़िया, तुम भी उससे सीखो जोया, सबक कोई दे जाती चिड़िया।
0: वाह, बहुत अच्छी कविता सुनाई आपने, हमारे सारे दोस्तों बाल मित्रों को भी बहुत पसंद आई होगी। और बच्चों देखिए कैसे चिड़िया की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और आप सबको भी मुझे लगता है कि जो छोटी छोटी चिड़िया हमारे घरों में आती हैं उनसे आप सबको भी बड़ा आपका मनोरंजन होता होगा और आपको प्रेम होगा। तो हमें हम सबको चिड़िया पशु पक्षी जो हमारे आसपास रहते हैं उनसे प्यार करना चाहिए, और आप बच्चे तो जाने ही इसके लिए जाते हैं कि आपको छोटे छोटे जानवरों, चिड़ियों से, पक्षियों से, पशुओं से बड़ा ही प्यार होता है। तो गर्मी का दिन है, कभी उनके लिए किसी कटोरे में थोड़ा सा पानी रख दिया, कभी थोड़ा सा चिड़िया दिखी तो उसके लिए थोड़ा सा दाना डाल दिया, ये सब मुझे यकीन है आप लोग करते होंगे और करना भी चाहिए। और डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपकी कविता में जोया शब्द आ रहा है, मैं तो जानता हूँ इसके संदर्भ से वाकिफ हूँ, लेकिन आप हमारे बाल मित्रों को बताइए कि ये आपकी कविताओं में जोया कौन है, कौन आती है ये जोया?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी बेटी का नाम है फातिमा जोया हसन। तो जोया बहुत शरारत करती हैं, तो उनको एक मैसेज देने के लिए कि आप इस तरह से आप सबक लीजिए चिड़िया से, आप शरारतें न कीजिए, ये यानी कि तमाम बच्चों के लिए इसमें संदेश है कि आप लोग इस तरह की शरारतें, जैसे आमतौर पर आप देखेंगे बच्चे गमले तोड़ते हैं और कहीं चिड़ियों ने अगर घोंसला बसा रखा है तो उसको हाँ नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये जो शरारतें हैं कहीं ना कहीं उन शरारतों से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, तो इसमें एक संदेश है जी, अपने बच्चों के लिए।
0: जी बिल्कुल, प्यारे बच्चे जो हैं हमारे वो वैसे तो ध्यान भी रखते हैं लेकिन कभी कभी समझ ना आने के कारण इस तरह की शरारतें भी करते हैं, आपका कहना बिल्कुल वाजिब है। तो चलिए आप लोग भी ध्यान रखिए, मैं भी यही कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब भी यही कह रहे हैं। अगली कौन सी कविता है जो आप हमारे बच्चों को सुनाने जा रहे हैं?
1: जी बिल्कुल, आज मैंने जो तीनों एक तरह से कविताओं का चयन किया है वो पर्यावरण से संबंधित तीनों कविताएं हैं। ये कविता है गीत सुनाती कोयल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस नई जिंदगी में, नए परिवेश में परिंदे खत्म हो रहे हैं, पेड़ खत्म हो रहे हैं, बल्कि एक जगह मैंने पढ़ा था कि जैसे लोग पिंजड़े में परिंदे रखते हैं तो वो एक तरह से गुलामी की जिंदगी, बड़ा तरस आता है दीपांकर जी। तो ये पैगाम बच्चों को दिया जाना चाहिए कि अगर आप अपने घर में एक पेड़ लगाते हैं तो एक तरह से बहुत सारे परिंदे आपके पेड़ पर आते हैं, जैसा कि अभी आपने कहा कि उसमें पानी रखने के लिए गर्मी में दाने आप खिलाएं, तो ये सब एक सुंदर, एक अच्छा संदेश है बच्चों के लिए। तो ये मेरी दूसरी कविता है, गीत सुनाती कोयल। बाग में मेरे गाती कोयल, मीठे गीत सुनाती कोयल, कौवे जैसे काली काली, लगती है ये भोली भाली, दिलकश बोली बोल रही है, उड़ने को पर तोल रही है, डाली पे करती है बसेरा, बाग में हो फिर शाम सवेरा, कुकू की है सदा लगाती, सबके गम को दूर भगाती, पेड़ों पर न पत्थर फेंको, बोल रही है कोयल देखो, मीठी बोली दिल को भाए, कड़वी बोली काम न आए, उन नगमों में है वो जादू, जोया का भी दिल बेकाबू।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कविता सुनाई आपने, और कोयल का आपने जिक्र किया, कोयल तो बड़ी ही अच्छे स्वरों में गाती है, और हमारे सभी बच्चे जो हैं, हमारे बाल मित्र जो हैं, जो हमसे जुड़े हैं वो कोयल की आवाज़ सुनते होंगे, उन्हें अच्छी भी लगती होगी। वैसे कोयल इतनी डॉक्टर साहब भोली भी नहीं होती है, कोयल बड़ी चालाक मानी जाती है, है ना, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी मोहक होती है कि वो हम सबको बड़ी ही पसंद आती है। तो डॉक्टर साहब, चलते चलते बातचीत के क्रम में हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि बाल साहित्य जो है वो हमारे नन्हे बच्चों को बताइए कि वो पढ़ना, आज के समय में इंटरनेट का दौर है ना, और सोशल मीडिया का दौर है, कम उम्र से बच्चों के हाथ में मोबाइल आ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ जा रहे हैं, तो ऐसे दौर में बाल

0: साहित्य को पढ़ना, उसके प्रति अपनी अभिरुचि बनाए रखना, उससे जुड़ना बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को इस तरह का संस्कार दिया जाना बेहद जरूरी है। बिल्कुल नया दौर है, नया युग है, साइंस का एक तरह से युग है, सबके हाथों में ये मोबाइल फोन है, तो ये बच्चों को बताना बेहद जरूरी है कि ये कितना खतरनाक है उनके स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए। नई नई परेशानियां, बीमारियां आ रही है बच्चों में, ऐसी स्थिति, विकट स्थिति में ये बहुत गंभीर विषय है। बच्चे आप सुन रहे हैं मेरी बात, इसलिए गंभीर विषय है कि आपको कैसे इस नई परेशानी से कैसे आपको दूर रखा जाए। तो उसका एक सरल एक माध्यम है, साहित्य का माध्यम है, कि बच्चों को किताबों से आप कैसे जोड़ते हैं। किताबों से जोड़ना यानी उनको अपने पर्यावरण से जोड़ना, उनको अपने संस्कार से जोड़ना और उनको अपनी मिट्टी से जोड़ने वाली बात है। तो जरूरी है कि वो कंटेंट बहुत रुचि के साथ पेश किया जाए, बल्कि आजकल नए नए तरीके हैं कि उनको कैसे चित्र के साथ, तस्वीर के साथ पेश किया जाए, ताकि बच्चे बाल साहित्य की तरफ आए, उनकी रुचि पैदा हो, किताबों से उनका रिश्ता जुड़ जाए जो तकरीबन कट चुका है। और इसीलिए आप देखेंगे बार बार ये बात आती है कि बाल साहित्यकार नहीं मिल रहे हैं, कोई लिख नहीं रहा है, तो ये एक तरह से समाज को कहीं ना कहीं हम पीछे जाते हुए देख रहे हैं। तो जरूरी है कि बाल साहित्य को असिरे नव, उसको पुनर्जीवित किया जाए, लिखा जाए।
0: जी बिल्कुल, बहुत जरूरी बात आपने कही, और हमारे सभी जो नन्हे मित्र हैं वो सुन रहे होंगे। आप सभी बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जितनी पुस्तकें आपको मिले, जितनी किताबें मिले, बच्चों की कविताएं, बच्चों की कहानियां, जो अच्छा लगे पढ़िए जरूर। फोन जरूरत के अनुसार आप भले ही प्रयोग करें, लेकिन साहित्य से, किताबों से दूर मत होइए। AI का जमाना है, आज हर चीज जो है वो एक उंगली पर आ जाती है, लेकिन ऐसे दौर में अगर आपको अपनी अलग पहचान बनानी है, अगर आपको ये समाज में, लोगों के बीच में दिखाना है कि आप स्वयं से कुछ रचित करने में, कुछ नया लिखने में सक्षम है, तो उसका माध्यम साहित्य है, और वो आपको एक नई पहचान दिलाएगा। अगर आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो आपके पास एक शब्दों की शक्ति होती है, आपके पास एक लेखन क्षमता होती है, जो कि इस दौर में धीरे धीरे लुप्त हो जा रही है।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल।
0: तो इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है इस युग में, तो ऐसे में आपका प्रयास बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब हमें एक और कविता सुनने का, मुझे भी और हमारे श्रोता मित्रों को भी इच्छा हो रही है। आप हमें अगली कविता कौन सी सुना रहे हैं?
1: सुनाने से पहले मैं बताऊं कि ये जो कविताएं हैं और मेरी बेटियों की जबान पर है, पढ़ती हैं, और जैसे ही कोयल की आवाज आती है, आप तो जानते हैं कि शहर में पेड़ बिल्कुल नाम रह गए, फिर भी जब भी कोयल की आवाज आती है तो मेरी बेटी पहचान जाती है कि डैडी ये कोयल बोल रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये पहचान तो इसी कविता ने कराई है, मैंने इसमें लिखा है कि कुकू की है सदा लगाती, और कौवा बोलता है तब भी वो जानती है, और वो ये जानती है कि कोयल की बोली मीठी होती है और कौवे की बोली
0: कड़वी
1: होती है, यानी मुझे हमें मीठी बोलने की जरूरत है। तो ये आखिरी कविता है, पेड़ लगाओ। बागों से एक चिड़िया आई, उसने ये फरियाद सुनाई, हरे पेड़ न काटो प्यारे, मिटते जाते जंगल सारे, हाथ में हरदम आ रही है कैसी ये बीमारी है, पेड़ अगर कट जाएंगे छांव कहां से लाएंगे, काले बादल आएंगे बिन बरसे उड़ जाएंगे, हरा भरा जब होगा जंगल दुनिया में फिर होगा मंगल, खुशी से कोयल गाएगी मीठे गीत सुनाएगी, चिड़िया बोली पेड़ लगाओ दुनिया में खुशहाली लाओ, चिड़िए की न भूलो बात जोया देना उसका साथ।
0: जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा अपनी कविता के माध्यम से आपने संदेश भी दिया है। आज जो पर्यावरण की स्थिति है उसके प्रति बहुत ही कम उम्र से उन्हें संवेदनशील बनाना इसके प्रति
1: बिल्कुल
0: बहुत
1: बिल्कुल।
0: ही जरूरी है, तभी वो बड़े होकर एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और वो पर्यावरण की रक्षा करेंगे। तो आप सभी जो हमारे बाल मित्र हमारे साथ जुड़े हैं उन तक इनका संदेश पहुंच गया होगा। आप सब अपने पर्यावरण का, अपने आसपास जो भी प्रकृति ने हमें दिया,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: जो भी जल जंगल जमीन पशु पक्षी जो भी हैं उनकी आप सब रक्षा कर दें, उनके प्रति आप संवेदनशील रहें, क्योंकि उनके साथ ही हमारा जीवन है, सहजीवन है, और हम सब उनके साथ ही पले बढ़े हैं और उसी के साथ हम रह सकते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे अभी आपने कहा कि कैसे हम पेड़ों को संरक्षित कर सकते हैं, तो ये जिम्मेदारी बच्चों हमारी बनती है कि न सिर्फ हम पेड़ लगाएं, लेकिन अगर हमारी नजर के सामने कोई अगर नुकसान पहुंचा रहा हो आसपास तो उसको रोकना भी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उनको ये संदेश देना है, बताना है कि ये बैड मैनर है, आप पेड़ नहीं काट सकते, इवन कि पेड़ नहीं पेड़ की पत्तियों को भी बचाना है। आमतौर पर शरारत में बच्चे चलते हुए पेड़ की पत्तियों को नोच लेते हैं, तो इस बात का ख्याल रखना है कि खुद भी नुकसान नहीं पहुंचाना है और दूसरों को रोकना भी है, ताकि आसपास का पूरा एक तरह से जो एटमॉस्फियर है वो जागरूक हो सके।
0: जी, और हमारे कार्यक्रम में चूंकि आप जैसे लोग आते हैं जो कि बच्चों को इन चीजों के बारे

बताते रहते हैं, तो हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो नन्हे मित्र हैं, वो बड़े ही जिम्मेदार बनते हैं हमारे कार्यक्रम सुनकर। धन्यवाद आप जैसे लोगों का, जो कि आप अपनी कविताओं के माध्यम से अपने साहित्य

0: में आज हमारे साथ हैं वरधान सिंह, जो कि लेकर आए हैं बहुत सारी कविताएं और कहानियां। इनसे हम बारी बारी सुनेंगे, बीच बीच में हम इनसे बातें भी करेंगे। तो वरधान, आप सबसे पहले क्या सुनाने वाले हैं?
1: मैं एक आरव नाम के बच्चे की कहानी सुनाने वाला हूँ।
0: बिल्कुल, चलिए सुनाइए।
1: एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता है। उसका सपना था कि वह आसमान में उड़ते पक्षियों की तरह दुनिया देखे, लेकिन गांव के लोग उसकी बातों पर हंसते थे। वे कहते, सपने देखने से कुछ नहीं होता है। आरव हर शाम नदी किनारे बैठकर आसमान को देखा करता। एक दिन वहां एक घायल चिड़िया मिली। उसने उसे घर ले जाकर उसकी देखभाल की। कई दिनों बाद जब चिड़िया ठीक हुई तो वह उड़ने लगी, लेकिन जाने से पहले वह आरव के कंधे पर आकर बैठ गई, जैसे उसका धन्यवाद कह रही हो। उस दिन आरव को समझ आया कि उड़ना सिर्फ पंखों से नहीं, हौसलों से भी होता है। समय बीता, आरव ने खूब मेहनत की, पढ़ाई की और एक दिन वह पायलट बन गया। जब उसका जहाज पहली बार उसके गांव के ऊपर से गुजरा तो वही लोग आसमान की ओर देखकर गर्व से कह रहे थे, देखो हमारा आरव उड़ रहा है। कहानी की सीख, जो लोग अपने सपनों पर विश्वास करते हैं वही एक दिन दुनिया को नया रास्ता दिखाते हैं।
0: बहुत ही बढ़िया कहानी, और इसकी सीख भी दी कि हमें अपने सपनों के लिए मेहनत करनी चाहिए और सपनों पर विश्वास करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ते हैं और दुनिया को भी नया रास्ता दिखाते हैं। तो वरधान, ये बताइए कि आपकी गर्मी की छुट्टी चल रही है।
1: हाँ।
0: तो गर्मी की छुट्टी में आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है?
1: गेम खेलना।
0: क्या क्या खेलते हैं आप? आपको इंडोर गेम्स में और आउटडोर गेम्स में क्या क्या पसंद है?
1: मुझे इंडोर गेम्स में चेस पसंद है और आउटडोर गेम्स में फुटबॉल पसंद है।
0: अरे वाह, तो आप छुट्टियों में खूब खेल रहे होंगे।
1: हाँ।
0: अच्छा, ये बताइए कि आपके जो दोस्त हैं, दोस्तों में सबसे अच्छा दोस्त कौन है और उसकी कोई ऐसी क्वालिटी बताइए कि जो आपको पसंद हो।
1: मेरा सबसे अच्छा दोस्त है संस्कार, वो कभी झूठ नहीं बोलता है।
0: वाह, और ये बहुत अच्छी आदत होती है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम झूठ बोलेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। गर्मी की छुट्टियों में ये तो हुई बात आपके खेलने की, और घर में रह करके आप क्या क्या कर लेते हैं? क्या मम्मी की मदद करते हैं कुछ?
1: हाँ।
0: क्या क्या करते हैं आप?
1: घर के सामान को सेट करके रख देता हूँ, जैसे कि अपना बेड सही कर लेता हूँ सुबह उठकर, और अपना बिस्तर ठीक कर लेता हूँ।
0: बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप कुछ काम अपने खुद से निपटा लेते हैं तो ये बहुत अच्छी आदत है और ये आगे चल के आपके बहुत काम भी आने वाली है। और बताइए कि गर्मी की छुट्टी में और क्या क्या अच्छा लगता है?
1: मुझे आम खाना और जो फ्रूट्स आते हैं गर्मियों वाले, वो बहुत पसंद है।
0: बहुत मजा आता है ना?
1: हाँ। मैं आम पर एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। आम फलों का राजा है, सबके मन को भाता है, मिठास इतना आम रसीला, छिलका इसका पीला पीला, कोई बनाए अचार आम का, कोई इसका शेक बनाए, हर कोई बोले मैं ही खाऊं, कोई मुझसे ले ना जाए, फिर भी इसको खाना चाहे, स्वाद इसका भूल न पाए, पापा हो या प्यारा बेटा, हर किसी का मन लल जाए।
0: बहुत बढ़िया।
1: मैं एक और कविता सुनाता हूँ आम पर। सबके मन को भाता आम, फल राजा कहलाता आम, आमों का मौसम जब होता, हर कोई बस खाता आम, मधुर रसीला मीठा मीठा, खुद पर है इतराता आम, अच्छा खासा दिखता फिर भी, लंगड़ा माना जाता आम।
0: बहुत बढ़िया।
1: अब सुनिए तरबूज पर कविता। मीठा है तरबूज निराला, हरे रंग के छिलके वाला, गूदा बिल्कुल लाल निकलता, गर्मी के मौसम में चलता, बच्चे खूब मजे से खाते।
0: बहुत बढ़िया।
1: ये है एक और कविता तरबूज पर।
0: सुनाइए सुनाइए।
1: अगर बनना चाहो मजबूत यारो, खूब खाओ तरबूज, गर्मी का दुश्मन है ये, पानी का सागर है ये, लाल लाल ललाई उसकी प्रेम प्यार की गागर है ये, देवों में है, ये अवधूत खनिजों का भंडार है, ये विटामिनों का आगार है, ये ठंडा करके खाओ तो अपनी माँ का प्यार है, ये मौसम का है ये सपूत, अगर बनना चाहो मजबूत यारो खूब खाओ तरबूज।
0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही बात। आम हमें जितना पसंद होता है ना, उतना ही पोषक तत्वों से भरा होता है। ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, पाचन को दुरुस्त रखता है और त्वचा में निखार लाता है, और साथ ही साथ

0: आंखों की रोशनी के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है ना वरदान? वैसे ही जो तरबूज होता है वो भी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, साथ ही साथ उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है जो कि गर्मियों में हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें फाइबर्स भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमें गर्मियों में जो भी मौसमी फल मिलते हैं अधिक से अधिक उसका सेवन करना चाहिए, है ना? करते हैं आप?
1: हाँ।
0: जैसे खरबूज है, तरबूज है, आम है,
1: हाँ।
0: है ना? इसे किसी भी तरह से, चाहे हम उसे आम का शेक बनाकर पीते हैं, या हम उसकी आइसक्रीम खाते हैं, या वैसे आम खाते हैं, है ना? सब तरह से आम पसंद होता है सबको। तरबूज का भी जो है वो शरबत पसंद होता है,
1: हाँ।
0: ना? शेक पीते हैं हम उसका,
1: हाँ।
0: और वैसे भी काट के हम खाते हैं।
1: ऐसे ही खड़ा आम भी खाना पसंद है।
0: तो बच्चों आइए फिर से हम चलते हैं वरदान के पास और उनसे सुनते हैं वीर अब्दुल हमीद की एक छोटी सी कहानी।
1: पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव था। अब्दुल हमीद दर्जी की दुकान पर बैठा था। गांव का बस एक आदमी फौज में था। वह छुट्टियों में गांव वापस आया था। उसने अब्दुल को यह राय दी कि फौज से अच्छी नौकरी कहीं नहीं है, तुम भी क्यों नहीं भर्ती हो जाते? अब्दुल ने जवाब दिया, अब्बा ने सुना तो नाराज हो जाएंगे। अब्बा ये बात सुन के बोले कि हमारे घर में दर्जी का काम होता है, हम नहीं जाने देंगे लाम पर। अब्दुल के अब्बा ने अपनी बीबी से सलाह लेकर अब्दुल की शादी करा ली। अब्दुल की बीबी रसूलन भले स्वभाव की थी। उसने अब्दुल की बेचैनी देखी, उसने अब्दुल को देखा और समझा कि अब्दुल का मन दर्जी के काम में नहीं लगता है। उसने कहा कि तुम भी कलुआ की तरह फौज में भर्ती हो जाओ। मैं मन से कहती हूँ, जैसे कलुआ वर्दी पहने गांव से शान से निकलता है, वैसे अब्दुल भी क्यों ना निकले। रसूलन ने अब्दुल को भर्ती दफ्तर भेज दिया। अब्दुल की ट्रेनिंग खत्म होते होते चीन का आक्रमण भारत पर हो गया था। बहुत से सैनिक मर खप भी गए थे, लेकिन अब्दुल हमीद लंबा रास्ता चुनकर अपने साथियों के साथ चीनी सैनिकों से बचते बचते आगे बढ़ने लगा। उसके साथ उसके बस दो साथी ही बचे थे। एक दिन उसे भारत का झंडा कहीं दूर लहराते हुए देखा। जब वो वहां पहुंचा तो उसको जानकारी मिली कि जंग खत्म हो गई है और सभी सैनिकों को घर जाने की अनुमति मिल गई है। अब्दुल हमीद अपनी छुट्टियों में गांव वापस गया। गांव में खुशी का माहौल था, लेकिन कलुआ की माँ की आंखें पूछ रही थी कि मेरा लाल कहाँ है। अब्दुल अब क्या जवाब देता? अब्दुल उसकी वीरता के बारे में बताया और आखिर में उसे उसकी वीरगति की बात कहनी ही पड़ी। जब छुट्टियां खत्म हुई तो पाकिस्तान भारत का बॉर्डर अपनी टैंकों से क्रॉस करके भारत के अंदर पहुंचा और वो कई जगह जैसे पंजाब और जम्मू कश्मीर में पहुंचा। हवलदार अब्दुल हमीद पंजाब के खेतों में थे। वो अपनी पलटन के साथ अपनी जीप में सवार होके सभी टैंकों को मारते गिराते चले गए। वहां पे टैंकों का कब्रिस्तान बन गया था, लेकिन अब्दुल हमीद की जीप गलती से एक जलते हुए टैंक से जाकर टकरा गई और वो शहीद हो गए। ये थी कहानी हमारे देश के वीर शहीद अब्दुल हमीद की।
0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा वरदान, ये बताइए कि गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं और आप कुछ अदर एक्टिविटीज भी सीख रहे हैं?
1: हाँ।
0: क्या सीख रहे हैं?
1: तबला।
0: अरे वाह, कुछ तैयार किया है आपने?
1: अभी मैं 3 ताल सीख रहा हूँ।
0: मतलब स्टार्टिंग है आपकी, है ना?
1: हाँ।
0: बहुत बढ़िया, आप नेक्स्ट टाइम आप आइएगा ना तो खूब अच्छा सा भजन सुनाइएगा तबले के साथ, ठीक है?
1: हाँ।
0: अच्छा वरदान, ये बताइए कि आपको गाना सुनना पसंद है?
1: हाँ, मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है।
0: बहुत पसंद है, तो अभी आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले।
0: तो चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: इस गीत के बाद हम फिर आते हैं वरदान के पास और उनसे सुनते हैं छोटी सी कहानी।
1: एक बार की बात है, एक घने जंगल में मोनू नाम का एक छोटा सा खरगोश रहता था। वह बहुत डरपोक था। जंगल में हल्की सी आवाज सुनते ही वह भागकर अपनी विल में छुप जाता। एक दिन जंगल में खबर फैली कि एक भयानक शेर आने वाला है। सभी जानवर डर गए। मोनू तो इतना डर गया कि उसने बाहर निकलना ही बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद सच में एक शेर जंगल में आया, लेकिन वह बहुत बूढ़ा और घायल था। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, सिर्फ पानी और आराम चाहता था। जब सभी जानवर उससे दूर भाग रहे थे, तभी मोनू ने हिम्मत करके शेर के पास जाकर पूछा, क्या आपको मदद चाहिए? शेर ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, बहुत प्यास लगी है। मोनू पानी ले आया। धीरे धीरे बाकी जानवर भी मदद के लिए आ गया है। कुछ दिनों में शेर ठीक हो गया और जंगल छोड़कर चला गया। उस दिन मोनू को समझ आया कि हर डरावनी चीज सच में खतरनाक नहीं होती। कहानी किसी डर पर जीत पाने के लिए कभी कभी हमें हिम्मत का एक छोटा सा कदम उठाना पड़ता है।
0: तो बच्चों, इसी के साथ आज का बाल मंच कार्यक्रम समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे बहुत सारी बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आज के बाल मंच कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दीपांकर मिश्र।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बच्चों का पसंदीदा कार्यक्रम बाल मंच। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी रंजना मिश्रा, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपांकर मिश्र। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने।

Akashvani at 90. श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ, फिल्म का नाम कभी कभी।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं असली नकली फिल्म से। इस गीत को सुरों में पिरोया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आनंद आश्रम फिल्म से। इस गीत को सुरों में पिरोया है किशोर कुमार ने।

आनंद आश्रम फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आंधी फिल्म से। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, इस कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं हीरा पन्ना फिल्म से। इस गीत को सुरों में पिरोया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, हीरा पन्ना फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहानी समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम।

0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಟ್ 90 ಜಿಂದಗಿ ಬಹುತ್ ಕೀಮತಿ ಹೈ ಉಸ್ಸೆ ತೋ ಸಸ್ತಾ ಹಿ ಹೈ
1: ಮೈ ಆಶುತೋಷ್ ರಾಣಾ ಮೈನೆ ಜಾನಾ ಫಿರ್ ಯೇ ಮಾರಾ
2: ನೀವ್ ಸೆ ಲೇಕರ್ ಛತ್ ತಕ್ ಭರೋಸೆ ಕಾ ಸಿರ್ಫ್ ಏಕ್ ಹಿ ನಾಮ್ RHL ಗೋಲ್ಡ್ ಟೀಮ್ ಟಿಸರಿಯಾ 70 ಸಾಲೋಂ ಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಔರ್ ಭರೋಸಾ ಜಾನೋ ಫಿರ್ ಮಾನೋ
3: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
4: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं अभिजीत सावंत।

0: श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
2: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं अभिजीत सावंत को।

0: श्रोताओं, इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें।
1: अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल रियासती रेलवे पुलिस के काम का जायजा लेते हुए हिदायत दी कि रियासत में रेलवे सिक्योरिटी निजाम को मजीद जदीद और तकनीकी तौर पर काबिल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मुसाफिरों की हिफाजत, खवातीन के तहफ्फुज, जराइम पर काबू पाने और पुलिस की फौरी मदद को अवलियन तरजीह दी जानी चाहिए। प्रोसिक्यूशन अवलियन सिस्टम का जायजा लेते हुए वजीर आला ने मुजरिमों को फौरी और मौसर सजा देने को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे वक्त में जब बहुत से ममालिक इक्तसादी गैर यकीनी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, भारत आलमी मईशत में तेजी से बढ़ रहा है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में भारत ने इक्तसादी तरक्की को मुस्तहकम, खुद एतमादी, तसलसल और एतबात के साथ जोड़ा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: वजीर दिफा राजनाथ सिंह के लखनऊ दौरे का आज आखिरी दिन है। वजीर दिफा ने अपनी रिहाइश पर लोगों से मुलाकात के बाद आलमबाग वाक़े टेढ़ी पुलिया के पास प्रबुद्ध जनसंवाद प्रोग्राम में शामिल हुए और इलाके के मुमताज शहरियों से बातचीत की। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने नंबरों की तस्दीक और दोबारा जांच के लिए दरख्वास्तें जमा करने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी है। तलबा अब आज आधी रात तक अपनी दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। इससे पहले कल 6 जून की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी। रियासत में सिविल पुलिस कांस्टेबल और उसके मसावी अहदों के लिए भर्ती का इम्तिहान कल से 10 जून तक रोजाना 2 शिफ्टों में मुनक्किद होगा। इंतजामिया इसके लिए तैयारियां कर रही है। वजीर आला की हिदायत के बाद इम्तिहान की तैयारियों की रिहर्सल हुई। कानपुर में इंतजामिया इंतजाम के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया। रेलवे ने भी खसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन उम्मीदवारों को रियायती शहरों पर खिदमात फराहम करेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर NEET UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के सवालिया पेपर के मुबैना लीक या फरोख्त के दावों की तर्दीद की है। NTA ने कहा है कि ये मुनज्जम धोखाबाज गिरोहों का काम था जो तुलबा और उनके अहल खाना के खदशात का फायदा उठा रहे हैं। एजेंसी फाल तौर पर काबिल एतराज चैलेंजेस, अकाउंट्स और मवाद की निशानदेही कर रही है और उसने मुतल्लिका प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। NTA उम्मीदवारों और वालदैन को मशवरा देता है कि वो ऐसे किसी पैगाम का शिकार ना हों। आम की खुशबू और मिठास अब अमरोहा के सरहदों से निकलकर कई ममालिक तक पहुंच जाएगी। इस सीजन में अमरोहा के आमों की खुशबू और जायका सिर्फ खलीजी ममालिक तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि कजाकिस्तान,

उज्बेकिस्तान, सिंगापुर, यहां तक कि लंदन के लोग यहां के आमों का मजा चखेंगे। मलेशिया से भी आम के ऑर्डर मौसूल हुए हैं। इन ममालिक से 400 टन से ज्यादा आम

के महत्व के बारे में सभी स्तरों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन दिवस की मान्यता देने के लिए प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव का महत्व था कि आज के दिन के जरिए स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर खाद्य जनित बीमारी के बोझ को कम किया करना। बहनों, हम सभी को हमेशा जागरूक रहना चाहिए, विशेष तौर पर खाने को लेकर, क्योंकि हेल्दी किचन हेल्दी फैमिली का रहस्य एक हमारे स्वस्थ रसोई से होकर गुजरती है। जब आप बहनों अपने खाना पकाने के स्थान को पौष्टिक भोजन तैयार करने के केंद्र में बदल देती हैं तो आपको अनगिनत लाभ मिलते हैं, जो भोजन के मेज से कहीं आगे तक हम सभी को ले जाते हैं। बहनों, आपकी रसोई का वातावरण आपके स्वास्थ्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये आप भी जानती हैं, क्योंकि भोजन पे हमारा पूरा परिवार निर्भर रहता है और उसका स्वास्थ्य निर्भर रहता है, और जब पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा तो आप भी निश्चिंत होकर के अपना काम मन से कर सकती हैं। तो ऐसे में बहनों, आपकी रसोई का डिजाइन सीधे तौर पर आपकी खान पान की आदतों को प्रभावित करता है। इसलिए बहनों, जब किचन में उपकरण लगवाएं तो अच्छी गुणवत्ता वाली ही लगवाएं, क्योंकि इस गर्मी में अगर आपके घर में चिमनी नहीं है तो खाना बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ध्यान रखें, घर भले भी पुराना हो, उसको तोड़वाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी में व्यवस्थित ढंग से कुछ नया करें। क्योंकि बहनों, रसोई ऐसी जगह है जहां भोजन बनाने से लेकर अगर आपके घर में कोई मेहमान इस गर्मी में आ जाए तो शरबत बनाने तक का काम आप वहीं करती हैं। कहते हैं ना कि कभी किसी की मुस्कान में रंग भरना होता है तो कभी किसी की बातों में मिठास। तो जो बहनों मैं इस गीत को सुनवाने जा रही हूँ, इसमें भी वही भूमिका होती है, और इस गर्मी में शरबत की मिठास जो है हमारे शरीर के साथ साथ हमारे दिल को भी बहुत ही अच्छी प्यास भी देती, प्यास को बुझाती है और मिठास भी देती है। तो आप तैयार हो जाइए और कुछ पलों के लिए दुनिया की भाग दौड़ और अपने काम को भूलकर इस खूबसूरत एहसास में खो जाइए। सुनते हैं फटा पोस्टर निकला हीरो फिल्म का ये गीत।

बहनों, इस गीत की मिठास के साथ आगे बढ़ती हूँ और अब बातें शहरी रसोई में फूड सेफ्टी की, क्योंकि आप लोग भी अक्सर किसी न किसी से कहते सुनी होंगी कि अरे शहर है वहाँ की बात अलग है। बहनों, शहरी रसोई वाली परेशानी अलग होती है। वहाँ फ्रिज है पर बिजली जाती है आती रहती है, डिलीवरी वाला खाना आता है, घर में काम वाली खाना बनाती है तो वह बात अलग है। ऐसे में हमको विशेष ध्यान देना होता है कि वह कैसे बना रही है और हमारे लिए क्या सही है। ये भी कहा जाता है कि शहरी रसोई की गांव की रसोई में अलग तुलना है। गांव में मिट्टी का चूल्हा, ताज़ी सब्जी मिलती है और शहर में फ्रिज है, माइक्रोवेव है, जोमेटो है, स्विगी है और समय नहीं है। समय न होने की वजह से हम अक्सर कुछ न कुछ गलती कर बैठते हैं और जल्दी के चक्कर में खाने बैठ जाते हैं। अगर हमारे सामने खाना आता है तो हाथ बिना धुले ही खाना खाने बैठ जाते हैं, बचा खाना बाहर रख देते हैं और डिलीवरी वाला खाना सीधे हम खाने लगते हैं। ऐसे में आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी, क्योंकि तभी आप स्वस्थ रहेंगी और बाहर भी निकल सकती हैं और घर को भी आप देख सकती हैं, परिवार को देख सकती हैं। जैसे आप घर में भले बैठी हैं या बाहर से आ रही हैं तो अपना एक नियम बनाएं हाथ धोने का। शहर में हम दिन भर लिफ्ट का बटन, एटीएम, ऑफिस का दरवाज़ा छूते रहते हैं और घर आकर सीधा किचन में घुस जाते हैं। नहीं बहनों, दरवाज़ा खोलते ही पहला काम आप ये करिए कि अपना हाथ धो लिए, ये आदत में शामिल कर लीजिए और अपने घर वालों को भी ये आदत डलवाइए। फ्रिज है तो भगवान है, पर फ्रिज में सब ठूस मत दो, क्योंकि कोई भी सामान आप एक समय के लिए, पर्टिकुलर एक समय के लिए रख सकती हैं फ्रिज में, ये नहीं कि आप हफ्ते भर के लिए रख दीजिए। किसी भी चीज़ को आप डिब्बे बंद, जैसे साग सब्जी काट के रखती हैं तो उसको अक्सर ढक के रखिए या बंद डिब्बे में रखिए, ऐसे में वो ताज़ा भी रहेगा और पानी टपक कर भी नहीं बहेगा और सुरक्षित भी रहेगा। दही दूध में भी वो नहीं गिरेगा,

और गिरने से आपके फ्रिज में बैक्टीरिया भी फैलेगी, तो वो भी हानिकारक है। लंच के समय अक्सर जो भी बचा रहता है खाना हम खा लेते हैं रात में, ऐसा मत कीजिए क्योंकि ये भी आपके लिए नुकसानदायक है। आपके घर में एसी है या ऑफिस में, आप सोचते हैं कुछ नहीं होता है, बहनों ऐसा नहीं है। एसी में भी बैक्टीरिया मरते नहीं हैं। खाना बनाने के 2 घंटे बाद फ्रिज में रखें और कुछ देर बाद ही निकाल लें। एक अगर आपको याद नहीं रहता है तो अलार्म भी लगा सकती हैं। अलार्म से ये रहेगा कि कोई भी गलती नहीं होगी और आप सावधानी बरतना शुरू कर देंगे। जगह, शहरों में अक्सर लोग कहते हैं कि छोटा किचन है तो जगह की कमी है। ऐसे में अपने सामान को एक जगह रखिए, हर सामान का एक पर्टिकुलर जगह बना लीजिए, उसको उसके स्थान पर रखिए। हमारा बर्तन धोने वाला स्पंज भी साफ़ सुथरा होना चाहिए क्योंकि उसमें 200 गुना ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। तो ऐसे में जब आप साफ़ रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी और जो बर्तन धुलेंगे वो भी आपका सुरक्षित रहेगा, क्योंकि लंबे समय के बाद जब यूज़ करती हैं तो हमको तो बैक्टीरिया दिखता नहीं है और वो बैक्टीरिया सीधे जहां हम इस्तेमाल करते हैं उस पर वो अपना काम शुरू कर देता है। टॉयलेट सीट से सच हर महीने स्पंज बदलें और हफ्ते में एक बार माइक्रोवेव में 1 मिनट गर्म करें, और फ्री में सैनिटाइज़र भी आप करें क्योंकि सैनिटाइज़ करेंगी तो घर भी साफ होगा और आपका सामान भी सुरक्षित रहेगा। आरओ का पानी पीते हैं तो बढ़िया आरओ का बोतल लें और उसको इस्तेमाल करें, कहीं भी किसी भी दुकान का ना उठा लें क्योंकि हर दुकान में सही पानी नहीं मिलता है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को आप अपने चीज़ों में शामिल कर सकती हैं, अपने आदतों में, और वो शामिल करके आप सुरक्षित रह सकती हैं, अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकती हैं, अपने परिवार को, अपने घर को और हर चीज़ को रख सकती हैं। तो बहनों रहिए सुरक्षित और सुनते हैं फिर एक प्यारा सा गीत।

बहनों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये गीत बहुत ही पसंद आया होगा। थोड़ी सी मस्ती भरी और कुछ जागरूकता से के बारे में जानकारी। बहनों, हम महिलाएं घर से बाहर तक का काम संभालती हैं और आज का समय बहुत तेज़ हो गया है। हर घर में सुबह से लेकर रात तक काम की भाग दौड़ रहती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल हर गृहिणी के सामने आता है, आज खाने में क्या बनेगा। यह सवाल रोज का तनाव बन जाता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पहले से प्लान कर लें तो न सिर्फ समय बचता है बल्कि घर का खाना और भी संतुलित और स्वस्थ बन जाता है। इसी को हम कहते हैं स्मार्ट मील प्लानिंग। बहनों, स्मार्ट मील प्लानिंग का मतलब है पूरे सप्ताह का भोजन पहले से तय कर लेना। इससे न केवल रसोई का काम आसान हो जाता है बल्कि बाज़ार की अनावश्यक खरीदारी भी कम हो जाती है और खर्च पर भी नियंत्रण रहता है आपके। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे परिवार को संतुलित और पौष्टिक आहार मिलता है। तो ऐसे में बहनों, एक सामान्य सप्ताह का आप अक्सर इस उधेड़बुन में रहती हैं कि अरे कैसे होगा। तो पहले से प्लानिंग करके सप्ताह भर का भोजन प्लान आप बना लें। ऐसे में आप नोट करके भी रख सकती हैं कि सोमवार को हमको क्या बनाना है, तो हल्का और ऊर्जा देने वाला कोई भी भोजन बना लें, जैसे पोहा, उपमा, रात में खिचड़ी या दही लेना अच्छा रहता है। इसी तरह से आप मंगलवार की प्लानिंग कर लें कि क्या बनाना है, तो दाल, पराठा, राजमा, जो आपको पसंद है उस तरह का कोई पौष्टिक चीज़ बना लें। बुधवार को भी कुछ साउथ इंडियन डिश अपना बना सकती हैं, जैसे इडली हुआ, डोसा हुआ, सांभर हुआ। अगर घर में किसी सदस्य को जो पसंद है, जैसे चावल दाल, ये सरल भी है और सुपाच्य भी है, ऐसे भोजन आपके लिए उपयुक्त भी रहेगा और परिवार के लिए भी रहेगा। बुधवार को कढ़ी चावल बना लीजिए, आसान और सुरक्षित। इसी तरह से आप पूरे सप्ताह का प्लान कर लीजिए। स्मार्ट मील प्लान का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे समय की बचत होती है और हम गृहिणियों को रोज़ यह सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आज क्या बनाना है। साथ ही एक तय योजना होने से बाज़ार की अनावश्यक खरीदारी भी हमारी कम हो जाती है। इसके अलावा यह परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब हम पहले से तय करते हैं कि क्या खाना है, तो हम जंक फूड और असंतुलित भोजन से बच सकते हैं। बच्चों और बड़ों दोनों के लिए संतुलित आहार सुनिश्चित कीजिए। इससे आपको भी फायदा रहेगा और घर में सभी के लिए भी फायदा रहेगा। और एक महत्वपूर्ण बात कि स्मार्ट मील प्लानिंग से हम गृहिणियों का मानसिक तनाव भी कम होता है। घर चलाना पहले से ही एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और जब भोजन की चिंता पहले से हल हो जाए

तो दिन काफ़ी आसान हो जाता है। साथ ही कुछ छोटे छोटे उपाय भी इसमें मदद करते हैं, जैसे दालें और मसाले पहले से स्टोर करना, सब्जियों की तैयारी एक साथ करना और सप्ताह में एक दिन हल्का भोजन रखना। तो ये सब आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो बहनों, स्मार्ट बनिए और स्मार्ट तरीके से प्लानिंग करते हुए अपने घर के सिस्टम को बदलिए और थोड़ा सा प्लानिंग सिस्टम अपना लिया जाए तो जीवन और भी सरल और स्वस्थ और खुशहाल बन सकता है। इसी को कहते हैं स्मार्ट प्लानिंग ही स्मार्ट जीवन की कुंजी है, कुछ इस गीत की तरह।

0: बहनों, घर को हसीन बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे घर में रहने वाले लोग खुशकिस्मत के साथ साथ स्वस्थ भी रहते हैं। तो बहनों, बातें तो बहुत हैं, पर समय का इशारा है, आपसे अनुमति लूं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलूंगी नए चर्चे, नए विषय के साथ। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का विशेष कार्यक्रम नारी जगत। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: श्रोताओं, एक ज़रूरी सूचना। 25 फरवरी सन 2026 की शाम लगभग 7 बजे शेखपुरवा गांव की लक्ष्मीना लापता हो गई। इनकी लंबाई 5 फुट और उम्र 21 वर्ष है। घर से निकलते समय इन्होंने कार्बन ब्लैक कलर का जैकेट और ब्लैक जीन्स पहना था। जिस किसी को भी सूचना मिले वो बांसगांव थानाध्यक्ष को सूचित करने की कृपा करें। श्रोताओं, लगभग 3 वर्ष पहले गोरखपुर जनपद की अंजू गुमशुदा हो गई। इनकी उम्र लगभग 22 वर्ष, रंग गोरा और लंबाई 5 फुट 2 इंच है। कृपया किसी भी तरह की सूचना मिलने पर चौरी चौरा थानाध्यक्ष को सूचित करें।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details log on to www.ddindia.com।

0: at 90.
1: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम खेती किसानी। इस कार्यक्रम में आज का विषय है मृदा स्वास्थ्य संवर्धन के उपाय, और इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर मनबोध प्रसाद।
2: किसान भाइयों, कहते हैं कि पुत्रो हम पृथिव्या, अर्थात भूमि सभी जिंसों का उत्पादक होने के कारण मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। मिट्टी ही पृथ्वी की आत्मा है और माँ की तरह सभी का पालन पोषण करती है। कृषि वैज्ञानिकों और किसानों की कड़ी मेहनत के साथ सरकार की सकारात्मक नीति के फलस्वरूप पिछले 6 दशकों में जहाँ एक ओर कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वहीं फसलों को पोषक तत्वों की अपर्याप्त और असंतुलित खुराक मिलने के कारण भूमि के पोषक तत्व भंडार का दोहन होता रहा और मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती गई। हरित क्रांति के शुरुआती दौर में हमारी भूमि में केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्व की कमी थी, अतः उन्नत बीज, सिंचाई जल और नाइट्रोजन व फास्फोरस युक्त उर्वरकों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। परंतु अन्य पोषक तत्वों का अनवरत दोहन होते रहने से मिट्टी में खासकर पोटेशियम, जिंक और गंधक की कमी हो गई। अब तो बड़े पैमाने पर बोरान, लोहा और मैग्नीज आदि के कमी की पुष्टि हो रही है। सघन कृषि में गंधक की व्यापक कमी भी कृषि उत्पादकता में ठहराव के लिए उत्तरदायी साबित हो रही है। केवल नाइट्रोजन व फास्फोरस धारी उर्वरकों का सीमित उपयोग मृदा स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हुआ है। महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा था कि हमारी जमीन में सभी की आवश्यकता को पूरा करने का सामर्थ्य है, परंतु उनकी लालच को पूरा करना संभव नहीं है। मिट्टी में विभिन्न पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए किसानों को देसी तकनीकों को अपनाने के लिए मृदा स्वास्थ्य संवर्धन, उत्पादकता वृद्धि और आर्थिक लाभ हेतु कुछ उपाय अपनाने चाहिए। जैसे सबसे पहला प्रथम दायित्व है कि हम अपने मिट्टी का समय समय से जांच कराते रहें। अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए फसल को पोषक तत्वों की सही खुराक मिलनी चाहिए, जिसका निर्धारण मिट्टी की जांच कराकर किया जाता है, ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति के अनुरूप पोषक तत्वों का इस्तेमाल किया जा सके। इसलिए यह हमारा सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है। मिट्टी की जांच से मिट्टी की क्षारीयता या अम्लीयता या किसी तरह की समस्या है तो उसकी जानकारी होती है। इसके साथ ही मिट्टी में प्रमुख गौण व सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता की जानकारी होती है। संतुलित फसल पोषण से कीट एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मिट्टी की जांच कृषि प्रबंधन का ऐसा तरीका है जिससे फसलों की पैदावार और लाभ में सार्थक वृद्धि होती है। इसी के साथ ही हमको अपने जमीन में कार्बनिक पदार्थों की भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहला उपाय है हरी खाद का प्रयोग। हरी खाद सनई, ढैंचा, मूंग आदि के 6 सप्ताह की फसलों को खेत में पलटकर तैयार की जाती है, जो मिट्टी की सेहत सुधारने में मदद करती है। हरी खाद के प्रयोग से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण

निर्माण होता है। पोषक तत्वों की उपलब्धता तथा कार्बन पदार्थ में वृद्धि से मिट्टी की उर्वरता एवं उत्पादकता में सुधार होता है। मिट्टी की संरचना एवं वायु संचार में सुधार होता है। कीटों, रोगों एवं खरपतवारों के नियंत्रण में सहायता मिलती है। इसके साथ ही सूक्ष्म जीवों तथा अन्य मृदा जीवों की वृद्धि होती है, जिससे मिट्टी में जैव उर्वरता एवं जैव विविधता बढ़ती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके साथ ही कंपोस्ट खाद, जो कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में बढ़ाने का काम करता है, तो उसके लिए हम सघन कृषि में न केवल जैविक खादों का प्रयोग घटा है, बल्कि मिट्टी के उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाले परंपरागत उपायों के प्रति भी लापरवाही हुई है। गुणवत्ता युक्त कंपोस्ट, गोबर की खाद, विभिन्न प्रकार के कंपोस्ट जैसे फास्फो सल्फो नाइट्रो कंपोस्ट, नाडेप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, सिटी कंपोस्ट, मुर्गियों की खाद, फसल अवशेष प्रबंधन तथा चीनी मिलों से निकलने वाली फ्रेशमट का प्रयोग करके हम भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही बायो फर्टिलाइजर यानी जैव उर्वरकों का इस्तेमाल। जैव उर्वरक ऐसे पदार्थ हैं जिसमें जीवित सूक्ष्म जीवाणु यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जब इनसे बीज, कंद, जड़ या भूमि को उपचारित किया जाता है तो पौधे को आवश्यक तत्वों की आपूर्ति में वृद्धि होती है। जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से नाइट्रोजन यौगिकीकरण, फास्फोरस एवं जिंक की घुलनशीलता तथा पोटाश की गतिशीलता में वृद्धि होती है। पौधों का तेजी से विकास होता है। रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल में कमी आती है। जैव उर्वरक पर्यावरण हितैषी है, इनसे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, साथ ही इन पर लागत भी कम आती है। इसके साथ ही भूमि में फसल चक्र का अपनाना ये बहुत ही आवश्यक है। एक ही खेत में विभिन्न फसलें क्रमिक रूप से लगाना फसल चक्र कहलाता है। ज्यादातर हम देखें तो हम लोग जैसे धान गेहूं या ज्वार गेहूं, बाजरा गेहूं, मक्का गेहूं या धान गन्ना आदि फसल उगाते हैं। इन फसल चक्र में भूमि से काफी मात्रा में पोषक तत्वों का ह्रास होता है। ये फसलें ज्यादा मात्रा में पोषक तत्वों को भूमि से ग्रहण करती हैं, जिसके कारण भूमि का स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि फसल चक्र में दलहनी फसलों को शामिल किया जाए तथा इनको निश्चित रूप से एक निश्चित अंतराल पर इन दलहनी फसलों को, जैसे कभी गहरी जलवाली, कभी उथली जलवाली, जकड़ा जलवाली फसलों को उगाना, जैसे धान गेहूं के बाद मूंग या बाजरा गेहूं के बाद मूंग या मक्का आलू के बाद मूंग की खेती करने से जमीन में उर्वरा शक्ति बनी रहेगी, उसको ताकत मिलेगी, उसमें पौधों को ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व मिलेंगे। इसके साथ ही हम जैविक के साथ साथ रासायनिक उर्वरकों का भी इस्तेमाल करते हैं। बिना उसके तो उर्वरक के तो खेती संभव नहीं लगती। इसलिए मिट्टी परीक्षण के परिणाम के अनुसार मिट्टी में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए किसानों को संतुलित उर्वरक प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति के अनुसार पोषक तत्वों की सही खुराक से मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है और संतुलित फसल पोषण से फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, फसल का उत्पादन बढ़ता है तथा जो भी हमें उत्पाद प्राप्त होता है उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है। नई तकनीकी जैसे नैनो उर्वरकों के इस्तेमाल के द्वारा भी हम अपने भूमि और फसल को बचा सकते हैं, उनको अच्छा पोषण दे सकते हैं, साथ ही पर्यावरण प्रदूषण को भी कम कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारी हमारी जमीन है
जो समस्याग्रस्त है, कहीं कहीं ऊसर है, कहीं कहीं पर क्षारीय है, कहीं कहीं पर अम्लीय है, तो मिट्टी परीक्षण के आधार पर जो इन भूमियों के लिए जो संस्तुति मिलती है, जैसे अगर ऊसर है तो उसके लिए जिप्सम या पाइराइट, और अगर अम्लीय है तो उसके लिए चूने के प्रयोग द्वारा इस भूमि का सुधार करके भी

0: हम भूमि स्वास्थ्य प्रबंधन तथा उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। इस प्रकार से यदि हम अपने खेत की मिट्टी की जांच समय समय पर कराते रहें, हरी खाद, कंपोस्ट खाद तथा जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करें, फसल चक्र अपनाएं और प्रत्येक फसल चक्र में दलहनी फसलों का प्रयोग करें, अच्छी उपज देने वाली फसल प्रजातियों एवं संकर किस्मों का प्रयोग करें।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खेती किसानी का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार।

0: 2 to 3 days. And in cricket, India declare first innings at 564 for 8 against Afghanistan in one-off test in New Chandigarh. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश भर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
2: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल है। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक करेंगे।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
3: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
4: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा

0: कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम हैं।
1: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
2: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमेरिका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुख तथा केशम द्वीप स्थित रडार और निगरानी

0: ने ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। ये दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6ठे ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्ची में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत

0: अब सुन्नु समाचार।
1: यो आकाशवाणी हो, समाचार दिपेन्द्र प्रधानबाट सुन्नुहोस्। भारत इन्डोनेसिया संयुक्त आयोगको बैठक नयाँ दिल्लीमा जारी छ। गृहमन्त्री अमित शाहले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरूमा वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण अनि सम्पत्तिहरूको खरिद बिक्रीमाथि कडा निगरानी राख्ने आह्वान गर्नुभएको छ। कक्षा बाह्रको परीक्षा नतिजा सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित विषयहरूको छानबिन र उत्तर पुस्तिकाको पूर्ण मूल्याङ्कनका लागि अनलाइन आवेदन पेश गर्ने आज अन्तिम मिति हो। राष्ट्रिय पुरस्कार विजेता मलयाली फिल्म अभिनेता सलीम कुमारको हिज राति कोचीमा निधन भएको छ। मौसम विभागले दक्षिण पश्चिम मनसुन अगाडि बढ्दै जाँदा देशभरि व्यापक वर्षा हुने पूर्वानुमान गरेको छ भने उत्तर र मध्य भारतका केही भागहरूमा गर्मीको लहर जारी रहनेछ। अब समाचार विस्तारमा। भारत इन्डोनेसिया संयुक्त आयोगको बैठक नयाँ दिल्लीमा जारी छ। विदेश मन्त्री डाक्टर एस जयशंकर र इन्डोनेसियाका विदेश मन्त्री सुगियोनोले बैठकको सह अध्यक्षता गरिरहेका छन्। डाक्टर जयशंकरले संयुक्त आयोगको बैठक चार वर्षको अन्तरालपछि भइरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै यस अवधिमा द्विपक्षीय सम्बन्धमा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताउनु भएको छ। उहाँले दुई देशले गत वर्ष द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापनाको 75 वार्षिक उत्सव मनाएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। डाक्टर जयशंकरले राजनैतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री, व्यापार र लगानी, स्वास्थ्य, औषधि, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा र सांस्कृतिक सहयोग सहित द्विपक्षीय सहयोगका सबै पक्षहरूमा गहन छलफलको लागि आफू तत्पर रहेको बताउनुभयो। सुन्नुहोस् हाम्रो संवाददाताबाट एक रिपोर्ट।
2: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृहमंत्री अमित शाहले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरूमा वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण अनि सम्पत्तिहरूको खरिद बिक्रीमाथि कडा निगरानी राख्ने आह्वान गर्नुभएको छ। यो निर्देश श्री शाहको अध्यक्षतामा बीएसएफको त्रिपुरा सीमा मुख्यालयमा पूर्वोत्तर राज्यको सीमावर्ती क्षेत्रहरूको सम्बन्धमा भएको बैठकको अवधि दिइएको हो। गृहमन्त्रीले विगत 5 वर्षको भूमि अभिलेखहरूको जाँच गर्ने पनि निर्देश दिनुभएको छ। श्री शाहले भन्नुभयो, मादक पदार्थहरू अनि हतियारहरूको तस्करी विरुद्ध लगातार अभियान चलाइनु पर्नेछ अनि मादक पदार्थहरूको तस्करीमा सामेल सबै मानिसहरू विरुद्ध कडा कार्यवाही गरिनु पर्नेछ।
3: गृहमन्त्रीले पिछले 5 वर्षको भूमि अभिलेखों की जाँच गर्नका भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: यूरोपीय संघ को एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भोलि 2 दिने भ्रमण को लागि आसाम को गुवाहाटी आउने छ। यसको उद्देश्य भारत का पूर्वोत्तर राज्यहरूसितको सहकार्यलाई बलियो पार्न हो।

0: कुमार एक फिल्म स्टार मात्र थिएनन् उनका लागि भाइ र परिवारका सदस्य पनि थिए भनी बताउनुभयो। आज अमेरिका र इरान बीचको द्वन्द्वको 100 दिन पूरा भएको छ। फरवरीको अन्त्यमा इरानमा अमेरिकी र इजरायली आक्रमणबाट उत्पन्न भएको द्वन्द्व अब व्यापक क्षेत्रीय सङ्कटमा परिणत भएको छ। यसले स्ट्रेट अफ हर्मुजमा सुरक्षित समुद्री यातायातलाई खतरामा पारेको छ र लेबननमा तनाव पुनः सुरु गरेको छ।
1: संघर्ष के 100 दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमेरिका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केशम द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: केन्द्रीय अन्वेषण ब्युरो सिबिआईले आइडिएफसी फर्स्ट ब्याङ्क र एयु फाइनान्ससित सम्बन्धित धोखाधडी मुद्दाको सम्बन्धमा हिजो चण्डीगढ पञ्चकुला र दिल्ली एनसीआर क्षेत्रका 6 स्थानमा छापा मारेको थियो। यो मुद्दा हरियाणा सरकारका 8 विभागहरू, चण्डीगढ नगर निगम तथा चण्डीगढ रिन्युएबल एनर्जी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी प्रमोसन सोसाइटी क्रेस्टका 2 विभागहरूमा 661 करोड रुपियाँ बराबरको सरकारी कोषमा अनियमिततासित सम्बन्धित छ। एक विज्ञप्तिमा सिबिआईले हरियाणा क्याडरका वरिष्ठ सरकारी कर्मचारीहरूको आवासीय परिसरमा साथै एक निजी सल्लाहकार कम्पनी र यसका निदेशकहरूको आवासीय परिसरमा अनियमितता र अपराधको रकम प्राप्तिको सम्बन्धमा छापा मारेको थियो। अनुसन्धानको क्रममा लोक सेवकहरूले खाता खोल्न तथा रकम स्थानान्तरण गर्न सहज बनाउन ब्याङ्क अधिकारीहरूसित मिलेर काम गरेको कुरालाई प्रकाशमा ल्याएको छ। सिबिआईले यस मुद्दामा पहिलो चार्जसिट दर्ता गरिसकेको छ, जसमा संलग्न 2 विभागका सरकारी कर्मचारीहरूको भूमिकाको विवरण दिइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन सङ्घ आइएटिएले एसिया प्रशान्त क्षेत्रभित्र उड्डयनको विकासमा भारतको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई प्रकाश पारेको छ। यस क्षेत्रमा 2044 सम्ममा हवाई यात्रीहरूको सङ्ख्या 4.1 अरब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि आइएटिएका उपाध्यक्ष सेल्डन हीले हिजो ब्राजिलमा भन्नुभएको छ, भारतले धेरै वर्षदेखि यस क्षेत्रमा उड्डयन वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको छ।
2: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: युवा कार्यक्रम तथा खेल मन्त्री डाक्टर मनसुख मान्डवियाले भारतीय टोलीलाई सेफ महिला फुटबल च्याम्पियनसिप 2026 जितेकोमा बधाई दिनुभएको छ। सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुहुँदै डाक्टर मान्डवियाले यस जितलाई भारतीय फुटबलको लागि गर्वको क्षणको रूपमा वर्णन गर्नुभयो। मौसम विभागले दक्षिण पश्चिम मनसुन अगाडि बढ्दै जाँदा देशभरि व्यापक वर्षा हुने पूर्वानुमान गरेको छ भने उत्तर र मध्य भारतका केही भागहरूमा गर्मीको लहर जारी रहनेछ। मौसम विभाग अनुसार मध्य अरब सागर महाराष्ट्र कर्नाटक आन्ध्र प्रदेश तेलङ्गानाका केही भागहरू तमिलनाडुका केही भागहरू दक्षिण पश्चिम बङ्गालको खाडी उत्तर बङ्गाल र पूर्वोत्तर राज्यहरूमा आगामी दुईदेखि तीन दिन मनसुनको प्रगतिको लागि अनुकूल अवस्था छ। तटीय कर्नाटक केरल माहे उपहिमालय पश्चिम बङ्गाल र सिक्किममा भोलि भारीदेखि धेरै भारी वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ। मौसम विभागले भोलि आण्डमान र निकोबार टापुहरू कर्नाटक कोंकण गोवा लक्षद्वीप तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकल र पूर्वोत्तर राज्यहरूमा भारी वर्षाको पूर्वानुमान गरेको छ।

0: उस समाचार
1: यो आकाशवाणी हो, समाचार सपन सुब्बाबाट सुन्नुहोस्। मुख्य समाचार। विदेश मन्त्री डाक्टर एस जयशंकर र इन्डोनेसियाका विदेश मन्त्री सुगियोनोले आज नयाँ दिल्लीमा भएको भारत इन्डोनेसिया संयुक्त आयोगको बैठकको सह अध्यक्षता गर्नुभएको छ। युरोपेली संघको एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल भोलि दुई दिने भ्रमणको लागि असमको गुवाहाटी आउनेछ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मेजर अभिलाषा बराकलाई संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैङ्गिक अधिवक्ता पुरस्कारबाट सम्मानित भएकोमा बधाई दिनुभएको छ। तेलुगु देशम पार्टी टिडिपीले 18 जुनमा हुने राज्यसभा चुनावको लागि आफ्ना 3 उम्मेद्वारहरूको घोषणा गरेको छ अनि आज अमेरिका र इरान बीचको द्वन्द्वको 100 दिन पूरा भएको छ। अब समाचार विस्तारमा। विदेश मन्त्री डाक्टर एस जयशंकर र इन्डोनेसियाका विदेश मन्त्री सुगियोनोले नयाँ दिल्लीमा भएको भारत इन्डोनेसिया संयुक्त आयोगको बैठकको सह अध्यक्षता गर्नुभएको छ। डाक्टर जयशंकरले संयुक्त आयोगको बैठक 4 वर्षको अन्तरालपछि भइरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै यो अवधिमा द्विपक्षीय सम्बन्धमा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताउनु भएको छ। उहाँले दुई देशले गत वर्ष द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापनाको 75 वर्ष वार्षिकोत्सव मनाएको पनि उल्लेख गर्नुभयो।
2: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
1: युरोपेली संघको एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल भोलि दुई दिने भ्रमणको लागि असमको गुवाहाटी आउनेछ। यसको उद्देश्य भारतका पूर्वोत्तर राज्यहरूसँगको सहकार्यलाई बलियो पार्नु हो। युरोपीय संघको चर्चा युरोप र पूर्वोत्तर बीचको साझा हितका क्षेत्रहरूमा केन्द्रित हुनेछ, जसमा नवीकरणीय र हरित ऊर्जा, दिगो शहरी पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा र औषधिहरू समावेश छन्। प्रतिनिधिमण्डलमा राजदूतहरू र युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरूका वरिष्ठ प्रतिनिधिहरू समावेश हुनेछन्। यसको नेतृत्व भारत र भूटानका लागि युरोपेली संघका राजदूत हर्वे डेल्फिनले गर्नुहुनेछ। भ्रमणको क्रममा प्रतिनिधिमण्डलले असमका मुख्यमन्त्री हेमन्त विश्व शर्मासँग भेट गर्नेछ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मेजर अभिलाषा बराकलाई संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैङ्गिक अधिवक्ता पुरस्कारबाट सम्मानित भएकोमा बधाई दिनुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल पोस्टमा प्रधानमन्त्रीले यो सम्मानले मेजर बराकको अनुकरणीय सेवा र संयुक्त राष्ट्र शान्ति स्थापना प्रयासमा भारतको लामो समयदेखिको योगदानलाई मान्यता दिने बताउनु भएको छ। श्री मोदीले मेजर बराकको उपलब्धि अनेक युवा भारतीयहरू, विशेष गरी देश र मानवताको सेवा गर्न चाहने देशका छोरीहरूको लागि प्रेरणाको रूपमा काम गर्ने बताउनुभयो। मेजर बराकले हाल लेबनानमा संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तरिम बलमा एन्गेजमेन्ट टिम कमान्डर र लैङ्गिक मामिलाको प्रमुख अधिकारीको रूपमा सेवा गरिरहेका छन्। घरेलु ग्यासको मूल्यमा 14.2 किलोग्रामको सिलिन्डरमा 29 रुपियाँको वृद्धि भएको छ। दिल्लीमा आजदेखि घरेलु ग्यासको मूल्य 913 रुपियाँदेखि बढेर 942 रुपियाँ भएको छ। सुन्नुहोस् एक रिपोर्ट।
3: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इस के बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया

लव 1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4 बज चुके हैं। इसी के साथ हमारी आज की ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। एफएम बैंड पर हमारे विविध भारती के प्रसारण जारी रहेंगे। शाम 5 बजे सायंकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं, इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
1: मितुल जी, जब बात चल रही है प्रदीप जी की, तो 5 दशक के अपने इस फिल्मी सफर में प्रदीप जी ने कई फिल्मों के लिए गीत लिखे। चल चल रे नौजवान, या आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, या दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, न जाने कितने ऐसे बहुत सारे देशभक्ति गीत हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में भी उन्होंने जो गीत लिखा वो आज भी हम भूल नहीं पाते हैं, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। तो इस गीत की रचना कैसे हुई, राष्ट्रभक्ति का ये अमर गीत प्रदीप जी द्वारा कैसे लिखा गया, क्या माहौल था आपके घर का, क्या माहौल था, और स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने इस गीत का तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में 26 जनवरी 1963 को दिल्ली के रामलीला मैदान में सीधा प्रसारित किया गया इस गीत को, जो कि एक ऐतिहासिक घटना बन गई, इसके बारे में आप हमें बताइए।
2: जैसे मैंने कहा कि उनको देशभक्ति उनके रग रग में थी। जब ये चीन के साथ हमारा ये जो लड़ाई हुई और तब हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए, वो चीज उन्हें बहुत मन तक बहुत झकझोर गई, है ना। और उसमें उनको लगा कि ये इतने हमारे शहीद हो रहे हैं, हमारे ये जो लड़ाई में हमारे जवान, उनके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम लोग सोच रहे हैं क्या होगा उनके परिवार का, कुछ कुछ सोच रहे हैं हम लोग के नहीं। तो वो चीजें उनको बहुत मन में दुख दे रही थी। तो ये अचानक से उन्होंने लिखा गाना था, है ना। और वो एक शैतान सिंह नाम के, मेजर शैतान सिंह, जिनकी वहां पर शहादत हुई रिजांगला में, और वो चीज से भी उनको बहुत वो आहत हुए। वो जा रहे थे कहीं रास्ते पे चल रहे थे, और चितलकर काका सी रामचंद्र, उनका घर माहिम में था, तो वहां पर उनको मिलने जा रहे थे। तो वहां चलते चलते उनको लगा कि ये देखिए क्या हो रहा है देश में, हमारा क्या होगा, हमारे जवानों का क्या होगा। उन्होंने एक लाइन लिखी, उनको मन में आई, और उनको मन में ये आई कि जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, शहीद शहीद शहीद, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। अब ये गीत तो उस वक्त तो उनको दिमाग में ये लाइन ही आई, उनको लगा मैं भूल जाऊंगा जब तक मैं घर जाऊंगा, हो सकता है मैं ये लाइन भूल जाऊं। रास्ते पे उन्होंने एक देखा कि एक पान पट्टी की एक दुकान थी पान वाले की, उन्होंने कहा भैया कुछ मिलेगा लिखने के लिए, बोलते यहाँ कहाँ मिलेगा भैया, ये एक सिगरेट का बॉक्स है खाली, इस पे कुछ लिख सकते हैं, आपके पास पेन है, बोलते मेरे पास तो पेन नहीं है। पास में कोई भाई खड़े थे, उन्होंने कहा ये ले लीजिए पेन, उन्होंने उस पे वो लाइन लिख दी और वो

0: आ गए। वहां पर जाके वो जो अपनी मीटिंग खत्म करके घर आने के बाद फिर इसके ऊपर जो मंथन चला उनका, और मंथन में से धीरे धीरे धीरे धीरे ये गीत शेप अप हुआ। और मंथन कैसा चला कि दिनों दिनों उन्होंने घर में बैठ के लाइन की लाइनें अलग अलग स्टाइल में लिखते रहे, और फिर जाके ये गीत एक गीत के रूप में बना। अब वो तो गीत तो बन गया, लेकिन वो तो उनको पता नहीं था, उन्होंने तो जैसे कवि थे तो अपने आप से लिखते थे।
1: जी
0: उसी दौरान महबूब खान ने एक प्रोग्राम तय किया था दिल्ली में, जैसे फंड रेजिंग का प्रोग्राम रखा था नेशनल स्टेडियम में।
1: जी
0: महबूब खान आए घर पे और प्रदीप जी से कहा कि आपको एक गाना देना है, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग वहां पर एक एक गीत देने वाले हैं और हम वहां पर लाइव परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो आपकी तरफ से भी एक गीत हमें चाहिए। मेरे बापू को लगा कि अभी जो गीत मैंने लिखा है उसी को थोड़ा ठीक करके इसी को दे सकता हूँ, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
1: कुर्बानी
0: तो वो गीत तो उन्होंने बहुत लंबा लिखा था अपनी स्टाइल में,
1: बिल्कुल
0: तो फिर बैठ के उन्होंने तराशा और उसको कम किया, जैसे बहुत लंबा था उसमें से काट छाट के। महबूब खान ने कहा कि मुझे ये गाना उसमें सुवीनियर में लिखना है, क्योंकि हम सभी लोग सुवीनियर में हम लोग क्या गाने वाले हैं, हमारे परफॉर्मेंस क्या है, वो हम लिखने वाले हैं। इन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मैं कल आपको देता हूँ। उन्होंने चितलकर काका को घर पे बुलाया, मतलब सी रामचंद्र, कि देखो भाई हमको ये गाना वहां पर देना है, और महबूब खान बोल रहे हैं कि हमको ये गीत का पूरा उसमें लिख के देना है,
1: ठीक है
0: तो मैं नहीं चाहता हूं कि ये गीत जब तक वहां पर गाए नहीं कोई तब तक ये खुलना नहीं चाहिए कि ये गीत क्या है।
1: जी
0: तो चितलकर काका ने कहा ठीक है, अब सुवीनियर में देना है लाइंस, तो उन्होंने महबूब खान को चार लाइनें दी। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ये लाइनें दी कि भैया ये मेरी लाइनें हैं, और जब तक मैं इसको ठीक करके दूंगा तब तक ये चार लाइनें आप इसमें छाप दीजिए। तो ये खुला नहीं कि इसमें गीत में क्या है, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ठीक है, मतलब ये होगा कि हाँ शुभ दिन है, ये है वो है, सब लोग खुश हो जाओ, हम लोग सब अच्छे हैं, मतलब वॉट एवर। तो उस प्रकार का उन्होंने साइलेंट रहे कि हमारे उसमें गीत में क्या है।
1: जी
0: अब जब तक गाने का रिहर्सल होना था, लता दीदी गाने वाली थी, उसके पहले ये भी था कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगे। ठीक है, अब तब चितलकर काका का थोड़ा सा लता दीदी के साथ संबंध ठीक नहीं थे, तो लता जी ने कहा कि मैं गाना नहीं गाऊंगी, मैं श्री रामचंद्र के साथ गाना नहीं गाऊंगी, ये तो ओपन सीक्रेट है। तो फिर ठीक है, आशा दीदी गाएगी। फिर ये तय हुआ कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगी साथ में। अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें तो हमको पता नहीं है, हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन आखिरी में लता दीदी ने गाया। तो वो तो तब रिकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ था, रिकॉर्डिंग तो उसके बाद में
1: बाद
0: हुआ,
1: में हुई
0: ये तो लाइव वहां पर गाया उन्होंने,
1: दिल्ली
0: तो
1: में।
0: रिहर्सल कैसे करेंगे। एक बार घर पे आके रिहर्सल करके गए लता दीदी, एक ही बार चले गए दिल्ली, है ना। लेकिन वो इतनी अच्छी और उत्कृष्ट गायिका थी कि उनको तो समय नहीं लगा उसको उठाने
1: पकड़ने
0: में,
1: में हाँ
0: और चितलकर काका और उनका तो संबंध ठीक नहीं थे, फिर भी दोनों ने साथ में खड़े होके स्टेज पे ये गाना पेश किया। प्रदीप जी को नहीं बुलाया गया था, नो इनविटेशन।
1: अच्छा
0: हाँ, तो ये भी अजीब सी बात है, देखिए कि जिस इंसान का गाना वहां बज रहा है, वहां
1: हाँ
0: गा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे सभी गीतकार थे, प्रदीप जी को ये लोग भूल गए बुलाना,
1: जी
0: तो इनवाइटेड नहीं थे तो वो नहीं जाएंगे, वो नहीं गए। गीत वहां पर पेश हुआ, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर, वीरों ने है प्राण गवाए।
1: जी
0: तो माहौल चेंज हो गया, पर मत भूलो
1: लो
0: सीमा पर, वीरों ने है प्राण गवाए। लोग एकदम सुनना
1: स्तब्ध रह
0: शुरू
1: गए।
0: किया कि
1: हाँ
0: ये क्या है, जवाहरलाल नेहरू जैसे एक ज्ञानी व्यक्ति बैठे हुए थे, राधा कृष्णन जैसे बहुत ज्ञानी थे, मतलब ऐसे हमारे वहां पर नेता बैठे थे जो समझ पा रहे थे कि ये क्या है, और पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई कुछ ना बोले, और लता दीदी की आवाज में ये गाना वहां पर गूंजा, लोगों की आंखों में आंसू भरे। और ये हकीकत है, वहां पर जितने लोग वहां मौजूद थे, एक इंसान ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में पानी ना
1: नहीं
0: हो।
1: था।
0: और जवाहरलाल जी रोए, वो तो

0: है सबको,
1: जी
0: क्योंकि
1: बिल्कुल
0: उनके मन में भी ग्लानि बहुत थी कि हमारे कितने शहीद हो गए, हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स, हमारी आर्मी। तो वो चीज़ को सुन करके सभी बहुत दुखी थे, मन में बहुत ग्लानि थी,
1: जी
0: गिल्ट फीलिंग।
1: जी
0: पूरा हो गया कार्यक्रम, जवाहरलाल जी ने पूछा कि बेटी तुमने तो रुला दिया, लेकिन कवि कहाँ है, ये
1: अच्छा
0: लिखा किसने है?
1: जी
0: तो लता दीदी ने कहा नहीं, वो तो नहीं आए हैं, कवि प्रदीप ने लिखा है, वो नहीं आए हैं। तो वहां पर यशवंतराव चव्हाण खड़े थे, है ना, वो अपने डिफेंस मिनिस्टर थे तब, यशवंतराव चव्हाण। उनको जवाहरलाल जी ने कहा कि चव्हाण जी आपके वहां के हैं, ये तो बम्बई के लोग हैं ये सब, तो आप जब बम्बई जाएंगे तो आप प्रदीप जी को जरूर कहिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो ये बात हो गई। दूसरे दिन अखबारों में छपा कि इतना सारा हुआ, जवाहरलाल जी की आंख में पानी आ गया। मुझे याद है क्योंकि मैं भी बैठी हुई थी, मैं तो
1: जी
0: छोटी बच्ची थी, लेकिन मुझे याद है। हम लोग चाय पी रहे हैं बाहर बैठ के बरामदे में हमारे, देखते हैं कि बाहर रास्ते पे से दौड़ते हुए लक्ष्मीकांत आ रहे हैं,
1: जी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी के लक्ष्मीकांत जी
0: लक्ष्मीकांत जी।
1: जी
0: वो आए, दौड़ के मेरे पिता के पैरों में पड़ गए, बोलते प्रदीप जी आपने तो पूरे देश को रुला दिया, बोलते आप छा गए, आपका वहां पर आपका गीत जो बजा है, तो हम नहीं, हम तो म्यूजिशियन थे, वो तो म्यूजिशियन थे तब, मैंडोलिन बजाते थे उसी गीत में,
1: अच्छा
0: बोलते हम सब तो थे, लेकिन हमने देखा कि पूरा माहौल जो है पूरा चार्ज हो गया था, और आंखों में आंसू के साथ लोगों ने इस गाने को
1: सुना।
0: सुना। तो लक्ष्मीकांत आके बोले खुद, है ना, इट वॉज एब्सोल्युटली, मैं तो कहूँ कि मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं बहुत छोटी थी,
1: जी जी
0: लेकिन मैंने लक्ष्मीकांत जी को आते हुए देखा, उनको पैर पड़ते हुए देखा और उनको ये कहते हुए सुना,
1: सुना।
0: ये मैं आज तक भूल नहीं पाती हूँ।
1: और इस वक्त आपसे बात करते हुए ये घटना सुनते हुए हमारी आंखों में भी पानी सा आ गया है कि कितना उम्दा गीत उन्होंने लिखा। पर बड़ा अफसोस हुआ कि उन्हें नहीं बुलाया गया। और इसके पीछे का कारण क्या कभी सामने आया?
0: नहीं, ये हो सकता है कि भूल गए और नेचुरली भूल गए, लेकिन हो सकता है कोई पॉलिटिक्स होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वहां पर वो होते तो जवाहरलाल नेहरू उनको बधाई देते कि आपने बहुत अच्छा गीत लिखा और बात खत्म हो जाती। लेकिन जवाहरलाल जी जब 2 महीने के बाद मुंबई आए,
1: जी
0: उन्होंने खास बोला यशवंतराव चव्हाण को फिर से कि आपने कहा था ना मैं मिलवाऊंगा वो कवि से, तो अब मुझे उनसे मिलना है। राजभवन में प्रदीप जी को बुलाया गया, वहां पर बैठ के जवाहरलाल जी ने बहुत सारी उनकी कविताएं सुनी 2-3 घंटे तक। और अच्छा, ये गीत भी आपका है, दूर हटो ये दुनिया वालों, आपने लिखा है? अरे ये तो हम गाते थे, हम जेल में थे, तब हमको आके बताया किसी ने कि ये गीत चल रहा है और लोग खुशी होके वापस वापस से इसको सुन रहे हैं,
1: जी
0: आपका लिखा गीत है, चल चल रे नौजवान आपका है, अरे ये तो इंदु भी गाती थी।
1: बताइए
0: ऐसी बातें कहाँ होती थी अगर वो
1: जी
0: जाते थे दिल्ली?
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: ये भी एक नसीब और डेस्टिनी है,
1: कि जो होता है अच्छे
0: अच्छा
1: के
0: होता
1: लिए
0: है।
1: होता है। जी
0: उसके बाद में उनको कहा गया मतलब जवाहरलाल जी ने कहा कि हमारा एक प्रोग्राम है कल यहीं पर, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के सामने ये गीत सुनाइए।
1: अच्छा इसी गीत को
0: इसी गीत
1: आप
0: को।
1: सुनाएं।
0: तो प्रदीप जी ने कहा कि मैं तो कवि हूं, मैं तो साजिंदे के साथ तो गा नहीं सकता हूं, अपनी तरीके से सुनाऊंगा। वो कहते हैं कि हाँ, हम आपकी तरीके से ही सुनना चाहते हैं, जैसे आप गाएंगे। फिर वहां पर बहुत बड़ी प्रोग्राम था, एक मीटिंग थी, वहां पर प्रदीप जी ने ये गीत सुनाया, और सुनाने के बाद जवाहरलाल जी ने कहा कि ये आपने जो हाथ में लिखा है ना गाना, वो मुझे दे दीजिए, आपकी लिखाई का गीत मैं रखूंगा। तो उनकी लिखी हुई हस्तलिपि में आज भी आनंद भवन में वो गीत सुरक्षित है।
1: वाह बहुत सुंदर। तो कहना चाहिए कि जो कवि प्रदीप जी की कलम से निकले जो गीत थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद में देश की रक्षा में सैनिकों का मनोबल बढ़ाया,
0: जी
1: और साथ ही उनके गीतों में राष्ट्रीयता थी, अध्यात्म था और मानवता का गहरा समावेश देखने को मिला, और तभी ये गीत लिखा गया जिसका जिक्र अभी हम कर रहे हैं। तो अगर आप इजाजत दें तो क्या ये गीत हम सुन लें?
0: हम सुनने से पहले एक बात और बता दूं
1: जी
0: कि ये गीत की जितनी भी रॉयल्टी आई वो सभी हम लोगों ने और मेरे पिता ने जवानों की विधवाओं के लिए दान कर दी है।
1: जी
0: ए मेरे वतन के लोगों की
1: लोगों
0: जो भी
1: रॉयल्टी आई।
0: रॉयल्टी

युवती आती है वो वहां पर जाती है उनके घर वालों को उनके परिवार को। वो मेरे पिता की इच्छा थी तो इसको हमने आज तक हमने निभाया है।

0: देखिए हमारी आंखों में भी पानी है और हमारी आंखें भी नम है आज इस बातचीत को जब हम कर रहे हैं। मिथुल जी, कवि प्रदीप जी की रचनाओं पर हम बात कर रहे हैं, उनके जो देशभक्ति रचनाएं हैं उनके बारे में हम इतनी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली उस देशभक्ति गीत के बाद ही, जिसका जिक्र अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, ऐ मेरी वतन की लोगों।
1: जी
0: और उन गीतों को लोग आज भी सुनते हैं और उनके लिखे गीतों को आज भी हम देशभक्ति से ही जोड़ते हैं। उनका पूरा जीवन लेखन, देश प्रेम, राष्ट्रवाद और मानवीय संवेदनाओं को समर्पित रहा और वे देशभक्त के पर्याय बन गए।
1: जी
0: एक समय ऐसा भी आया। आप इस बात को कैसे कहेंगी? आप किस तरह का माहौल लगता था? कौन कौन से लोग उनसे मिलने आया करते होंगे?
1: हाँ, मैं आपको एक खास बात ये बताऊं कि प्रदीप जी कभी भी दूसरे प्रोड्यूसर्स या म्यूजिक डायरेक्टर्स के घर पे या ऑफिस में कभी गए नहीं। जो भी उनसे बात करना चाहे वो हमारे घर पे आते थे।
0: जी
1: तो ये नहीं है कि कभी वहां पर बैठे हुए हैं उनकी ऑफिस में या उनके रिकॉर्डिंग रूम में, कभी नहीं। जो भी रिहर्सल होते थे गानों के, वो हमारे घर पे होते थे। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी कि बड़े बड़े लोग आते थे,
0: जी
1: आशा दीदी, लता दीदी, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफी, इन सबको सुनने का रिहर्सल्स में हमको मौका मिलता था।
0: बिल्कुल
1: तो हम छोटे छोटे बच्चे कान लगा के खड़े रहते थे दरवाजे के पास,
0: हाँ
1: और कभी कभी ऐसा होता था कि अचानक दरवाजा खुल जाता था तो हम पकड़े जाते थे, हम लोग खड़े।
0: जी
1: तो ये बात थी, एक तो ऐसा था कि लोग आते थे। और जो भी प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने पिताजी को, कवि प्रदीप जी को, पूरी छूट दे के रखी थी कि आप जैसा लिखना चाहें वैसा लिखिए, हम आपको नहीं कहेंगे कि आप इस लाइन पे लिखिए। तो कई उनके ऐसे गीत थे जो आज इतने पॉपुलर हैं, कौन सी फिल्म है लोगों को नहीं पता, लेकिन गीत लोग जानते हैं। जैसे जागृति फिल्म या नास्तिक फिल्म, उसमें इतने सारे अच्छे अच्छे गीत हुए और उसमें पूरी छूट दे के रखी थी कि आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। तो वो छूट के कारण भी उनकी एक स्वतंत्रता कभी बाधित नहीं हुई, और वो एक कारण था कि आज भी कई गाने पॉपुलर हैं।
0: जी
1: दूसरा ये कि हमारे घर पे और कौन कौन आते थे, तो कई नेता भी आते थे, अभिनेता भी आते थे हमारे घर पे, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, उस वक्त के लोग
0: जी
1: काफी आते थे। जो उनके साथ कभी काम नहीं किया हो वैसे लोग भी आते थे सिर्फ मिलने के लिए।
0: जी जी
1: और म्यूजिक डायरेक्टर्स तो रिहर्सल होता
0: हाँ
1: था
0: हाँ
1: इसीलिए आते थे। तो उनका बातचीत सभी से थी, लेकिन वो कभी भी अपने आप को उन्होंने झुकाया नहीं, ना वो किसी विचारधारा के साथ गए।
0: जी
1: उनकी अपनी विचारधारा क्या थी? राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सबसे ऊपर।
0: बिल्कुल
1: कोई भी आए जाए नेता, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। नेता कोई आते भी थे तो उनको बहुत खुली तरह से बोलते थे कि आप लोग ये गलत काम कर रहे हो, और वो सुन भी लेते थे। ऐसा माहौल था तब, वो सुन भी लेते थे।
0: क्योंकि उनकी गीतों से वो बात निकली, उनकी कलम में वो
1: हाँ,
0: जादू था।
1: तो जैसे कई ऐसे नेता थे जो हम मैंने देखा था कि वो आके बैठते थे, उनसे बात करते थे और कुछ सुन के ही जाते थे कि आपने ये गलत काम किया, ये अपनी पॉलिसी गलत है। तो इस प्रकार से उनका बातचीत का दौर चलता रहता था। उनको क्या पसंद था? न्यूज़, अखबार, मतलब जो अखबार सुबह आए तो चार पांच अखबार पढ़े बिना उनकी सुबह नहीं होती थी, पूरी नहीं होती थी। चाय और अखबार वो सबसे पहले सुबह उनके साथ में, उनके या तो

0: कमरे में हो या हमारा अच्छा बरामदा है वहां पर।
1: कौन कौन से अखबार हुआ करते थे, कुछ याद है आपको?
0: हाँ हाँ अभी अभी भी याद, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि वो बोलते थे कि इंडियन एक्सप्रेस लेना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें सही समाचार आते हैं। फिर नवभारत टाइम्स, मतलब हिंदी अखबार, इंग्लिश अखबार और मराठी अखबार,
1: जी।
0: वो मराठी भी पढ़ते थे। तो वो चाहते थे कि सभी तरह की उनको जो समाचार मिलता रहे, क्योंकि मराठी अखबार में लोकल ज्यादा आएंगे न्यूज, हिंदी अखबारों में हिंदी प्रदेशों के न्यूज आएंगे और इंग्लिश में तो सब कुछ आएगा ही आएगा। तो ये छह अखबार हमारे वहां रोज आते थे, और गुजराती, मतलब गुजराती भी, क्योंकि मेरी माँ गुजराती थी।
1: इतनी भाषाओं का
0: इतनी भाषाओं के हमारे वहां अखबार
1: आते
0: आते
1: थे और
0: थे
1: उसे पढ़ा
0: और
1: जाता था।
0: आज भी आते हैं, वो मैंने
1: जी
0: बंद नहीं किए।
1: जी
0: तो मुझे भी वो आदत है कि सुबह सुबह अखबार के सिवाय हमारी सुबह नहीं
1: नहीं
0: होती।
1: होती।
0: बीबीसी न्यूज़, उनका रोज का सवेरे का 5:45 बजे का न्यूज़ वो सुनते थे। ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज़, मतलब समाचार जो हिंदी में आएंगे, अंग्रेजी में
1: जी
0: आएंगे,
1: हाँ,
0: वो सब उनको सुनना जरूरी था।
1: तो घर में एक रेडियो था।
0: हाँ,
1: जी
0: एक नहीं, दो तीन रेडियो थे, क्योंकि तब तो टेलीविजन भी नहीं था ना, तो रेडियो उनका साथी था। मेरी माँ का अलग साथी रेडियो था और मेरे लिए अलग रेडियो था। तो हमारे घर में तीन अलग अलग रेडियो बजते थे, तो मैं जो है विविध भारती सुनती थी।
1: अच्छा
0: जैसे मैंने कहा, वो हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखते थे कि दिन में कुछ भी अगर समाचार आए तो हमको वो पहले बताते थे। जैसे कैनेडी को गोली मारी गई तो सबसे पहले उन्होंने आके हमको बताया कि देखो ये हो गया है। तो ये अपडेटेड रहते थे हर एक चीज में।
1: मतलब पल पल उनका देश के लिए समर्पित था
0: हाँ
1: और
0: हाँ
1: हर कण कण
0: तो
1: में वो देशभक्ति का
0: ये जो
1: जज्बा था।
0: जागरूकता थी ना, वो मुझे नहीं लगता कि सभी परिवारों में रहती है। तो जागरूकता रहने से मैं, माँ और तब दीदी की शादी भी हो गई थी, वो मुझसे बड़ी थी, तो हम तीनों लोग जागरूकता, मतलब वो क्या आ रहा है सुनने की आदत हो गई कि सबसे पहले समाचार सुनो क्या हो रहा है, समाचार सुन लिए उसके बाद में चाहे कुछ भी करो। तो मेरी माँ भी सुबह, मेरे पिता के जाने के बाद सुबह सवेरे वो रेडियो का समाचार पहले सुनती थी।
1: तो मितुल जी, अब एक और गीत हम आपकी पसंद का सुन लेते हैं। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
0: एक हम लोग थोड़ा सा हटके सुनाते हैं, संबंध फिल्म का, अंधेरे में जो बैठे हैं नजर उन पे भी कुछ डालो,
1: वाह
0: अरे ओ रोशनी वालों।
1: वाह, क्या बात है। महेंद्र कपूर साहब का गाया हुआ गीत है
0: जी
1: ये,
0: जी
1: और बहुत पसंद करते हैं लोग इस गाने को। गाने में बहुत ही दर्शन छुपा है, बहुत ही खूबसूरत गीत। आइए सुनते हैं ये गीत।
2: उत्तर

0: आप दोनों बेटियों ने अपने पिता से क्या सीखा, मतलब उनको जिस करीबी से आपने देखा, क्या क्या लगा आपको कि नहीं हम अपने पिता से ये नहीं सीख पाए, हमें सीख लेना चाहिए था, ऐसा कभी महसूस करते हैं आज उम्र के इस पड़ाव पर आकर?
1: अच्छा गाना नहीं सीख पाए, अच्छा लिखना नहीं सीख पाए ये दो चीजें तो खैर नहीं कर पाए हम। और दीदी तो फिर भी ठीक ठाक गाती थी, और मतलब प्रोफेशनली नहीं ऐसी, लेकिन जागरूकता, सरल जिंदगी, हमें कभी भी कोई कंपटीशन नहीं रहता है कि हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, उसके पास ये है, मुझे भी वो चाहिए, वो कभी नहीं रहा। फिल्म इंडस्ट्री के लिए कभी कोई अट्रैक्शन नहीं रहा,
0: फिल्मी दुनिया में रहते हुए भी, उस माहौल में रहते हुए भी।
1: और आज भी ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात हुई कि हमको फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं रहा कि हमको फिल्म में काम करना है या गाना गाना है या हमको ये करना है, ऐसा नहीं रहा।
0: और
1: वो
0: किसी तरह का कोई आपको मिला भी नहीं वहां से कि कोई व्यक्ति आए और कहा हो कि मितुल जी हमारे लिए कुछ लिखिए अपने पिता की तरह या गा के बताइए?
1: हाँ हाँ, नहीं नहीं, लिखने के लिए तो मुझे दो तीन लोगों ने अभी भी कहा था, जैसे बप्पी दा ने कहा था मुझे उनके जाने के कुछ सालों पहले कि आप पिताजी की तरह आप भी लिखिए, मैं उसके म्यूजिक कंपोज करूंगा, बप्पी लहरी ने
0: जी।
1: तो वो तो मुझे मिलता रहता है, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं नहीं लिख पाऊंगी मैं जानती हूं, तो मैं क्यों अपने आप को उसमें एक्सपोज करूं, तो वो काम नहीं हो पाया।
0: आप उनकी कोई कविता सुनाना चाहती हैं तो हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे जो आपको पसंद हो?
1: हाँ, हम
0: जो
1: अभी
0: फिल्मों में नहीं आई और उन अलग से जो उनका संकलन था,
1: हाँ,
0: कविताओं का।
1: हाँ हाँ, तो उन्होंने जैसे देशभक्ति के ऊपर कविताएं लिखी, तो एक दो लाइनें उसकी सुनाती हूँ और एक दो लाइनें कुछ अलग मूड की सुनाती हूँ।
0: जी,
1: तो उन्होंने मैंने जैसे पहले कहा था कि आजाद जब नहीं रहे, चंद्रशेखर आजाद, तब कविता लिखी थी।

0: उसी दौरान उसके बाद में जब हमको आजादी मिली
1: जी,
0: तब उन्होंने एक कविता लिखी थी कि लो फिर पुलक उठे, वे जो थे दले गए। लो फिर पुलक उठे, वे जो थे दले हुए, उर्वी पर अपार दुर्वा दल नए नए। कल तक थी जो विकल दैन्य से दबी रही, आज वही खिल उठी शस्य श्यामला मही। निखिल प्रकृति लहलही, विमल वातास वही, पल्लव पल्लव ने नवयुग की कथा कही। मतलब नवयुग में खुशी से आनंदित है क्योंकि हमको उस वक्त आजादी मिली थी। और आप अगर सुने, एक और उनका गाना है जो आप बाद में बजा सकते हैं कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा।
1: यही पैगाम वही
0: तरीके का है कि उसमें उन्होंने लिखा है कि हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाएं, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह पाए। तो ये एक गीत भी उनका बहुत देश के लिए पॉपुलर है और आज भी वो संदेश लोगों में जाना चाहिए कि इंसान का इंसान से उभाई जा रहा।
1: ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको हम ठुकरा नहीं सकते,
0: ठुकरा नहीं सकते,
1: भुला नहीं सकते, झुटला नहीं सकते हैं। तो आप कहें तो यही गीत हम सुन ले,
0: ये जरूर बजाइए, बहुत अच्छा गीत है।
1: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: मितुल जी, जब देश आजाद हुआ, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने उन लोगों के लिए लिखा जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण गंवा दिए, और एक ऐसी ज्वाला देश में उत्पन्न कर दी अपने शब्दों के जरिए, अपने गीतों के जरिए, कि नेहरू जी की भी आंखें नम हो गई और सुनने वालों की आंखें नम हुई। तो जब देश स्वतंत्र हुआ, उस समय क्या माहौल था और किस तरह का माहौल घर में था? हमें पता है तब आपका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन जब आप बड़ी हुई और इस तरह की बातें घर में चली होंगी, तो माँ के द्वारा ये बातें आप तक आई होंगी, उसके बारे में हमें बताइए।
1: मेरी माँ बताती थी कि जिस दिन ये 1947 15 अगस्त ये इतना बड़ा दिन था
0: जी
1: पूरे देश के लिए, तो वही माहौल हमारे घर में था। हमारे घर के बाहर रंगोलियां बनाई गई। मेरी माँ बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, वो बहुत अच्छी रंगोली बनाती थी। तो उन्होंने बहुत बढ़िया भारत माता की रंगोली बनाई। उन्होंने

0: बहुत सुंदर से फूलों से पूरा आंगन सजाया, और बापू को तो हमारा जो वो शीरा रहता है ना आटे का, वो बहुत पसंद था हमेशा,
1: हलवा।
0: हलवा। तो वो उन्होंने स्पेशली बोलती है कि मैंने बहुत सारा बनाया और प्रदीप जी ने भी खाया और आसपास के लोगों को भी हमने खिलाया। तो एक तो हलवा बना घर में, और बंधेज अपने तोरण बनाए हाथों से, गेंदे के फूल लेके हाथों से। मतलब तब ये था कि जितना हाथ से बना के करेंगे वो आनंद का एक दिखा सकते हैं कि हम कितने खुश हैं। तो घर घर में वो बना, मतलब हमारे घर में, आसपास के घरों में, तो माहौल बहुत ही सुंदर था और बहुत ही खुशबूदार था, क्योंकि इतने सारे फूल थे, इतने सारी पत्तियां थी और गाने बज रहे थे। उस वक्त तो ऐसा माहौल नहीं था कि लोग बड़े बड़े डीजे बनाए और वो करें, लेकिन रेडियो में गाने बज रहे थे और लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे।
1: और ऐसे में अगर कभी प्रदीप जी के गीत बज रहे होंगे, जन जन तक पहुंच रहे होंगे, तो क्या माहौल होगा?
0: बहुत बढ़िया, बहुत। और उस वक्त भी लोग बधाइयां देने आते थे कि प्रदीप जी आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपके गीतों के द्वारा हम लोगों ने
1: जागृति हुई, एक
0: जागृति मिली
1: आंदोलन का
0: हमको।
1: जो हाँ बीज था वो वहीं से उत्पन्न हुआ।
0: हाँ, मतलब इस प्रकार का माहौल था ये जो हमको माता पिता ने दोनों ने बताया।
1: जी।
0: और लेकिन लेकिन प्रदीप जी इसमें भी थोड़े आश्वस्त नहीं थे।
1: अच्छा।
0: जब मिल गई आजादी, उसके 2-4 साल के बाद उनको लगा कि आजादी तो मिल गई है, लेकिन क्या आप इसको संभाल पाओगे क्या?
1: बहुत बड़ा सवाल।
0: हाँ, तो ये उनके मन में उसी वक्त उठा था कि हमने तो आजादी दिलवा दी, हम तो चले जाएंगे, उसके बाद में क्या, क्या आप इस देश को आजाद रख पाओगे? तो उन्होंने बच्चों को पूछा कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के,
1: इस देश को रखना मेरे
0: मेरे
1: बच्चों
0: बच्चों संभाल
1: संभाल के।
0: के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। ये
1: जी
0: कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, क्योंकि
1: बहुत
0: उनको
1: बड़ी।
0: वही चिंता रही कि एटम बमों के जोर पे ऐठी है दुनिया, तुम क्या करोगे? तुम खुद कुछ भी करना चाहो, पूरी दुनिया में बम से। और आज वही माहौल नहीं है क्या? हाँ, आज जो इतने बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं, इतने बड़े
1: जी
0: बड़े देश,
1: जी
0: आज भी वही बात है। तो वो उन्होंने उस वक्त यही सोचा था कि आगे क्या होगा।
1: जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कवि प्रदीप जी वहां पहुंच गए जो आज हम देख रहे हैं। उस समय वो उस बात तक पहुंच गए और उन्होंने चिंता व्यक्त की जो आज सच साबित हो रही है ना?
0: हर एक लाइन सुनिए आप।
1: जी।

0: मितुल जी, आज प्रदीप जी के बारे में हमें इतनी बातें पता चल रही है और हम इतने अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आपको बता नहीं सकते हैं। बहुत सी बातें उनके बारे में हमने पढ़ी, जैसा कि आपने भी कहा कि वो बहुत साहसी थे, दबंग थे और जो कहना होता था सामने कह देते थे। कवि प्रदीप जी ने तो असंख्य गीत लिखे हैं। जब कोई फिल्म वाले या निर्माता पहले से बनाई गई धुन लेकर उनके पास आते थे और कहते थे कि इस धुन पर प्रदीप जी आपको गीत दीजिए, तो वो कहते थे कि भी मुर्दे का कफन पहले खरीदे हुए, मतलब मुर्दे को उसकी साइज का काटना पड़ेगा, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। और इस तरह से वो सही बात कह देते थे। क्या इस तरह से उनका सही कहना कहीं आपको लगता है कि उनके गीतों में कटौती हुई या कुछ और गीत, बहुत सारे गीत जो आ सकते थे नहीं आए उनकी इस बेबाकी से और बहुत ही सही रवैये से?
1: हाँ, ये आप मुझे लगता है ऐसा मतलब हुआ होगा, क्योंकि उनको कभी भी, जैसे आपने कहा कि पहले से बनाई हुई धुन पे उन्होंने कभी नहीं लिखा, उन्होंने लिखा वो अपनी खुद की धुन पे लिखा, और इसलिए कई बड़े बड़े संगीतकार भी उनसे थोड़ा दूर रहते थे कि भाई ये तो हमको काम नहीं करने देंगे, वो खुद गाएंगे और प्रोड्यूसर कहेगा कि यही धुन ठीक है। तो उसमें ओपी नैयर के साथ भी ऐसा एक वाक्या हुआ था
0: जी,
1: संबंध फिल्म जिसमें कवि प्रदीप जी के गीत और ओपी नैयर का संगीत। तो जब प्रोड्यूसर राम मुखर्जी, उन्होंने कहा कि प्रदीप जी लिखेंगे गीत और आप म्यूजिक देंगे, तो नैयर साहब ने कहा कि नहीं नहीं, मैं म्यूजिक नहीं दे सकता हूं, क्योंकि प्रदीप जी को आदत है कि खुद अपनी धुन बनाते हैं और फिर आप लोग हमको कहते हैं कि इस धुन पे आप अपना संगीत दीजिए। तो राम मुखर्जी ने कहा ऐसा हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। तो वो आए घर पे और कहा कि प्रदीप जी, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो रहा है, तो आप अपनी धुन इसमें मत दीजिएगा। बोलते मैं कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी मेरी आदत तो वैसी है, ओपिनियर चाहे तो बदल दे। मैं नहीं बोलूंगा कि मत बदलो, ठीक है। तो वो भी अपने घर पे ही हुए इतने रिहर्सल्स। ओपिनियर आते थे, आशा भोसले दीदी आती थी, महेंद्र कपूर, बहुत बढ़िया।

0: माहौल था, और कहीं पर भी कुछ ऊंच नीच नहीं हुआ। और नैयर साहब ने बापू के बनाई हुई धुन पे भी एक दो थोड़ा ऊपर नीचे करके संगीत दिया, और वो धुन को थोड़ा सा चेंज किया, जिसमें है चल अकेला तेरा मेला पीछे
1: पीछे
0: छूटा
1: छूटा
0: राही
1: राही
0: चल
1: चल
0: अकेला।
1: अकेला।
0: ये गीत बहुत पॉपुलर हुआ, संबंध के कई गीत बहुत पॉपुलर हुए। तो ये फिर ये एक प्रोजेक्ट बहुत सुंदर हुआ, और ओपी नैयर को भी जो टेंशन था वो खत्म हो गया कि नहीं नहीं प्रदीप जी के साथ काम कर सकता हूँ।

मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था दूसरा भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है। उजाले

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।

नमस्कार। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज पर तथा FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने को है आरंभ होती है आज की हमारी सायंकालीन प्रसारण सभा। सभा के आरंभ में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हो गई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया की विदेश मंत्री सुग्यानो ने की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और अधिक प्रगाढ़ हुई है। उन्होंने कहा कि बैठक में राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार, पोत परिवहन, निवेश, स्वास्थ्य, औषधि निर्माण और उर्वरक जैसी द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है।

0: गृहमंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्ष के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए। उन्होंने जिला अधिकारियों तथा वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा के बारे में सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपये है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन आज पूरे हो गए। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन मार गिराए। इससे पहले शनिवार को ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की थी। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से पहचान बनाई। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी में आतंकरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। जम्मू वायुसेना स्टेशन पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ लेफ्टिनेंट गोस्वामी का अंतिम संस्कार किया गया। लेफ्टिनेंट गोस्वामी का राजौरी जिले में अभियान के दौरान एक गहरी खाई में गिरने से निधन हो गया था। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। न्यू चंडीगढ़ में भारत के साथ एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 5 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने पहली पारी 8 विकेट पर 564 रन बनाकर घोषित कर दी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी अब से कुछ ही पलों में।

0: खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
2: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
4: हाय यार, अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
3: अरे वही अपना 60 रुपया।
4: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
3: तो देख, दो तरीके है, पहला आधी दाढ़ी करा ले,
4: और दूसरा,
3: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
4: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
3: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
7: नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का युवाओं के कार्यक्रम युवाणी में, और आज है आप शिवलता के साथ। उम्मीद है सब बढ़िया होगा, तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस सुविचार के साथ। उठो जागो, और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। दोस्तों, हमें हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। अक्सर जीत उनकी ही होती है जो हार नहीं मानते। दोस्तों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल 7 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य असुरक्षित भोजन के कारण होने वाले स्वास्थ्य खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करना और खाद्य सुरक्षा के मानकों को बनाए रखना है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2018 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। पहला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून सन 2019 को मनाया गया था। इस विश्व अभियान का नेतृत्व विश्व स्वास्थ्य संगठन और FAO संयुक्त रूप से करते हैं। वर्ष 2026 की थीम है बोझ से समाधान की ओर, हर जगह सुरक्षित भोजन, यानी फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन, सेफ फूड एवरीवेयर। दोस्तों, अब हम बात करेंगे खाद्य सुरक्षा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। दूषित और मिलावट वाले भोजन के सेवन से बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी शरीर में पहुंचते हैं, जो सैकड़ों बीमारियों का कारण बनते हैं। खाद्य जनित बीमारियां स्वास्थ्य प्रणालियों पर बोझ डालती हैं और मानव उत्पादकता को कम करके अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती हैं। भोजन को सुरक्षित रखना खेत से लेकर थाली तक हर स्तर पर काम करने वाले लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

दोस्तों, हथकरघा केवल दो शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, कलात्मकता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हाथ से संचालित करघों पर ताने बाने के मिलन से जो कपड़ा तैयार होता है, उसमें भारत के बुनकरों की आत्मा और मेहनत बसती है। महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान खादी और हथकरघा को आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनाया था। आधुनिक युग में तकनीकी बदलाव के बीच एक समय ऐसा आया जब ये क्षेत्र उपेक्षित होने लगा था, लेकिन वर्तमान में सरकार की दूरदर्शी नीतियों, सस्टेनेबल फैशन की बढ़ती मांग और डिजिटल क्रांति के कारण हथकरघा क्षेत्र से भारत का सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य तेजी से सुधर रहा है। कृषि के बाद हथकरघा क्षेत्र भारत में ग्रामीण रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। इस क्षेत्र से लाखों बुनकर और सहायक कार्यकर्ता जुड़े हैं, जिनमें महिला बुनकरों की संख्या सबसे अधिक है। दोस्तों, हथकरघा उद्योग ने ग्रामीण महिलाओं को घर बैठे रोजगार देकर आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया है। उत्तर पूर्वी राज्यों में लगभग हर घर में हथकरघा एक परंपरा और आजीविका का साधन है।

गांव में ही रोजगार के अवसर मिलने से शहरों की तरफ होने वाला अवांछित पलायन भी कम हुआ है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत

दुनिया भर में इको फ्रेंडली और हाथ से बनी चीज़ों का चलन बढ़ रहा है। भारतीय हथकरघा वस्त्रों का निर्यात विदेशों में तेजी से बढ़ रहा है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिल रही है। बुनकरों के सम्मान और इस कला को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है, जिससे आम जनता में इसके प्रति जागरूकता बढ़े। दोस्तों, बदलते परिदृश्य का सबसे बड़ा कारण हथकरघा का आधुनिक तकनीक से जुड़ना है। पहले बुनकर बिचौलियों पर निर्भर रहते थे, जिससे उन्हें सही मूल्य नहीं मिलता था। आज सरकार के गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल और निजी ई कॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से बुनकर अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों को बेच सकते हैं। आधुनिक फैशन डिजाइनरों ने हथकरघा कपड़ों को वेस्टर्न और फ्यूजन लुक देकर युवाओं के बीच भी इसे लोकप्रिय बना दिया है। अब खादी और हथकरघा केवल बुजुर्गों का पहनावा नहीं, बल्कि एक स्टाइल स्टेटमेंट बन चुका है। दोस्तों, परिदृश्य को सुधारने में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बुनकरों को बिना किसी परेशानी के कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि वो कच्चे माल की खरीद कर सकें। उत्पादों की शुद्धता और प्रामाणिकता की पहचान के लिए हथकरघा मार्क भी शुरू किया गया है, जिससे ग्राहक नकली सामान से बच सकें। बुनकरों को आधुनिक प्रशिक्षण, उन्नत टूल किट और बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए देश भर में हथकरघा क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। दोस्तों, ये स्पष्ट है कि हथकरघा उद्योग ने देश के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को बदलने में बड़ी सफलता हासिल की है। ये क्षेत्र न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि शून्य कार्बन फुटप्रिंट के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे अच्छा उदाहरण भी हम इसे मान सकते हैं। हालांकि पावर लूम से मिलने वाली प्रतिस्पर्धा और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों जैसी चुनौतियां अब भी मौजूद हैं, अगर हम लोकल फॉर वोकल के संकल्प को अपनाते हुए हथकरघा उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें, तो ये सुधरता परिदृश्य भविष्य में और अधिक समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेगा। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में हम बातें करेंगे और भी, उसके पहले हम आगे बढ़ेंगे इस गीत की ओर।

दोस्तों, पारंपरिक रूप से भारत को भाला फेंक और कुश्ती जैसे खेलों में वैश्विक सफलताएं मिलती रही हैं, लेकिन स्प्रिंट यानी 100 मीटर और 200 मीटर की तेज दौड़ में वैश्विक स्तर पर भारतीय पुरुष धावकों का दबदबा कम ही रहा है। इस परिदृश्य को बदलते हुए एक नए सितारे उभरे हैं, अनिमेष कुजूर। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गाँव से निकलकर ट्रैक एंड फील्ड की दुनिया में इतिहास रचने वाले महज 22 वर्षीय अनिमेष आज देश के करोड़ों युवाओं के लिए

यूथ आइकन और प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोत बन चुके हैं। दोस्तों, अनिमेश कुजूर का जन्म छत्तीसगढ़ के जशपुर ज़िले के एक सुदूर ग्रामीण इलाके में हुआ था। उनके माता पिता पुलिस विभाग में कार्यरत हैं। अनिमेश की खेल यात्रा स्कूल के दिनों में महज एक इत्तेफाक से शुरू हुई थी, जब उन्होंने मजाक मजाक में एक रेस में हिस्सा ले लिया था। इसके बाद उनका चयन सैनिक स्कूल अंबिकापुर में हुआ, जिसने उनके जीवन को एक अनुशासित धरे में बदल दिया। साधनों की कमी और शुरुआती दौर में बिना किसी आधुनिक ट्रेनिंग के उन्होंने केवल अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर खुद को ट्रैक पर झोंक दिया। दोस्तों, अनिमेश कुजूर ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय स्प्रिंटिंग के कई पुराने रिकॉर्ड्स को भी ध्वस्त किया है। ग्रीस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्प्रिंट प्रतियोगिता में अनिमेश ने 100 मीटर की दौड़ को मात्र 10.18 सेकंड में पूरा कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और वो 10.20 सेकंड की बाधा को तोड़ने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने 200 मीटर रेस में भी 20.32 सेकंड का शानदार समय निकालकर देश के सबसे तेज 200 मीटर धावक होने का गौरव हासिल किया। वो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में 200 मीटर स्प्रिंट इवेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष धावक बने। उन्होंने प्रतिष्ठित मोनैको डायमंड लीग के अंडर 23 इवेंट में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एथलीट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ लगाई। दोस्तों, अनिमेश कुजूर को आज का युवा वर्ग सिर्फ उनके पदक की वजह से नहीं बल्कि उनके नज़रिए के कारण भी अपना आदर्श मानता है। उनका मानना है कि अगर आपके पास प्रतिभा और कड़ी मेहनत का जज्बा है तो आपकी पृष्ठभूमि मायने नहीं रखती। मोनैको और रियाद जैसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड प्रिक्स के दबाव भरे माहौल में भी वो बिना डरे विश्व स्तरीय एथलीटों का सामना करते हैं, जो भारतीय युवाओं को वैश्विक मंच पर जीतने की मानसिकता सिखाता है। दोस्तों, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर सही अवसर और बुनियादी ढांचा मिले तो भारतीय एथलीट दुनिया के सबसे तेज धावकों जैसे उसेन बोल्ट की विरासत वाले इवेंट्स को भी टक्कर दे सकते हैं। आज वो देश के खेल परिदृश्य में एक नई क्रांति के अग्रदूत हैं। उनका ये सफ़र हर उस युवा को प्रेरित करता है जो मुश्किलों हालात में बीच में भी अपने सपनों की उड़ान भरना चाहता है।

दोस्तों, इसी के साथ ही वक्त हो चला है हमारी प्रश्नोत्तरी का। तो आज का सवाल पूछने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे कल के पूछे गए सवाल का सही जवाब। दोस्तों, हमारा कल का सवाल था, इंटरनेशनल योगा डे यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, जिसका सही जवाब है, शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए इंटरनेशनल योगा डे यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। और अब बारी है हमारे आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है, ब्लड डोनर डे यानी रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, ब्लड डोनर डे यानी रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही मैं लेती हूँ आपसे विदा, इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।

युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत अब से कुछ ही पलों में।

0: के भैया नाम कहला भैया, तो इसमें मतलब पूरा दुनिया के स्तर के मतलब विश्व स्तर पे ही कार्यक्रम चलावल जाला।
1: एकदम भैया देखा अपन जो संस्था बा ना
0: जी
1: विश्व स्तर के, जैसे यूनाइटेड नेशंस भइल भैया, विश्व स्वास्थ्य संगठन भइल
0: और भैया
1: कृषि संगठन भइल, अपन
0: है ना मिल के भैया
1: ई मिल के अपन यह कार्यक्रम के मनावे ल, यह नाते मनावे ल कि भैया हो जोने से पंच भाई लोग जागरूक हो कि उनके साफ शुद्ध स्वच्छ खाना मिला।
0: हाँ भैया एक उद्देश्य ये है भैया, मानव के मानव सभ्यता में मानव के जीवन के ये तीन को मूलभूत आवश्यकता भैया, रोटी कपड़ा और मकान। और ये एकरे लिए एकरे अलावा कोनो चीज जब कमी हो जाए ना तो मानव सभ्यता पे भैया।
1: अब देखा भैया सबसे बड़ी बात तो बा कि अगर आदमी स्वस्थ रहला तब कोनो चीज कही पावला। स्वस्थ रहे बदे भैया स्वस्थ आहार का भी जरूरत हो।
0: हाँ
1: अगर शुद्ध आहार लिहल जाए तब भैया जोन बा शरीर स्वस्थ रहे
0: सारा चीज भैया।
1: तो शरीर स्वस्थ रखे बदे सुरक्षित अनाज जोन स्वच्छ हो, खेते से लेके और थाली तक शुद्ध रूप से घरे आवे और सुरक्षित रहे, साफ रहे।
0: एक शुरुआत भइल 2018 में का शुरुआत भइल रहल और 2026 के भैया जो एकर थीम बा जो एकर उद्देश्य बा कि बोझ से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन
1: एकदम भैया,
0: ये भैया उद्देश्य बा। ए लेके कार्यक्रम चल रहल बा भैया। और जो ई तो भैया विश्व स्तर के बात भइल, अपने देश के अगर भारत देश के बात कइल जा तो भारत में खाद्य सुरक्षा के जोन जिम्मेदारी बा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जोने के FSSAI कोनो खाए वाला चीज पैकेट बा।
1: अब या ऊपर मोहर लगावे ले अपन की जोन बा सही बा।
0: हाँ,
1: एके पंच भाई लोग खा सके स्वास्थ्य
0: और पौष्टिकता के मत भैया का करला ऊपर नजर रखला ओके मानक के देख के
1: भैया। देखा हमन का चर्चा चलत रही लेकिन हम चाहते हैं कि यही से लगल जुड़ल जानकारी पंच भाई लोगों के सुनवा दिया जाए। खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां विषय पर डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह से बतियाओ थे भैया
0: और बतियाओ मनीष द्विवेदी भैया।
2: नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष द्विवेदी और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह जी जो सहायक आयुक्त हैं खाद्य सुरक्षा गोरखपुर में। सर आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आज हम लोग ज्वलंत मुद्दे पे बातचीत करेंगे जिसका विषय होगा खाद्य सुरक्षा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ आदिम अवस्था से ही रोटी कपड़ा और मकान को प्राथमिक जीवन की शर्त मानी गई है, जिसमें रोटी हमारी प्रारंभिक आवश्यकता है। कपड़ा और मकान रहे ना रहे, रोटी और जल बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज जब दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ भारत की भी आबादी बढ़ रही है, जमीन औसतन कम होती जा रही है, लोगों की जरूरतें ज़्यादा बढ़ रही है और इसमें एक ही कारक नहीं है, जलवायु परिवर्तन भी है, वैश्विक मुद्दे भी हैं, युद्ध है, खाद्य सुरक्षा की कमी है, तो इन तमाम मुद्दों के बीच में जब आप खाद्य सुरक्षा के बारे में बातचीत करते हैं या सोचते हैं तो आप कहाँ पाते हैं कि आम आदमी कैसे सुरक्षित रहे इन तमाम दुश्वारियों के बीच में?
3: हाँ देखिए, जैसा आपने कहा कि जो फूड है या हमारा जो खाना है या जो हम पानी पीते हैं, ये हमारी सबसे पहली आवश्यकता है क्योंकि जीवन के लिए ये सबसे मूलभूत आवश्यकता है। और जैसा कि आपने बताया कि वैश्विक आबादी और अपने देश की आबादी बढ़ रही है और हम लोग आज जनसंख्या विस्फोट के द्वार पे खड़े हैं और पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर पे आते हैं जनसंख्या में, तो जो आपकी उपलब्धता है वो तो कम हो ही रही है। जैसा आपने बताया कि प्रोडक्टिविटी, जलवायु परिवर्तन, ये सारी चीज़ें से जो है उपलब्धता कम हो रही है। इसके साथ साथ जो उसकी गुणवत्ता है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो हमारे स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करती है, बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आज के जो युग में इसको एक तो खाद्य उपलब्ध हो, खाद्यान्न उपलब्ध हो, स्वच्छ पानी उपलब्ध हो और उसकी जो गुणवत्ता है उसको बनाए रखना, ये हमारे लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जागरूकता और बाकी जो चीजें हैं इनको हम इम्प्लांट करके तब इसमें सुधार कर सकते।
2: सर खाद्य सुरक्षा और पोषण अभियान जो है, तो जब आपका डिपार्टमेंट या आपकी मशीनरी जब काम करती है तो लोगों को कैसे अवेयर करती है कि क्या क्या पूर्व धारणा है जो गलत है या क्या आदर्श स्थिति होना चाहिए या कहाँ आप पाते हैं कि कुछ गलतियां रह गई हैं जिसको सुधारा जा सकता है?
3: जी, सबसे पहले बात तो ये है कि जो हम खाते हैं पहले ये देखें कि हम जो चीज़ें खा रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर रही हैं। जैसे आजकल हमारा प्रोग्राम चल रहा है, कहते हैं कि चीनी और नमक थोड़ा कम, जो आपका जो मीठा है वो आपके स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित कर रहा है। जैसे हमने सुना कि इंडिया जो है वर्ल्ड की डायबिटीज कैपिटल बन चुकी है, तो केवल जो उपलब्धता ही नहीं, जो इसकी गुणवत्ता है और क्या खाएं और क्या

0: पंचो जय हिंद भैया हो देखा नारा लगल पंचवाई के बैठकी भी शुरू भइल।
1: हाँ भैया
0: भैया देखा आज विश्व खाद्य सुरक्षा।
1: हाँ भैया 7 जून हमें और आज विश्व खाद्य दिवस हो भैया। और कोनो भी चीज जन दिवस मनौले के होला जैसे विश्व खाद्य

0: ना खाएं। इसके बीच में बहुत ज़्यादा भी अवेयरनेस की ज़रूरत है, बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है। तो जो चीज़ें हम खाएं वो देखें कि वो पोषक तत्वों से भरपूर हों और उसमें किसी तरीके का जैसे आपके स्वास्थ्य को बुरा प्रभाव डालने वाली चीज़ें ना हों, ये पहली प्राथमिकता होनी
1: सर,
0: चाहिए।
1: वैश्विक ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन है या विश्व कृषि संगठन है, वो सोचती है कि खाद्य सुरक्षा, खाद्य संरक्षा या खाद्य में मिलावट ना हो, लेकिन भारत की जरूरत ये है कि कृषि क्रांति हो। तो हम लोग एक हरित क्रांति देख चुके हैं जिसका दुष्प्रभाव अब दिखना शुरू हो गया है। तो हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग या मोटे अनाज की तरफ पुनः जा रहे हैं मोदी जी के आह्वान पे या भारत सरकार के आह्वान पे। तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे श्रोताओं को कि कैसे क्या किया जाए?
0: हाँ, देखिए देखिए, सरकार की जो प्राथमिकता है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो आपके खाद्य जो भी आप हम खाना खाते हैं उसकी गुणवत्ता से सीधे जुड़ा हुआ है। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उससे जो आपके जो भी फसल आएगी, जैसा आजकल हम लोगों में आपने सुना होगा कि हम तो बाजार से सब्जी खरीद के लाते हैं लेकिन उसमें जो स्वाद पहले थे वो स्वाद अब नहीं है। जैसे आप टमाटर खा रहे हैं, कोई सलाद खा रहे हैं, कोई भी सब्जी खा रहे हैं, तो हमारी उत्पादकता तो निश्चित रूप से ग्रीन रेवोल्यूशन में बढ़ी है
1: जी
0: लेकिन जो उसकी गुणवत्ता है, जो आपने कहा कि टेस्ट और जो उसमें न्यूट्रिशंस लेवल है वो घट रहे हैं। इसके साथ साथ जो आपका मिट्टी का स्वास्थ्य है, हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ मिट्टी का स्वास्थ्य, वो भी जो है गिर रहा है और उससे हमारी उत्पादकता पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए सरकार का जोर है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ें, उससे उत्पादकता के साथ साथ मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो भी बरकरार रख पाएंगे और आपका जो प्रोडक्ट होगा वो भी जो है वो गुणवत्ता अच्छी होगी। एक बहुत छोटा सा आप सोचने का विषय है कि हम जो भी किसान भाई हैं वो खूब सारा खेत में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप वायुमंडल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें ये मिलेगा कि जो वातावरण है उसके हवा में आपके 78 से लेके 79% नाइट्रोजन है
1: जी
0: और यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन की कमी हो गई है। अब ये सोचने वाली बात है कि जो चीज़ हवा में 78% है वो मिट्टी में इतना कम क्यों है। वो इसलिए है कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हवा से उसको खींच के मिट्टी में फिक्स करते हैं, वो सारे के सारे जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर और बहुत सारे पेस्टिसाइड का जो यूज़ है उससे वो प्रभावित हुए हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब कम हुए तो फिक्सेशन कम हुआ, फिक्सेशन कम होगा तो आपको बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा तो स्वास्थ्य तो खराब होना ही है।
1: चूंकि आम आदमी की जरूरतें बाजार से ही पूरी हो रही हैं या होती हैं, तो बाजार जब जाता है तो वो सोचता है महंगे प्रोडक्ट लाके हम ज्यादा स्वस्थ अपने बच्चे को बना पाएंगे, जिसमें तेल, घृत, पनीर, ये तमाम सारे महंगे जो सामान है, प्रोडक्ट है या ब्रांडेड है। तो वहां ठगा सा महसूस करता है घर आके जब सुनता है ये बातें कि इसमें पोषण या मिलावट ज्यादा है। तो आपकी एजेंसी जिसकी आप आयुक्त हैं, तो आप तक आम आदमी की पहुंच कैसे हो, कैसे कंप्लेन कर पाए कि साहब ये सामान हमने अच्छा नहीं पाया गुणवत्ता में जबकि दाम हमने ज्यादा दिए?
0: हाँ, देखिए जो गुणवत्ता का सवाल है उसमें जो हमारा विभाग है जो खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, ये पूरा विभाग प्रदेश स्तर पर जो है आयुक्त खाद्य सुरक्षा के उसमें काम करता है। जिले लेवल पे इसमें जो है सहायक आयुक्त और मंडल लेवल पर सहायक आयुक्त है। तो ये विभाग जो है सुनिश्चित करता है कि आम लोगों के थाली में जो चीजें जाए उसकी गुणवत्ता जो है वो खराब ना हो। इसके लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 बना है और जो 2011 से लागू है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। तो इसके तहत जो हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं जो तहसील लेवल पे और जोन में पोस्ट होते हैं, ये लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट में है उसकी सैंपलिंग करके उसकी गुणवत्ता देखी जाए और अगर कोई विचलन है तो उस पर कानूनी कार्रवाइयाँ की जाए। इसके साथ साथ हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। हमारे पास एक फूड सेफ्टी वैन है जो पूरी चलती फिरती प्रयोगशाला है, वो हम जगह जगह ले जाते हैं, उसके माध्यम से लोगों में पंपलेट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्लस उनको सिखाते हैं कि आप कैसे अपने घर पे घरेलू तरीके से आप अपनी मिलावट जांच सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें कि सबके घर में दूध आता है और बच्चे भी पीते हैं इसको, बुजुर्ग भी पीते हैं, तो उसकी गुणवत्ता आप कैसे जांचें जब आपके पास कोई लैब ना हो कोई ये हो? तो हम उनको बताते हैं कि जैसे आप कुछ बूंदे जवान पे रखें, और जब आप अपने जवान पे उसको रखते हैं, अगर उसमें कोई कसैला स्वाद आता है या आपकी जवान चिपकती है या मीठापन ज्यादा महसूस होता है तो आप समझ लीजिए कि इसमें मिलावट है। अब रही बात यह है कि जैसे आपने मिलावट तो जान लिया कि हाँ ये चीज खराब हो सकती है, तो उसके बाद क्या करें? तो उसके लिए हमारा विभागीय जो है एक टोल फ्री नंबर है वो 1-800

0: 1805533। तो ये जो टोल फ्री नंबर है इस पे आम जनमानस के लिए ये मतलब खुला हुआ है, और इस पे जो है वो फोन करके अपनी शिकायत जो है दर्ज करा सकते हैं, और ये शिकायत पूरे प्रदेश के लिए है। फिर वहां से जो है हमारा सेंट्रल वो काम करती है मशीनरी, और उस पर्टिकुलर जिले तक वो शिकायत पहुंचाती जाती है, और फिर उसकी आख्या और उसकी पूरी शिकायत निवारण करके इसको पुनः भेजना होता है, पुनः उस व्यक्ति से बात करके, और हम उसको संतुष्ट करते हैं। तो एक तो ये मैकेनिज्म शिकायत का मैकेनिज्म हुआ। दूसरा हम लोग जो काम करते हैं कि वो रेंडम इंस्पेक्शन करते हैं दुकानों का, उनके लाइसेंस रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनका साल में एक बार ऑडिट करवाते हैं। तो ये चीजें के उसमें जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि अपना काम बैकग्राउंड में करते रहें। त्योहारों पे विशेष अभियान चलाए जाते हैं, सीजनल अभियान चलाए जाते हैं, जैसे अभी हमने कटे फलों और इस सब के लिए जो फल पकाने में यूज होता है, आइसक्रीम और आइस कैंडी का सीजन चल रहा है, गर्मी का सीजन है, तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक अभियान चलाए जाते हैं, और उसमें अगर कोई कमियां पाई जाती हैं तो कानूनी कार्रवाई के साथ साथ ये सुनिश्चित किया जाता है कि ये जो शिकायत है या जो मिलावट है उसको दूर किया जाए,
1: कम किया जाए या दूर किया जाए। सर, चूंकि भारत खाद्य विविधता वाला देश है, हर जगह हर प्रकार की जलवायु परिवर्तन के कारण मतलब खेती बाड़ी की जाती, कहीं धान ज्यादा होता है, कहीं गेहूं ज्यादा होता है, कहीं गन्ना होता है, कहीं शाकाहारी लोग हैं, कहीं मांसाहारी हैं, कहीं सर्वाहारी हैं। तो ऐसे देश में जब आप काम करते हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। आम आदमी को कैसे समझाएंगे कि किन किन वस्तुओं में ज्यादा मिलावट होती है, क्या क्या मतलब बचाव के लिए बताएंगे आप?
0: हाँ, देखिए जो मिलावट की चीजें हैं वो तो हम लोग जब जांच करते हैं तो लगभग सभी वस्तुओं में कुछ ना कुछ पाया जाता है, बट जो हम लोग रोज यूज करते हैं, जैसे आपकी रोजमर्रा की यूज की जो चीजें हैं जो आप रोज खाते हैं वो आपके स्वास्थ्य को ज्यादा प्रभावित करता है। जैसे आपका हमने बताया कि दूध है, जैसे आपका तेल है, जैसे आपका जो फल है जो आप लेते हैं, सलाद के लिए जो आप सब्जियां लेते हैं, इसके साथ साथ आपका चावल और गेहूं, या जैसे आपने मीट की बात की, तो ये जो चीजें हैं ये मतलब मिलावट का जो लेवल है वो आपके दूध में इस समय सबसे ज्यादा है। मीट की जो आपने बात की, मीट में सबसे ज्यादा ये है कि इसमें संक्रमण बहुत जल्दी होता, संक्रमण का मतलब जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो इसके थ्रू बहुत जल्दी कैरी होते हैं। अगर जिस जानवर का आप मीट खा रहे हैं अगर वो अस्वस्थ है, उसमें कोई बीमारी है, तो उसके थ्रू आपको वो बीमारी लग सकती है। जैसे मछली के थ्रू कॉलरा काफी फैलता है, लीवर की बीमारियां, टाइफाइड, इस तरीके की चीजें फैलती हैं। तो जो आपने कहा कि कैसे बचाव करें, तो हम लोग जिसको हाई रिस्क फूड बोलते हैं, जैसे आपका पीने का पानी है, मीट है और दूध है, ये तीन चार चीजें जो हैं ये सबसे ज्यादा आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, या यूं कहें कि इनमें सबसे ज्यादा मतलब जो है इन्फेक्शंस या गुणवत्ता की प्रॉब्लम्स आती है।
1: सर, भारत दो धड़े में बटा हुआ है, एक कहता है कि नेचर के साथ चलें और एक कहता है कि नहीं साइंस के साथ चलें। सर, आपका क्या मानना है कि किसके साथ चला जाए, दोनों में बैलेंस बनाया जाए, क्या उपयुक्त होगा आम आदमी के लिए?
0: देखिए, साइंस जो है वो नेचर के विपरीत नहीं है, मेरा अपना मानना है। साइंस का अर्थ विकास नहीं है, साइंस का अर्थ है ये विशिष्ट ज्ञान। अगर आप जिस चीज का ज्ञान होगा आप, तो वो निश्चित रूप से आपको लाभ पहुंचाए, लेकिन अधूरा जो ज्ञान होता है वो नुकसान पहुंचाए।
1: साइंस के साथ जब मार्केट जुड़ जाता है उस स्थिति में बात कर।
0: हाँ, देखिए आपने जैसा कहा ना कि साइंस के साथ मार्केट जुड़ जाता है, तो जैसे आजकल खाने में आप देख रहे होंगे कि पैकेज बन फूड काफी यूज होते हैं, और हमारे साइंस ने ऐसा तरक्की कर ली है या ऐसा वो कर लिया कि आप जो खाद्य पदार्थ हैं उनको लंबे समय तक आप सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे पास्चुराइजेशन है, जिसके द्वारा आपका जो दूध है वो आप एक हफ्ते से लेकर 10 दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त तो रोजमर्रा के जीवन में जो खाने वाली चीजें हैं, जैसे बिस्किट, नमकीन, आपके तेल हैं, तो इनको हम संरक्षित रख सकते हैं, जिसको हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो ये है कि उसका मिसयूज। अब जैसे आप प्रिजर्वेटिव का जो यूज करते हैं वो इसलिए यूज करते हैं कि ये खाद्य सामग्री खराब ना हो, लेकिन अगर आप उसकी मात्रा जो निर्धारित मात्रा, जैसे 100 ppm की मात्रा यानी 100 मिलीग्राम 1 kg में या इससे कम की बात है, तो वो मात्रा से जब आप अधिक जाते हैं तब वो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। और जितना ही ये सही है कि आप जितना नेचर के करीब रहेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे, तो जो विज्ञान और नेचर अलग अलग चीजें नहीं है, अनटिल अनलेस हम अपने प्रॉफिट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उसका मिसयूज।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने प्लास्टिक मुक्त भारत और अपने स्वास्थ्य के लिए सजग रहना संबंधी विषय पे बहुत अच्छी सार्थक जानकारी दी। आप स्टूडियो में आए और श्रोताओं को संभवतः ये संवाद अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
4: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: भाई संदेश सुनो भैया।
3: और भैया देखा, हाँ
2: योग सुरक्षा के बात भैले भैया, तो आहार के बात हो गए भैया, बिहार के बात हो जाए भैया। तो अगर गुणवत्तापूर्ण अच्छा पौष्टिक भोजन पंच भाई चाहे केहू हमन के पूरा समाज में मिलत है भैया, तो एकरे साथे साथे भैया हमन के भी कुछ करता भला भैया योग और प्राणायाम के।
3: एकदम भैया देखा, अगर योग और प्राणायाम पहले भी पंच भाई लोग अपन कसरत करता
2: रहे भैया, गांव गांव अखाड़ा चले।
3: हाँ, और अगर देखल जाता है योग और प्राणायाम खातिर अब कई जगह देखल व्यवस्था भी हो रहा बा। अगर अपने पंचायत स्तर पर भी देखल जाए तो कुछ पंच भाई लोग तैयारी की
2: भैया। आज के भाग जीवन में बहुत आवश्यक चीज हो भैया,
3: काले मतलब अगर स्वस्थ रहे एक बात तो योग और प्राणायाम जरूर करे के चाहिए।
2: निरोग रहे, स्वस्थ रहे, और भैया एक साथ जब अच्छा भोजन हो गई और योग प्राणायाम के बात हो गई भैया, तब मनोरंजन के बात हो जाए।

0: हाँ भैया देखा हो कितना निम्बन ई गीत गौनाई भइल अंजनी कुमार के स्वर में, तिहल जे धन्यवाद। और भैया हो अपने बैठकी के समय भी समाप्त
1: हो। लिहल जा भैया, पंचो जय
0: जय हिंद।

ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में क्रमशः भोजपुरी तथा हिंदी में आप सुनेंगे क्षेत्रीय समाचार।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम शिवानी अरोरा। केंद्र सरकार कहले है वे कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी के दाम में भारी बढ़ोतरी के बावजूद भारतीयन के घरेलू गैस सबसे कम दाम पर उपलब्ध हो रहल हो। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय एको बयान में कहलस कि भारतीय सिलेंडर कवनहूँ पड़ोसी देश के तुलना में सस्ता हवे आ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसन विकसित अर्थव्यवस्था के तुलना में ढेरे कम बा।
1: सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वही आज घरेलू रसोई गैस के दाम में 14 किलो

0: 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपया का बढ़ोतरी कैल कैल हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र में आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में हिस्सा ले। यह मौके पर रक्षा मंत्री कहले कि लखनऊ के साथ ही पूरा उत्तर प्रदेश विकास के राह पर आगे बढ़ रहल हो। कार्यक्रम में मौजूद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कहले कि जन समस्या के समाधान आ विकास कार्य में गति देवे खातिर संवाद बहुते जरूरी बा। कार्यक्रम में प्रबुद्ध जन आ भाजपा का कार्यकर्ता लोगी हिस्सा ले। प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल असम कक्ष पदन पर भर्ती परीक्षा बिहने से 10 जून ले रोजाना दुई पाली में आयोजित कैल जाई। एक लेके प्रशासन के ओरी से पुरहर इंतजाम कैल जा रहल हो। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियन के सुविधा खातिर रेलवे और परिवहन निगम खास तैयारी कैले बा। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर और लखनऊ के बीच दुई को विशेष अनारक्षित ट्रेन चलवले का फैसला ले ले हो। परिवहन निगम रियायती दर पर परीक्षार्थियों के सेवा उपलब्ध कराई। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओरी से आयोजित प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत पछिला 3 और 4 जून के भैल लिखित परीक्षा के सज्जू 15 विषयन का प्रोविजनल उत्तर कुंजी आयोग की ओरी से जारी कई दिहल गेल बा। आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार बतवले कि जोता कौनो प्रश्न चाहे उत्तर के बारे में कौनो आपत्ति होके था अभ्यर्थी तय प्रक्रिया के हिसाबी से ऑनलाइन जरिया से आपन आपत्ति दर्ज करा सकेले। डॉक्टर प्रशांत कुमार बतवले कि 12 जून के राति 12 बजे ले आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कैल जा सकेला। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कक्षा 12वीं के परीक्षा का नतीजा जारी भइले के बाद ऐसे जुड़ल मुद्दन का जांची आ उत्तर पुस्तिका के फेर से मूल्यांकन बदे ऑनलाइन आवेदन जमा कैले का आज आखिरी तारीख हो। बोर्ड सोशल मीडिया पोस्ट में बतवलस की पोर्टल आधी राती से खुलत रही। छात्र लोगों से अनुरोध बा कि वो आखिरी तारीख के पहले अपन आवेदन जमा कई दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर NEET UG 2026 का पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र का कथित लीक चाहे बिक्री के दावन का खंडन कैले हो। NTA कहले हवे कि ई छात्रन आ उनके परिवारन के चिंता का फायदा उठावे वाले संगठित नकल गिरोह का काम हो। एजेंसी सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनल खातन आ सामग्री का पहचान कई के ऐसे जुड़ल प्लेटफॉर्म के खिलाफ जुड़ते कार्यवाही का चेतावनी दिले हो। केंद्र सरकार का 12 बरिस पूरा भेले के उपलक्ष्य में आज प्रदेश सरकार का कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की ओरी से देउरिया के खनवा नदी में वृहद सफाई अभियान चलावल गई। अभियान में नदी से सवार सेवार जलकुंभी अवशेष निकारल गेल। यह मौका पर कृषि मंत्री पौधों लगवले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुरुष हॉकी अंडर-18 जूनियर एशिया कप में भारतीय टीम की ओर से स्वर्ण पदक जीतले पर भारतीय खिलाड़ियों के बधाई आ शुभकामना दिले हवे। मुख्यमंत्री केतन कुशवाहा शाहरुख अली प्रहलाद राजभर राहुल यादव आ सुमित पाल के बढ़िया प्रदर्शन कैले पर उनका सराहनो कैले हवे। जापान के काका मिकाहारा में खेलल गेल फाइनल मुकाबला में भारत मेजबान जापान के 4-1 से हराकर एशिया चैंपियन बनले का गौरव हासिल कैले हो। समाचार पूरा भेल। नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। केंद्र सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीयों को घरेलू गैस सबसे कम कीमतों पर उपलब्ध हो रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम हैं।
1: सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

0: कार्यालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र में आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ सहित पूरा उत्तर प्रदेश विकास की राह पर अग्रसर है। कार्यक्रम में मौजूद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जन समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों को गति देने के लिए संवाद बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में प्रबुद्धजनों और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भागीदारी की। प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा कल से 10 जून तक प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। इसे लेकर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे और परिवहन निगम ने विशेष तैयारी की है। पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर और लखनऊ के बीच 2 विशेष अनारक्षित ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। परिवहन निगम रियायती दरों पर परीक्षार्थियों को सेवा उपलब्ध कराएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत विगत 3 और 4 जून को संपन्न लिखित परीक्षा के सभी 15 विषयों की प्रोविजनल उत्तर कुंजी आयोग की ओर से जारी कर दी गई है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि यदि किसी प्रश्न या उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति हो तो अभ्यर्थी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि 12 जून की रात 12 बजे तक आपत्तियाँ ऑनलाइन दर्ज की जा सकेंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। छात्रों से अनुरोध है कि वह अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि यह छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की ओर से देवरिया के खनवा नदी में वृहद सफाई अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत नदी से शैवाल, जलकुंभी और अवशेष पदार्थ निकाले गए। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुरुष हॉकी अंडर 18 जूनियर एशिया कप में भारतीय हॉकी टीम द्वारा स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने केतन कुशवाहा, शाहरुख अली, प्रहलाद राजभर, राहुल यादव और रोमित पाल के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर उनकी सराहना भी की। जापान के काका मिकाहारा में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने मेजबान जापान को 4-1 से हराकर एशिया चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
4: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
4: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
7: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
6: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: पंचो
2: जय जवान जय किसान भैया हो, देखा अपने पंच भाई लोगों के बैठकी लगल।
1: हाँ भैया, तरह तरह के काम करने पंच भाई लोगन, और आजकल भैया को नया चल गए कि बागवानी की ओर लोगों के ध्यान ज्यादा जाता भैया।
2: एकदम भैया, देखा इसमें अपन सरकार भी बड़ा सहयोग कर रहा।
1: सरकार सहयोग कर देता सर, और कहे से कि भैया जे फसल उगावता उसमें लागत आ जाता, और कहीं कहीं मौसम के मार और इतना लागत आ जाता भैया कि लोग परेशान होता ना बागवानी लगा के, उनके जनबा बहुत समय तक के उनके उत्पादन लेता ना।
2: हाँ भैया, और ये समय देखा समय आ रहा बा बागी लगवले के।
1: हाँ भैया,
2: ये नाते कि बरसात के मौसम में जब बागी लगावल जाला तो भैया वो पेड़ जोन बा सूखले का डर नहीं रहा,
1: भैया
2: बारिश होवल कराला और पानी समय समय से वृक्ष के मिलल कराला।
1: हाँ भैया,
2: तो भैया ये नाते से पंच भाई लोगों के अपन बागी लगवले का तैयारी भी अच्छे से करे के चाहिए।
1: हाँ भैया, पंच भाई जी माने एक बात, पुरान गांव के कहो जानते हैं जौने महीना में लास्ट में भैया अंतिम में नौ आवाला, जैसे सावन फागुन अगहन ये समय में भैया वृक्षारोपण कर होला, और निश्चित रूप से वो पौधा पकड़ लेला। तो भैया देखा जे नया बाग लगवले के सोचा था तो सबसे पहले भैया वो ये देखें कि जनबा कुछ जरूरी बातें के ध्यान देवे के रहला कि कम वो मिट्टी के जो बा पी एच बस 6.5 से 7.5 तक रह चाहिए, एमें उचित पोषण रहला भैया। और एकरे साथे साथे मिट्टी के चुनाव हो गई, और भैया जल निकासी के उत्तम व्यवस्था हो गए
2: भैया। हाँ भैया, पानी लगले से पौधा मरले का डर रहा।
1: और जो पौध के चयन करें वो अपने जल जहाँ लगाए वहाँ के जलवायु के अनुसार रहे, और जो जहाँ से चयन करें अच्छा नर्सरी हो के भैया, और रोग मुक्त स्वस्थ पौध के चयन करें भैया।
2: एकदम
1: भैया, एक साथे साथे भैया हर पौध के भैया एक निश्चित दूरी होला, पौध से पौध की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, ये पर भी भैया विशेष ध्यान देवे के चाहिए।
2: अब भैया देखा यह समय तो पंच भाई लोग ये काम भी कह सकेला कि अपन जैसे खरीफ वाली फसल बा एक खातिर धान के भाई रोपाई भी कह सकेला।
1: हाँ।
2: और वहां में भैया पेड़ भी लगा सकेला,
1: फसल के तैयार पेड़ पौध के तैयार।

0: में भैया कुछ समय लग रहा,
1: समय लगा ला।
0: 4 साल 5 साल भैया लग जाला अलग अलग पौधवा ना भैया। और
1: खेती कैले से दो बात हो जाए भैया, कि खेत भी बनल रही
0: हाँ

0: के बादाम कहल जाला।
1: हाँ भाई है
0: कि नहीं?
1: बादाम कहल जाला भैया। तो मूंगफली की खेती ये विषय पर डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह से भैया पूरा जानकारी सुनल जा।
2: साथियों नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सिंह, प्रक्षेत्र प्रबंधक कृषि विज्ञान केंद्र सोहावलिया। आप लोगों को आज मैं मूंगफली की वैज्ञानिक खेती के बारे में बता रहा हूँ। मूंगफली खरीफ की मुख्य फसल है और इससे तेल भी प्राप्त किया जाता है। यह वायु और वर्षा दोनों के द्वारा भूमि को कटने से बचाती है। मूंगफली के दाने में जो पोषक तत्व की मात्रा होती है 22 से 28% प्रोटीन पाई जाती है, 10 से 12% कार्बोहाइड्रेट और 48 से 50% तेल या वसा पाया जाता है। मूंगफली की जो उत्पादन प्राप्त करते हैं, अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसके भूमि का चयन किया जाता है और भूमि इसकी ढाल की तरह हो कि पानी उस पर रुके न, और बलुई दोमट मिट्टी हो तो और भी अच्छा लाभ प्राप्त होता है, उत्पादन बढ़ के मिलता है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखें कि इसके बीज दर की जो मात्रा होती है वह किसान भाई अपने खेतों में कम मात्रा में बोते हैं, जिससे पौध संख्या कम रहती है और उत्पादन कम प्राप्त होता है। अतः यह आवश्यक है कि मूंगफली की जो बीज की दर है उसको बढ़ा करके बोएं। वह मात्रा इस तरह से निर्धारित होती है, उसकी प्रजाति के अनुसार है मित्रों, और जो बोने की दूरी है उस पर निर्भर करती है। मित्रों मूंगफली की जो प्रजातियां हैं वो जैसे उपरहार चंद्रा के नाम से है, जो जून के अंतिम सप्ताह में बोई जाती है, जिसकी बीज दर 70 से 75 किलोग्राम और बुआई की दूरी 50 सेंटीमीटर होती है। पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हैं। उत्कर्ष की इसी तरह से है यम तेरह अंबर, जिसको कि जुलाई के प्रथम पखवाड़े में बोते हैं, 70 से 75 किलोग्राम बीज दर होती है, 45 सेंटीमीटर बुआई की दूरी और पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर ही रखते हैं। मित्रों चित्रा और टीजी 37 से और प्रकाश, इन तीनों प्रजातियों की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर और बीज की मात्रा जो है इसमें गिरी जो है 95 से 100 किलोग्राम लगती है। मित्रों गिरी जो है इसके ऊपर की जो कड़ी वाली खोल होती है उसको हटा लिया जाता है, अंदर का जो पोर्शन खाया जाता है दाने के रूप में या हुरहा के रूप में तो उसी को बोया जाता है। बहुत अच्छी तरह से जान लें मित्रों कि जब तक संतुलित उर्वरकों का प्रयोग नहीं करेंगे अच्छी पैदावार आप नहीं ले पाएंगे। उर्वरकों के प्रयोग के लिए 20 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से, फास्फोरस 60 किलोग्राम, पोटास 45 किलोग्राम तत्व के रूप में दिया जाए तो अच्छा उत्पादन मिलता है। मित्रों मिट्टी जितनी ही पोली होगी उतना ही अधिक फलियां बनेंगी, उसके लिए जिप्सम 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अवश्य प्रयोग करें। एक साथ फलियां पकें वह अट्रैक्टिव हों, अट्रैक्टिव का मतलब यह है कि बाजार में देखने पर बिक जाए, उसके लिए आपको 4 किलोग्राम बोरेक्स डालना आवश्यक होगा, उससे दाने गिरी जो है बोल्ड होंगी और अच्छा बाजार में वह बेचने पर अच्छा दाम मिलेगा, देखने में अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव फलियां दिखती हैं। फास्फेट का प्रयोग यदि सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में किया जाए तो और अच्छा उत्पादन मिलता है, क्योंकि एडिशनल उनमें सल्फर तत्व प्राप्त होता है। मित्रों इसके लिए सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें तो बहुत ही बेहतरीन साबित होता है। बुआई के समय नत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा, पोटास की पूरी मात्रा, जिप्सम की आधी मात्रा को 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर बीज के नीचे डाल दिया जाता है और ठीक 3 सप्ताह के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में नत्रजन की आधी मात्रा और बोरेक्स की और जिप्सम की पूरी मात्रा को मिला करके इसको छिड़काव कर दिया जाता है और मिट्टी में अच्छी तरह से मिला करके इसको गुड़ाई कर देते हैं। मित्रों, इस तरह से अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है, लेकिन फलियां एक साथ परिपक्व हों।

0: एक साथ पके जिससे खुदाई में आसानी हो और आप पूरे खेत को खाली कर दें। इसके लिए 16 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एक जैविक खाद आती है, उसका प्रयोग करें तो फलियां एक साथ पकती हुई नज़र आती हैं और पूरे खेत की आप एक साथ गुड़ाई करके देते हैं, फलियों को निकाल सकते हैं। बीज उपचार मित्रों बहुत आवश्यक है, इसके लिए रसायन का प्रयोग करते हैं तो 2 ग्राम थिरम और 1 ग्राम कार्बन नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। यदि जैविक प्रयोग करना है तो 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा और 1 ग्राम कार्बाक्सिन का मिला करके प्रति किलो बीज की दर से शोधित किया जाता है। बीज शोधन के लिए मित्रों 5 से 6 घंटे के बाद मूंगफली के बीज को विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से उपचारित करते हैं। यह 10 किलो बीज के लिए पर्याप्त होता है। 50 ग्राम या 100 ग्राम गुड़ को 250 ग्राम राइजोबियम कल्चर के साथ मिला करके 10 किलो बीज के लिए प्रयोग किया जाता है और इसको हाथ द्वारा अच्छी तरह से मिला करके 2-3 घंटे सुखा करके सुबह या शाम के समय जब धूप कम हो उस समय इसकी बुवाई करते हैं तो अच्छा अंकुरण प्राप्त होता है और उसमें राइजोबियम के जो कल्चर के मिलाने के बाद जो जीवाणु होते हैं उनका अच्छी तरह से विकास होता है, बढ़ते हैं। मित्रों इस तरह से पेगिंग के समय सिंचाई आवश्यक है और फली बनते समय सिंचाई बहुत ही आवश्यक है। 2 सिंचाइयाँ जिसको क्रांतिक अवस्था पर सिंचाई कहते हैं, इसको देने से अच्छा लाभ प्राप्त होता है। मित्रों अगर इस तरह से आप मूंगफली की खेती करते हैं तो कम लागत में अच्छा उत्पादन प्राप्त करेंगे। इसी के साथ आप सभी भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।
1: हाँ भैया, मूंगफली की खेती ये विषय पर डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह से भैया जानकारी मिला।
2: और भैया देखा, हम चाहते कि अब लगले आते पंच भाई लोग गीत सुने।
1: हाँ,
2: अंजनी कुमार के स्वर में।

0: हाँ भैया, बड़ा बढ़िया गीत सुनने के मिलल। और भैया वो देखा, इस समय जमाना बदला था और रासायनिक खाद के जगह ही कंपोस्ट के खाद और तरह तरह के भैया खाद आवता। रही में को नाम होला
1: अब
0: भैया,
1: भैया
0: वर्मी
1: अपनावे
0: कंपोस्ट
1: भी चाहिए, या ना
0: अपना।
1: कि
0: हाँ,
1: रासायनिक खाद से जमीन के उर्वरा शक्ति भैया कमजोर हो रहा है।
0: कमजोर हो भैया। और सबसे बड़का चीज़ बा, अपने देश में आत्मनिर्भरता के जो नारा लगल बा भैया, ये पर भी मैं सहयोग हो पंच भाई लोगन
1: अब
0: के।
1: देखा, अब जो अपन जो खाद बने ले, यूरिया खाद, ये कुल बाहरे से सामान वाला तो भैया बना
0: हाँ,
1: ला
0: तो ये पर देश के
1: है।
0: भैया आर्थिक बोझ होता। पंच भाई लोगों से दिल से अपील बा कि ये तरह चीज के अपनाओ, जेके जानकारी नहीं बा भैया, तो बर्मी कंपोस्ट कैसे बनाए ये विषय पे डॉक्टर रणधीर नायक और भैया कृष्ण के भेंटवार्ता सुनल जाए।
2: आज अपने कार्यक्रम में आए हुए डॉक्टर रणधीर नायक, आप मृदा वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र आजमगढ़ में। डॉक्टर साहब, आपके हमारे कार्यक्रम में स्वागत बा। डॉक्टर
0: धन्यवाद।
2: साहब, आज के समय हर जगह चर्चा हो रहल बा कि माटी में ऐसा खाद डालल जाए जौने से माटी के उर्वरा शक्ति बढ़े। जब खाद के बात कर जाला तो ये समय बर्मी कंपोस्ट का नाम सबसे पहले आवला। हम आपसे सबसे पहले यह जानल चाहब कि बर्मी कंपोस्ट हवे का।
3: किसान भाइयों, केचुआ किसान का एक अच्छा मित्र है। केचुआ व वन्य कार्बनिक पदार्थ जैसे घरेलू कचरा, शहरी कचरा, कृषि अवशेष, खरपतवार, पशुओं का गोबर छिलके जो सड़ गल सकें आदि के मिश्रण के पश्चात केचुओं से विसर्जित पदार्थ को बर्मी कंपोस्ट कहते हैं। बर्मी कंपोस्ट फसलों, सब्जियों, पौधों व वृक्षों की बढ़वार और रोगों से रक्षा के लिए पूर्ण रूप से प्राकृतिक एवं संतुलित खाद है। केचुओं के पालन को बर्मी कल्चर कहते हैं। बर्मी कंपोस्ट में नत्रजन, फास्फोरस, पोटाश के अतिरिक्त पौधों के वृद्धि एवं विकास में सहायक अनेक लाभदायक सूक्ष्म तत्व एवं जीवाणु, हार्मोन, ऑक्सिन एवं साइटोकाइनिन और अनेक एंजाइम भी पाए जाते हैं। इसमें ह्यूमिक एसिड भी होता है जो भूमि की लवणता को कम करता है।
2: जी
3: बर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए सतही केचुए जो मृदा कम कार्बनिक पदार्थ अधिक खाते हैं

0: प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें इपिगीज के नाम से भी जाना जाता है। आसेनिया फोर्टिडा एवं यूड्रिलस यूजेनी प्रजाति के केचुओं का प्रयोग कृषि अवशेष एवं गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाने में अधिकतर किया जाता है। इसका वजन 0.3 से 0.9 ग्राम एवं लंबाई 3 इंच होता है। इन्हें रेड वर्म भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्रजातियां भी हैं जो वर्मी कंपोस्ट में प्रयोग की जाती हैं, परंतु ये लाल केचुओं से कम प्रभावी हैं।
1: वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कैल काहे का जरूरी है, एकर का जरूरत है?
0: किसान भाइयों, यह गोबर खाद की तुलना से 1.25 गुना अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। अनेक लाभदायक सूक्ष्म पोषक तत्व एवं जीवाणु हार्मोन और एंजाइम पाए जाते हैं जो पौधों के संपूर्ण विकास में सहायक हैं। इसमें पाया जाने वाला ह्यूमिक एसिड भूमि के पीएच मान को संतुलित रखता है। वनस्पतिक पदार्थों को 40 से 45 दिन में ही खाद में बदल देता है। इसके प्रयोग से मिट्टी में वास करने वाले केचुए भी सक्रिय होते हैं। मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणवत्ता में सुधार आता है। बंजर भूमि सुधार, मछली पालन और नर्सरी में भी वर्मी कंपोस्ट उपयुक्त है। इस प्रकार से तैयार खाद में दीमक का प्रकोप नहीं होता है। इसके प्रयोग से मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता में वृद्धि होती है। इसमें पोषक तत्व घुलनशील अवस्था में उपस्थित होते हैं। इसमें लिग्निन एवं लिग्नाइन नामक तत्व भी होते हैं जो पौधों की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाकर फसल का उत्पादन बढ़ाते हैं। मृदा संरचना तथा वायु संचार में सुधार हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध हो सकता है। जलकुंभी की समस्या का यह अस्थाई निदान है। इसके प्रयोग से नाइट्रोजन तत्व की भूमि में लीचिंग नहीं होती है और प्रयुक्त रासायनिक खाद के नत्रजन की भी लीचिंग नहीं होती है।
1: अच्छा, ये वर्मी कंपोस्ट बनावल कैसे जाए?
0: हाँ, देखें किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि की जानकारी से पहले हम बताना चाहेंगे कि इसमें जो पोषण क्षमता होती है, इसमें वर्मी कंपोस्ट में जीवांश कार्बन जो मृदा उर्वरता के लिए विशेष आवश्यक है, यह 20 से 25% पाया जाता है। नत्रजन 1.2 से 2.5%, फास्फोरस 1.8 से 2% एवं पोटास 0.5 से 1.2% के साथ साथ इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक और कॉपर भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे मृदा उर्वरता के लिए और फसल उत्पादन के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये देखें कि वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि में इसके लिए खाद बनाने का कार्य गड्ढे, लकड़ी की पेटी, प्लास्टिक क्रेट या किसी प्रकार के कंटेनर में किया जा सकता है। गड्ढे या पेटी की गहराई 1 मीटर से कम रखें। लकड़ी या प्लास्टिक की पेटी में नीचे 8 से 10 छेद जल निकास हेतु बनाएं। इसके अलावा यदि परमानेंट आप संरचना बनाना चाहते हैं, इसके लिए 10 मीटर लंबा, 2.5 मीटर चौड़ा और 1.5 से 2 फीट गहरा गड्ढा ऊंचाई तथा छायादार जगह पर बना लें। किसान भाइयों, जो संरचना बनाने का आकार है वो हम बताना चाहेंगे कि उसका आकार 10 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा तथा 1.5 से 2 फीट गहरा गड्ढा ऊंचाई तथा छायादार जगह पर बना लें। सबसे निचली सतह पर 3 से 3.5 सेंटीमीटर मोटी ईंट या पत्थर की गिट्टी बिछाएं। गिट्टी की परत के ऊपर 3 से 3.5 सेंटीमीटर मोरंग या बालू बिछाएं। गिट्टी के परत के ऊपर 15 सेंटीमीटर अच्छी दोमट मिट्टी की परत बनाएं। इस मिट्टी को पानी छिड़क करके नम कर लें। इसके बाद 1 किलोग्राम केचुआ बराबर की संख्या में डाल दें। नम मिट्टी के ऊपर गोबर का ढेर बनाकर रख दें। गोबर के ऊपर 5 से 10 सेंटीमीटर पुआल सूखी पत्तियां डाल दें। इस इकाई में बराबर 20 से 25 दिन तक पानी का छिड़काव करें। 26वें दिन से प्रति सप्ताह 2 बार लगभग 10 सेंटीमीटर कचरे की तह बनाएं तथा गोबर का ढेर बनाकर रख दें। यह प्रक्रिया दोहराते रहें जब तक कि गड्ढा भर न जाए। इसे हफ्ते में 1 बार पलटते रहें, जिसमें रोज पानी का छिड़काव करें तथा जब गड्ढा भर जाए तो कचरा डालना बंद कर दें। 40 से 45 दिन बाद जब वर्मी कंपोस्ट बन जाए तो 2 से 3 दिन तक पानी का छिड़काव बंद कर दें। उसके बाद खाद निकाल कर छाया में ढेर लगा दें और हल्का सूखने के बाद 2 मिलीमीटर छन्ने से छान लें। इस तैयार खाद में 20-25% नमी होनी चाहिए। छनी हुई खाद को प्लास्टिक के थैले में आवश्यकता अनुसार भर लें।
1: डॉक्टर साहब।

0: ये बताइए जो आप केचुआ बतौली हैं, बर्मी कंपोस्ट बनौला बदे, केचुआ अपन पंच भाई लोगन के कहाँ से मिली?
1: इसके लिए देखें कि जो आपके जनपद में ये स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ से
0: जी
1: आप इसको जो है प्राप्त कर सकते हैं, और अपने अपने जिले में जो है एनजीओ भी तरह तरह के कार्यरत हैं, वहाँ भी इसकी जो है विशेष व्यवस्था है। आसपास के जो संबंधित कृषि विश्वविद्यालय हों वहाँ से भी इसको लिया जा सकता है, और जो उद्यान संबंधित नर्सरी होती है कृषि विभाग जो आपके जिले का होता है वहाँ से भी आपूर्ति इसकी सुनिश्चित की जाती है।
0: बर्मी कंपोस्ट बनला के बाद जो गड्ढा बा उसे निकाले के बाद तो निकलना में भी कुछ सावधानी बरते के पड़ी?
1: खाद निकालने के 2-3 दिन पूर्व पानी का छिड़काव बंद कर दें,
0: जी
1: इससे केंचुए गड्ढे की तली में चले जाएंगे। ऊपर से खाद को 1-2 दिन बाद हाथ से अलग कर लें या मोरन चालने वाले छलने से छान लें तथा फर्श में नीचे पड़े केंचुओं को पुनः गड्ढे में डाल दें। खाद को निकालकर फर्श या पॉलिथीन पर ढेर बना दें। छनी खाद को प्लास्टिक के थैलों में भरकर रखें।
0: अच्छा, खाद बनला के बाद निकाल लिया गया गड्ढा से, एक उपयोग कैसे कर जाए? जैसे और कुल खाद डाला जाला वही तरह से एक उपयोग कर जाए या कोनो दूसरा तरीका बा?
1: किसान भाई देखें, इसके प्रयोग विधि और मात्रा के बारे में हम जानकारी देना चाहेंगे। बर्मी कंपोस्ट को फसलों की बुआई या रुपाई से पूर्व और खड़ी फसल में डाल सकते हैं।
0: जी,
1: खाद्यान्न फसलों में 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। 2.5 से 3 टन प्रति हेक्टेयर खेती के तैयारी के वक्त प्रयोग करें तथा 1 से 1.5 टन प्रति हेक्टेयर फसल की दूधिया अवस्था पर प्रयोग करें। फलदार वृक्षों में 1 से 10 किलोग्राम आवश्यकता अनुसार थाले में प्रयोग करें। गमलों में 100 ग्राम प्रति गमले की दर से प्रयोग करें। सब्जी फसलों में 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। केचुआ खाद में और रासायनिक खाद की क्या तुलना है, क्या फर्क पड़ता है, इसके बारे में आप देखें कि केचुआ खाद यह अत्यधिक सस्ता होता है, मृदा की उर्वरता शक्ति को बढ़ाता है, जल जमीन व हवा को स्वच्छ करता है, पानी की आवश्यकता कम होती है, कीटनाशकों के प्रयोग में कमी आती है, फसलों फलों व सब्जियों के स्वाद में बढ़ोतरी होती है, सभी तत्व तथा सूक्ष्म तत्व मौजूद हैं, इसलिए भूमि का संतुलित भोजन है। किसान अपने खेत पर स्वयं पैदा कर सकता है तथा यह हमारे ग्रामीण बेरोजगार भाइयों के लिए रोजगार परक व्यवसाय है।
0: एक चीज हम आपसे और जानना चाहब कि ये जो बर्मी कंपोस्ट बा एकरे उपयोग में का सावधानी बरतल जाए?
1: सावधानी के तहत ये है कि जब भी बर्मी कंपोस्ट बनाए आप तो ताजा गोबर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके सड़ने से ऊर्जा निकलती है और गर्मी से केचुए मर जाते हैं।
0: जी,
1: बेड में नमी छाया 8 से 30 डिग्री तक तापमान तथा हवा का प्रवाह बनाए रखें। केचुओं की मेढक सांप चिड़िया कौवा छिपकली एवं लाल चींटी आदि शत्रुओं से रक्षा करें। कूड़ा कचरा भी गीला एवं ठंडा कर केचुओं के भोजन के रूप में प्रयोग करें। बेड की गुड़ाई या पलटाई प्रत्येक सप्ताह करें, जिससे पोलापन बना रहे तथा केचुओं को हवा मिले। गड्ढे की भराई धीरे धीरे करें, नहीं तो तापमान बढ़ने से केचुओं को हानि होती है। गड्ढा छायादार तथा ऊंचाई स्थान पर बनाते हैं।
2: हाँ भैया, देखा कितना निम्नी जानकारी मिलल, और यही इसके साथ ही अपने बैठकी का जून समाप्त हो चल जा।
3: हाँ,
2: पंचो जय जवान जय किसान।

0: किसान भाइयों का कार्यक्रम खेतीबाड़ी अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives

0: www.radiomaya.co.in.
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 220-24075 या 228-6016 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details, log on to www.ddindia.com।
5: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
6: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
5: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
6: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लोकगीतों का कार्यक्रम अब से कुछ ही पलों में।
1: बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
5: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
6: देश के कोने कोने तक पहुँचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
7: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
8: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
7: ये हुई बात direct to home की और direct to heart?
8: ये सारे चैनल्स होंगे free to air, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
7: ये हुई बात direct to heart की।
8: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
7: For details, log on to www.ddindia.com।
9: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
10: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
9: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और

सफलता का साक्षी है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
2: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: लोकगीतों के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं आरती सिंह व सा।

0: लोक गीतों के कार्यक्रम में आज के कलाकार थी आरती सिंह। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है, प्रस्तुत है देशभर। देशभर कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भोजपुरी वार्ता, जनजीवन में लोक कथा। वार्ताकार हैं अनिरुद्ध मौर्य।
1: आदि काल से ही जिज्ञासु रहल हो। इस जिज्ञासा के निदान खातिर आदमी तरह तरह के चिंतन अकल्पना शक्ति से अपन प्रयास कैले बा। जनजीवन में समाइल लोक कथा के इतिहास उतनी ही पुरान हो जितना कि मानव जाति। इ लोक कथा पर चर्चा होखे से पहले लोक शब्द के जानल जरूरी बा। वैसे त लोक शब्द पर विद्वानन के कोनो निश्चित राय नहीं खे, बाकी लोक शब्द अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय साहित्य में प्रयोग होत रहल हो। सब मिला के अगर देखल जाओ त लोक शब्द के मूल अर्थ है देखे वाला। तात्पर्य ई कि लोक शब्द के अभिप्राय उस संपूर्ण जन समुदाय असामाजिक जीवन से बा जे कौनो क्षेत्र विशेष में निवास कर रहल बा। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार बतावल गइल बा कि वह समाज अवर्ग जे अभिजात्य संस्कार पांडित्य चेतना अयहंकार से शून्य बा, अयोगो परंपरा के प्रवाह में जीवित बा, उहे लोक बा। एही से लोक जगत में लिखित साहित्य लोक साहित्य कहल जाला। ई लोक साहित्य में लोक गीत, लोक कथा आ लोक नाटकन के वर्णन देखे पढ़े आ सुने के मिलेला। ई लोक साहित्य के अविरल परंपरा पहले श्रुति परंपरा में बाद में लिखित रूप में रचाइल हो। सामान्य रूप से साहित्य के दो भाग में बाँटल गइल हो, एगो शिष्ट साहित्य आ दूसर लोक साहित्य। शिष्ट साहित्य लिखित साहित्य के कहल गइल जे व्याकरण के नियम से बदल होखे, जे परिष्कृत होखे, जबकि लोक साहित्य सामान्य जन जीवन के साहित्य हो। ओकर अधिकांश भाग मौखिक रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी लोकमानस में

विद्वान अ जीवित बा। लोक साहित्य कोनो व्यक्ति विशेष के ना बल्कि संपूर्ण समाज के अनुभूति स्वरूप होले। लोक कथा लोक साहित्य के गो अति महत्वपूर्ण अमनोरंजक विधा बा। इ कथा के खीसा, कहानी, गाथा, बतकही आदि नाम से भी जानल जाला। इ लोक कथन मा मानव जीवन के विकास के क्रम में ओकर सुख दुख, रहन सहन, खान पान, धर्म, आस्था, विश्वास, बोली बानी, तीज त्योहार के जीवंत वर्णन देखे के मिलेला। इ लोक चित्रण के कथा एगो दस्तावेज के रूप में, एगो थाती के रूप में जनमानस का पटल पर सुरक्षित रहेला। एकर विविधता के चलते एके तमाम रूप में बांट के देखल जा सकेला। सबसे पहले बाई लोक कथा के धार्मिक स्वरूप। दरअसल भारत एगो संस्कृति से भरल पुरल आ उत्सव धर्मी देश बा। यही से एहिजा हर मौसम, समय, ऋतु आ महीना के अनुसार लोक कथा भल्लोक गीत के वर्णन बा, जौना में तमाम देवी देवतन के कथा चर्चित बा। जैसे सत्यनारायण कथा, बट सावित्री कथा, बहुला चौथ कथा, हलषष्ठी, हरतालिका व्रत कथा, अहोई माता के कथा, दिया दियारी में माता लक्ष्मी, समुद्र मंथन, गोवर्धन पूजा के कथा, अचिरैया गौर के कथा प्राचीन काल से लोक मानस में रचल बसल बा। यही तरह तिलगंजी वाली सकट माता के कथा, सूर्यदेव अछठ पूजा के कथा, संगे होलिका अ प्रहलाद के कथा बचपने से सुनत आ रहल बानी। दूसरका प्रकार के लोक कथा बा लोक मनोरंजन खातिर लिखाइल कथा, जौना के क्षेत्र अति व्यापकता ले बा। यही में राजा रानी, परीलोक के कथा, सौतेली महतारी के कथा, तिलिस्म अ जादूगरी के कथा, हातिम ताई के किस्सा, विक्रम बेताल के कथा, भाग्य प्रारब्ध के कथा, नाई पंडित के नोक झोक आ हास्य कथा से भरल बाटे। बचपन में ता घर में दादा दादी, ननियोरे माँ, नाना नानी, अमाई से तमाम कथा कहानी सुने के मिलल। बाकी बड़का पिताजी के सुनावल हास्य कथा माँ ता हंसत हंसत पेट दुखे लागे, भाई आँखी से पानी आ जात रहे। एकरा बदले दक्षिणा में हमरा उनकर पैर दबावत दबावे के पड़त रहे। इ लोक कथा के तीसरका प्रकार हो शिक्षा या नीति परक कथा, जौना माध्यम से समाज के एगो सीख दियात रहे। इ कहानिन के वर्ण विषय आदर्श चरित्र चित्रण, ईमानदारी, अन्याय परक होकत रहे, जौना में लकड़हारा की ईमानदारी, लालची कुकुर के, कछुआ अ खरगोश, बंदर अ मगरमच्छ के मित्रता जैसन कहानिन से बहुत प्रेरणा मिलत रहे। यह कहानिन के उद्देश्य ही रहे जौना से लैकन में सत असत, ज्ञान अज्ञान, अच्छा बुरा के ज्ञान सिखावल जाओ। ईमानदारी, परोपकार, सहानुभूति, क्षमा, दया, करुणा जैसन संवेदना के विकास कैल जाओ। एमे देखल जाओ तो पंचतंत्र, अहितोपदेश जैसन कथा बाद में लिपिबद्ध कैल गैल। एमे भगवान बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्ति के पहले भी तमाम योनि में जन्म लिहला के आ उनकर परमारस के वर्णन मिलेला। बाकी लोक में ही पीढ़ी दर पीढ़ी बड़ बुजुर्गन के जबान पर जीवंत रूप में भेटात रहेला। एह तरह देखल जाता इ लोक चित्रण में एगो आकर्षण रहे, जौना में कथा कहे वाला आ कथा सुने वाला दोनों के समान रूप से भागीदारी रहे। कथा सुनावे वाला अगला कड़ी तबे कहसु जब सुने वाला हूँ हूँ काके हुकारी भरे। हुकारी ना भरे से सुनावे वाला के मनोबल कमजोर होके लागे। कबो कबो तो सुनावे वाला बीच बीच में यूहो कहे, का हो सुतत बाड़ा। इ कथा कहानी सुने सुनावे के क्षेत्र घर से सिवान ले, पनघट से चौका ले, दालान से दरबार तक ले फैलल रहे। सुनहु वालन के ध्यान केंद्रित हो जात रहे। उत्सुकता में आँखी में एगो जिज्ञासा पमरे लागे, मन मस्तिष्क में एगो बिंब उभरे लागे, एगो मानसिक यात्रा होखे लागत रहे। सुने वाला वर्ण विषय के अनुभूति अनुसार भाव भंगिमा में बदलत रहे, कबो आक्रोश त कबो आँखी से लोर चुए लागे। हमनी के बचपन में मामी बिसहरिया, बाला लखंदर, पूरन भगत, राजा भरथरी, गोपीचंद के खीसा, दादा दादी भा, नाना नानी से बहुत बेर सुने के पौनी।
इ कहानी सुन के कतना लोग ऐसन भाव विभोर होके कि रस साधारणीकरण के आनंद मा आसपास के परिदृश्य से कोनो मतलबे ना रहे। एगो ऐसने वाकिया याद आवता हमरा के। एक बेर घर में कुछ मेहमान आयल रहले, दुआरा पकौड़ा जरत रहे आ साझी के सबका विशेष आग्रह पर बाबा जी खिस्सा सुनावे लगले। आधा खिस्सा के यात्रा पूरा भइल तबले दादी कहनी कि भोजन हो जाओ।

0: सबके नाता ठंडा हो जाई। गांव में त बिजली ना रहे, लोग रसोई में जौना जेवे चल गई, कौड़ा के आगी बुता गई। तबले एगो करिया रंग के कुकुर आके वही राखी पर बैठ गई। जब भोजन का के लोग बाहरा आइल त जे जहां बैठल रहे वही जगह पर वही मुद्रा में आ उहे जिज्ञासा लेके बैठ गई लोग। कौड़ा का आगी पर केहू के ध्यान ना गई, कथा अपने चरम पे पहुंचल रहे। यही बीचे केहू के ठंडा बुझाइल त लकड़ी लेके आगी खोदलन त कुकुर उठ के देह झार के भागल। सब खिलखिला के हंस पड़ल, काहे से कुकुर पालतू रहे। ओहू के सब घेर के बैठल त ओहू के जैसे अच्छा लगत रहे, भा ओहो खीसा सुनत रहे। ई रहे लोक कथा के आकर्षण। परिवार के लोग एक साथ सुख दुख बांटत रहले। केहू के जीवन में आज नियन अकेला पर ना रहे। आज जबकि जीवन में अभाव कम संपन्नता अधिक बा, शिक्षा ना अशिक्षा ना शिक्षा बा, घर घर में टीवी आ हर हाथे में संचार के साधन मोबाइल बा। दुनिया या ब्रह्मांड अदृश्य ना बल्कि बुझाता की मुट्ठी में बा। तक कहीं ना कहीं इटीस मन में जरूर बा कि हमनी के उन्नति जरूर क ले बानी, बाकी बहुत कुछ पीछे छूट गई बा। आज हर क्षेत्र में क्रांति आई, बाकी मनोरंजन में बस फूहड़ अश्लील गीत संगीत अ कहानी हमरा चारों तरफ बिखरल बा। आज फेसबुक इंटरनेट इंस्टाग्राम गूगल यूट्यूब आ व्हाट्सएप पर एकर बिगड़ल रूप रील असाल्ट वीडियो के रूप में नौका पीढ़ी के हृदय में घुसल बा। लैकन आ नवहन के संस्कार आ स्मरण शक्ति में गिरावट साफ लौकत बा। कहीं ना कहीं ई अंग्रेजी शिक्षा आ पाश्चात्य संस्कृति आ शहरी जीवन शैली आ नौका शिक्षा पद्धति भी एकर जिम्मेवार बा।
1: अनिरुद्ध मौर्या से अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी वार्ता जनजीवन में लोक कथा। इसी के साथ देशभर कार्यक्रम यही समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। विभिन्न प्रांतों के लोकगीतों के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंजाबी लोक संगीत।

विभिन्न प्रांतों के लोकगीतों के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंजाबी लोकगीत। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। और अब लापता व्यक्तियों के बारे में महत्वपूर्ण सूचना। गोरखपुर जनपद के अंतर्गत थाना प्रभारी बांसगांव गोरखपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार लक्ष्मीना पुत्री रामजद, उम्र तकरीबन 21 वर्ष, लंबाई लगभग 5 फीट, इनका रंग गोरा है। ये रहने वाली हैं ग्राम शेखपुरवा, पोस्ट झुनिया, थाना बांसगांव, जनपद गोरखपुर की हैं। लक्ष्मीना पिछले

25 फरवरी 2026 से लापता हैं। यह घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। जिस किसी को भी इनके विषय में कोई जानकारी प्राप्त होती है तो इसकी सूचना थाना प्रभारी बांसगांव जनपद गोरखपुर को अवश्य दे दें। इसी क्रम में एक और सूचना

0: इनका रंग गोरा है। ये अब से 34 महीने पहले घर से बिना बताए कहीं चली गई थी।
1: और मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
5: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
6: सुगंध, क्या हो रहा है?
5: बिल हो रहा है।
4: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
7: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
9: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में विकास कार्यों की सराहना की। कहा, रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है राजधानी। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए कल से 10 जून तक आयोजित होगी भर्ती परीक्षा। पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन के बीच चलाई 2 विशेष ट्रेनें। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए है दृढ़ संकल्पित। और मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में अगले 2 दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की जताई आशंका। बुंदेलखंड में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र के मंडल 1 में आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लखनऊ निरंतर विकास की राह पर अग्रसर है। रिंग रोड के निर्माण से जहां यातायात व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, वहीं कानून व्यवस्था भी दुरुस्त हुई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है, और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कानपुर देहात के अकबरपुर में प्रबुद्ध वर्ग से संवाद किया, और केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जिला कार्यालय में संगठनात्मक बैठक कर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी संवाद किया और संगठन से मजबूती के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। श्री चौधरी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंडल स्तर तक योग शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
10: भारतीय जनता पार्टी

0: का कार्यकर्ता सदैव काम करता रहता है, 365 दिन काम करता है, चुनाव हो या चुनाव ना हो। यह सही है कि चुनाव जब आता है तो थोड़ा सा और रणनीति चेंज करनी पड़ती, और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने कार्यकर्ताओं के बल पर और जो 12 साल तक प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और जो 10 साल तक योगी जी ने काम किया है, उन दोनों कार्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश में 2017 से भी बड़ा बहुमत लेकर के हम चुनाव जीतेंगे।
1: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने वाराणसी में पत्रकार वार्ता में कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक मामले पर सख्त कार्रवाई कर रही है और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व सबको साथ में ले जाने वाला नेतृत्व है, देश के विकास का नेतृत्व है, किसान है, गरीब है, महिला है, युवा है, सबको न्याय देने वाला उनका नेतृत्व है। उनके पास मेजोरिटी है और नीट एग्जाम में जो भी मतलब गड़बड़ हुई है, नीट घोटाले में या नीट पेपर फूटी में जो भी लोग है उनको बख्शा नहीं जाएगा।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में जन संवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने ग्राम पंचायत नौहा के लखौली गांव में नल से जल योजना के तहत जलापूर्ति न होने के मामले को गंभीरता से लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए कल से 10 जून तक 75 जिलों में 1180 केंद्रों पर 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया है कि ये परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: भर्ती परीक्षा में 32,000 से अधिक पदों के लिए 30 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की भागीदारी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन के बीच 2 विशेष अनारक्षित ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। अभ्यर्थी बिना टिकट बुकिंग के आसानी से यात्रा कर सकेंगे। वहीं परिवहन निगम रियायती दरों पर परीक्षार्थियों को सेवा उपलब्ध कराएगा। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोकतंत्र में चौथे स्तंभ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केंद्र और प्रदेश सरकार इसे मजबूत बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य ने आज आगरा में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन में कहा कि देश की जनता के आशीर्वाद से 10 जून को सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त होगा।
4: 10 जून को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार हमारी चल रही है, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने का गौरव देश की जनता की आशीर्वाद से उनको प्राप्त हुआ है। मैं इसकी माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और यह देश के लिए गौरव की बात है। और अभी हम मानते हैं कि 2029 तक ही नहीं, आगे भी अभी कई चुनावों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही हम सबका नेतृत्व करेंगे और देश को विकसित बनाएंगे, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश।
1: प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने आज मऊ में मधुबन क्षेत्र स्थित इंदिरा गांधी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में एडीप और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत 2,500 से अधिक दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क ट्राई साइकिल और अन्य सहायक उपकरण का वितरण किया। देवरिया में केंद्र सरकार के सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने खनुआ नदी में बृहद स्वच्छता एवं सफाई अभियान चलाया। इस दौरान नदी से शैवाल जलकुंभी अवशेष पदार्थ को नाव जेसीबी की मदद से साफ किया गया। कृषि मंत्री ने वृक्षारोपण भी किया। अभियान में SDRF और PSC 26वीं वाहिनी के साथ

0: बड़ी संख्या में पुलिस बल ने भाग लिया। केंद्र सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम हैं।
1: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। लखनऊ में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 979.50 रुपए हो गई है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने कल से अगले दो दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की आशंका जताई है। इस दौरान बुंदेलखंड और प्रयागराज में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी जिलों में 10 जून से कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 जून से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में विकास कार्यों की सराहना की। कहा, रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है राजधानी। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए कल से 10 जून तक आयोजित होगी भर्ती परीक्षा। पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन के बीच चलाई दो विशेष ट्रेनें। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए है दृढ़ संकल्पित। और मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में अगले दो दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की जताई आशंका। बुंदेलखंड में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे एफएम पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: चाहिए
3: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
2: पिज्जा पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
5: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। फिल्म संगीत कार्यक्रम अब से कुछ ही पलों में।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: फिल्म संगीत में आज

0: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
1: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
0: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
1: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
0: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details, log on to www.ddindia.com।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
5: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
1: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
0: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
1: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।

0: फिल्म संगीत में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, जिसमें आज की फिल्म थी तुम बिन। यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम कैंपस की बातें।
1: पूर्वांचल का पहला MBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर। फॉर एडमिशन कॉन्टैक्ट 8008-990-2937।
2: नमस्कार श्रोताओं, कैंपस की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गीडा गोरखपुर स्थित KIPM कॉलेज और वहां स्थित पूर्वांचल के पहले इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में, कि कैसे यह कॉलेज यहां पढ़ रहे छात्रों के भविष्य को नई दिशाएं प्रदान कर रहा है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है KIPM स्थित इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर के CEO इंजीनियर शिवांश विक्रम जी। शिवांश जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप बताइए कि KIPM कैंपस में स्थित इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर आखिर है क्या?
3: धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगा कि KIPM पूर्वांचल और गोरखपुर स्पेशली यहाँ का पहला ऐसा कैंपस है जिसमें ये इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट हुआ है। अभी तक स्टार्ट इन UP द्वारा बनाए गए ऑलमोस्ट 76 सेंटर्स हैं, उसमें गोरखपुर का ये पहला सेंटर है जिसको स्टार्ट इन UP से रिकॉग्निशन प्राप्त है। और इस समय चाहे हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो उनका बहुत ही प्रेशर है कि बच्चों को इनोवेशन की तरफ प्रोपेल किया जाए, और उसी को आगे बढ़ाते हुए KIPM को एक सौभाग्यशाली कैंपस मानता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने उसको स्टार्ट इन UP से रिकॉग्नाइज किया और फाइनेंशियल एड भी दी।
2: मैं साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि इस इनोवेशन सेंटर में छात्रों को पढ़ाई में किस प्रकार से सहायता दी जाती है।
3: जो भी इनोवेशन सेंटर से जुड़े हुए छात्र हैं, चाहे वो हमारे इंटर्न हो या हमारे स्टार्टअप्स हो, जिसमें अगर उनका कोई लैब या लेक्चर छूट जाता है अपने स्टार्टअप को टाइम देते वक्त, तो हम लोग अलग से उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस का अरेंजमेंट करवाते हैं, उनकी अटेंडेंस का पूरा अरेंजमेंट कराते हैं कि कैसे बच्चा अपने एकेडमिक के साथ साथ अपने स्टार्टअप पे, अपने इनोवेशन पे, आइडिया पे, पेटेंट पे भी काम करे। हमारे एकेडमिक में भी जो फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट होते हैं उसमें हम लोग पेटेंट मैंडेटरी करने जा रहे हैं कि वो इस डायरेक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन करे। और जिनका स्टार्टअप का ओरिएंटेशन होता है, हमारे यहाँ अलग अलग टाइम पे अलग अलग आइडियाथॉन्स भी होते हैं, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन होती है, और जो भी बच्चे हमें क्रिएटिव और उनके आइडिया में पावर महसूस होता है कि ये स्टार्टअप अच्छा कर सकते हैं, तो हम फिर उनके लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड बाकी जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो सारी पूरी।
2: तो छात्रों की पढ़ाई में काफी सहायता की बात हो गई है। तो और हम जानना ये चाहेंगे कि ये इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर ये छात्रों को अपना व्यवसाय शुरू करने में किस तरह से सहायता करता है।
3: इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा माध्यम है जिससे आप नौकरी मांगने नहीं जाएंगे, आप लोगों को नौकरी देंगे। और जब इनोवेशन

0: इनोवेशन और स्टार्टअप के बारे में सोचता है बच्चा, तो उसके मन में कई सवाल रहते हैं कि ये कंपनी कैसे बनेगी, लीगल प्रोसीजर्स क्या है, कंपनी में बना लेता हूँ तो उसके बाद ग्रांट का क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट अलग अलग कैटेगरी में ग्रांट्स दे रही है, जैसे CMUI है, फिर स्टार्टिंग यूपी में भी अलग अलग कैटेगरी की ग्रांट्स है, जैसे मार्केटिंग असिस्टेंस है, सस्टेनेंस अलाउंस है, प्रोटोटाइप ग्रांट है, अलग अलग क्राइटेरिया है। उसके अलावा प्रोटोटाइप, अगर कोई स्टार्टअप प्रोटोटाइप पे काम कर रहा है, कोई ऐसा नोवेल प्रोटोटाइप बना रहा है जिसका फीजिबिलिटी है, मार्केट में एप्लीकेशन है, अभी के लिए वो 5 लाख है, बट आई गेस वो बढ़ के 9 लाख के आसपास, नेक्स्ट पॉलिसी अमेंड हो रही है स्टार्टिंग यूपी की, तो नेक्स्ट अमेंडमेंट के बाद वो ऑलमोस्ट 9 लाख के अराउंड हो जाएगा। उसी के साथ साथ मार्केटिंग असिस्टेंस है, सीड फंड है, तो अलग अलग एजेंसीज गवर्नमेंट और प्राइवेट प्रोवाइड कर रही है स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल एड्स, ताकि वो अगर उनके पास आइडिया अच्छा है या फिर उनके स्टार्टअप में प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, तो फाइनेंशियल जो उनका बर्डन है उसको कम किया जाए, ताकि स्टार्टअप जल्दी से जल्दी स्केल करके मार्केट रेडी हो जाए। तो वही सेम कॉन्सेप्ट स्टूडेंट स्टार्टअप के साथ भी हम लोगों का है, तो ये सारी चीजें करके हम उनके स्टार्टअप को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि उनको पैसे के बारे में ना सोचना रहे, वो अपना सारा ध्यान सिर्फ अपने आइडिया और अपने स्टार्टअप पे लगा सके।
1: यानी कि इस तकनीकी युग में इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है, और आपका KIPM कॉलेज इस सुविधाओं से युक्त पूर्वांचल का पहला कॉलेज बना है। तो छात्रों, आप भी इस तकनीकी युग में पढ़ाई के साथ साथ नौकरी ही नहीं बल्कि रोजगार प्रदान करने वाला एंटरप्रेन्योर बनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो गीडा स्थित KIPM टेक्निकल कैंपस आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है।
2: KIPM गीडा गोरखपुर स्थित पूर्वांचल का पहला इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर, जहां प्रतिभाओं की तकनीकी दक्षता को बढ़ाकर मूर्त रूप दिया जाता है। KIPM इनोवेटर फाउंडेशन में छात्रों द्वारा बनाए गए इनोवेशंस की सराहना करते हुए उन्हें राज्यपाल महोदया व तकनीकी शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आशीष पटेल द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। इसी कड़ी में 2 कदम और आगे चलते हुए TCS द्वारा आयोजित प्रदेश स्तर पर हुए AI हैकथॉन में KIPM के छात्र आकाश यादव को पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उन्हें पुरस्कृत और सम्मानित भी किया गया। एडमिशन ओपन, कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम कैंपस की बातें। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। हिंदी कार्यक्रम में आइए सुनते हैं काव्य पाठ। कवि हैं प्रेमनाथ मिश्रा।
4: आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूं कुछ छंद और कुछ गीत के साथ। सबसे पहले 2 छंद सुनते हैं। देश में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित मेरे 2 छंद हैं। सुनते हैं इसको। कि शत्रुओं की राह तो बबूल से ही पाटते हैं, दोस्तों के लिए ही गुलाब होना चाहिए। शत्रुओं की राह तो बबूल से ही पाटते हैं, दोस्तों के लिए ही गुलाब होना चाहिए। उसने हिसाब कर हमला किया था, किंतु बदला हमारा बेहिसाब होना चाहिए।

एक एक मौत का हिसाब होना चाहिए कि बदले की जंग को अधूरा नहीं छोड़ते हैं, बदला हमेशा भरपूर होना चाहिए। बदले की जंग को अधूरा नहीं छोड़ते हैं, बदला हमेशा भरपूर होना चाहिए। शत्रु को है भ्रम यदि सेना के पराक्रम पे, उसका हर एक भ्रम दूर होना चाहिए।

मिन्नते हमारी बस, पापी का घमंड चूर चूर होना चाहिए, पापी का घमंड चूर चूर होना चाहिए। एक गीत दोस्तों स्वप्न सुंदरी को समर्पित गीत है, आप लोगों के बीच प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा। किस

0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। सुगम संगीत कार्यक्रम अब से कुछ ही पलों में।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
5: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
7: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
6: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

is done. प्रेमनाथ मिश्रा से अभी आप सुन रहे थे ये काव्य पाठ। इसी के साथ हिंदी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

0: संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
2: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

सुगम संगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार थे अभिजीत सावंत। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलानबटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला, बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता

0: यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुँचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गाँव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे

0: वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
0: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया च्वालिन्स्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में

रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है। आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में अप्रैल माह से प्रारंभ 3 कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खिला। आलेख आनंद श्रीवास्तव का है, प्रस्तुत करता है नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खिला।

0: दौर की बात है जब भारत के घरों में लिविंग रूम नहीं हुआ करते थे और टीवी की चमचमाती स्क्रीन तो कल्पना से भी परे थी। लेकिन तब भी देश के सुदूर कोने में बैठा एक किसान, सीमा पर तैनात एक सैनिक और गली में दौड़ता एक बच्चा, सब एक साथ एक ही पल में एक ही धड़कन से जुड़े थे।
1: जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास आकाशवाणी थी। स्वतंत्रता के सपनों से लेकर नए भारत की उपलब्धियों तक आकाशवाणी ने हर महत्वपूर्ण पल को देश तक पहुंचाया है।
2: Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
0: दौर बदला, तकनीक बदली और बदल गया सूचनाओं का संसार। लेकिन इस बदलते हिंदुस्तान में जो नहीं बदला वो है देश की एक बुनियादी धड़कन, एक ऐसी आवाज जिसने सुबह की पहली चाय से लेकर रात के सन्नाटे तक हर भारतीय के घर में दस्तक दी।
3: ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए।
1: क्या आपने कभी सोचा है कि देश दुनिया के कोने कोने से आप तक पहुंचने वाले इन सटीक समाचारों के पीछे कितनी बड़ी तपस्या होती है? आकाशवाणी समाचार की रीढ़ हैं इसके दो सबसे बड़े पावर हाउस, GNR यानी जनरल न्यूज रूम और HNR यानी हिंदी न्यूज रूम।
0: सुबह का समाचार प्रभात हो, दोपहर समाचार हो या फिर दिन भर की खबरों को समेटे समाचार संध्या, इन तीन मेजर हिंदी और तीन मेजर अंग्रेजी बुलेटिन्स को तैयार करने के लिए 2400 घंटे डेस्क पर शब्दों को तराशा जाता है, तथ्यों को परखा जाता है, क्योंकि यहाँ रफ्तार से ज्यादा जिम्मेदारी मायने रखती है। आकाशवाणी समाचार के वरिष्ठ सलाहकार उमेश चतुर्वेदी,
4: आकाशवाणी चूंकि सार्वजनिक प्रसारक है तो किसी निजी मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया आउटलेट्स या मीडिया संस्थान की तुलना में इसकी भूमिका कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी है। इसलिए यहाँ इस बात पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है कि जो भी हम सूचना दें वो सही हो और सटीक हो, उसकी तथ्यात्मकता पर, उसकी प्रमाणिकता पर कोई सवाल न उठे। तो इसलिए जब तक कोई न्यूज, कोई भी समाचार

0: विश्वस्त सूत्रों से सही न साबित हो जाए या न मान लिया जाए कि ये बिल्कुल सही सूचना है, सही जानकारी है, सही समाचार है, तो उसे प्रसारित करने के लिए सिस्टम में नहीं डाला जाता। जैसे मैं हाल ही में अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई उसका उदाहरण देते हुए कहूंगा, मैं उस समय हिंदी न्यूज रूम में खुद था, तो उस समाचार को देने में हमने देर नहीं लगाई, लेकिन उस तेजी में भी हमने इस बात का ध्यान रखा कि हम जिस सूचना को देने जा रहे हैं अपने जो देश के, बल्कि अब तो इंटरनेट के मार्फत पूरी दुनिया में हमारे श्रोता हैं, एक भी गलत सूचना न जाए। 24 घंटे यहाँ डेस्क काम करता रहता है, रिपोर्टर भी काम करते रहते हैं जो हमारे देश भर में संवाददाता फैले हुए हैं, और वो संवाददाता भी इस बात को ध्यान में रखते हैं कि किसी भी कीमत पर गलत या भ्रामक समाचार या सूचना किसी भी समाचार केंद्र पर न पहुंच पाए। और एक चीज और है कि सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अब भारत का सार्वजनिक प्रसारक होने के नाते आकाशवाणी ने एक व्यवस्था कर रखी है, बहुत सारे शब्दों को इसने डीबार मतलब उनसे परहेज किया है। एक शब्दों के लिए शब्दावली अलग से तैयार की गई है आकाशवाणी के लिए, और चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे देसी भाषाओं के प्रसारण के लिए जो शब्दावली है या बोलियों के लिए, सबके लिए डूज और डोंट मतलब क्या करें और क्या ना करें, किसकी बाकायदा शब्दावली तैयार करके रखी गई है, सूची बना करके रखी गई है, और न्यूज में कुछ खास तरह से इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए कई बार जो बाहरी व्यक्ति जो सामान्य पत्रकार हो अगर आकाशवाणी के अंग्रेजी या हिंदी न्यूज रूम में आ जाए या किसी और भाषा के न्यूज रूम में आ जाए, समाचार कक्ष में आ जाए, तो उसको देख कर ताज्जुब भी होगा कि कई बार कुछ शब्दों पर बहस होती है, हो सकता है कि उसमें कुछ देर हो जाए प्रसारण में, लेकिन गलत शब्द गलत तथ्य न जा सके इसका पूरा ख्याल रखा जाता है।
1: आज टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के कई दिग्गज एंकर्स के अनुभव का खजाना इसी आकाशवाणी के स्टूडियोज में गढ़ा गया है। इन्हीं में से एक बेहद सम्मानित नाम है अंग्रेजी के मशहूर एंकर और न्यूज रीडर सुनीत टंडन। आइए सुनते हैं उनकी सफर की कुछ अनसुनी यादें।
2: समाचारों की बात करें तो उस समय समाचार कक्ष में कई बड़े नाम मौजूद थे। इनमें सुरजीत सेन, बोरुल हालदार, मनिका रत्नम और पामेला सिंह काफी बड़े नाम थे। ये उस समय के सबसे बड़े न्यूज रीडर हुआ करते थे, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत अच्छे इंसान भी थे और दूसरों को बहुत प्रेरित किया करते थे। मैंने 1978-79 में समाचार कक्ष में समाचार पढ़ने की शुरुआत की। उस समय बोरुल हालदार हुआ करते थे, एक और न्यूज रीडर हुआ करते थे सुशील, जो काफी लोकप्रिय थे। वो अपनी स्क्रिप्ट में पंक्चुएशन की मार्किंग नहीं किया करते थे, और जब लाइव पढ़ते थे तो जो लाइन पढ़ रहे हैं उसके नीचे की तीसरी लाइन में आकर वो मार्किंग किया करते थे। एक अनूठी शैली थी उनके पास। हिंदी समाचार कक्ष की बात करें तो महान देवकीनंदन पांडे जी हुआ करते थे, एक और सज्जन हुआ करते थे जो सफेद कुर्ते पजामे में आया करते थे, मिस्टर भादुड़ी। वो बहुत अच्छे उद्घोषक थे उस जमाने में।
3: Fabulous gentleman was always dressed in his crisp white kurtas. So wonderful people and great memories of that time.
1: वक्त के साथ आकाशवाणी समाचार ने सिर्फ बुलेटिन ही नहीं बदले बल्कि जनसंचार के स्वरूप को नया आयाम भी दिया। शुरुआत हुई न्यूज मैगजीन कार्यक्रमों की, सुबह की ताजगी के साथ आज सवेरे और शाम के ढलते सूरज के साथ परिक्रमा।
4: इन कार्यक्रमों ने देश के सुदूर इलाकों में बैठे क्षेत्रीय संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट्स और संक्षिप्त रेडियो इंटरव्यूज के जरिए सीधे जनता की आवाज को स्टूडियो तक पहुंचाया। चाहे आम बजट हो या रेलवे बजट की पल पल की बारीकियां, लाइव डिस्कशन प्रोग्राम्स हो या फिर देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव यानी लोकसभा और विधानसभा चुनावों की मतगणना।
1: जब टीवी स्क्रीन्स नहीं थी तब देश का कोना कोना आकाशवाणी के साथ बैठकर चुनावी नतीजों के लाइव रुझान सुनता था। भरोसा ऐसा कि कोई उंगली नहीं उठा सकता था। इन कार्यक्रमों को शुरुआती दौर से अपनी आवाज से सजाने वाली और लंबे समय तक इनका संचालन करने वाली चंद्रिका जोशी इन ऐतिहासिक लाइव कवरेज के साथ उन रोमांचक क्षणों को याद करते हुए कहती हैं,
5: सबसे पहली चुनाव चर्चा रेडियो पर 1996 में हुई। बिल्कुल नया फॉर्मेट था, नया अंदाज लोगों की और हमारे

0: अधिकारियों की अपेक्षाएं थी तो डर तो बहुत लगता था, घबराहट भी होती थी, लेकिन हाँ उस समय ईवीएम नहीं होती थी तो देश भर से चुनाव परिणाम मिलने में करीब 2-2.5 दिन का समय तो लगता ही था और बड़ा उत्सव का सा माहौल रहता था ऑफिस में। बजट की चर्चा भी उसी दौर में शुरू हुई, तब आम बजट और रेल बजट अलग अलग आते थे। एक दो बार तो मुझे अच्छी तरह याद है कि बजट के तुरंत बाद रेल मंत्री और वित्त मंत्री जी से पहला इंटरव्यू हमने लिया था आकाशवाणी ने। बजट के बाद रात को रेडियो ब्रिज कार्यक्रम में सभी सेक्रेटरीज और पत्रकारों के साथ चर्चा के वो पल कभी नहीं भूलने वाली यादें हैं। रेडियो की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, समाचारों का भरोसा, हमारी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए श्रोताओं की मांग पर ये सब बदलाव हो रहे थे और आकाशवाणी ने हमें नया करने के लिए बहुत मौके भी दिए। तो हम नौकरी में आने के बाद भी बहुत पढ़ते थे क्योंकि श्रोताओं का विश्वास जीतने के लिए आवाज़ के साथ साथ आपके भीतर का आत्मविश्वास उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास तभी होगा जब आप हर वक्त हर समाचार से अपडेट रहेंगे, आपकी भाषा समृद्ध होगी और उच्चारण स्पष्ट होगा। तो हमने आकाशवाणी को आगे बढ़ते हुए, समृद्ध होते हुए देखा। पुरानी मशीनों और टेप में रिकॉर्डिंग और एडिटिंग, उसके बाद सीडी, फिर कंप्यूटर, ये सब दौर थे और सबका अपना अनुभव रोचक रहा। तो मैं कहूँगी कि 24 घंटे काम करने वाली इस जगह को अगर उस वक्त को समझना चाहें तो रुक कर कुछ पीछे तो देखना ही पड़ेगा। शायद 80 के दशक तक रेडियो में लोगों के सामने बहुत चुनौतियां रही होंगी। हम लोग 90 के दशक में काफी सुधार होने के बाद आए, लेकिन असल बात यह थी कि रेडियो की लोकप्रियता तब भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी हमेशा रहेगी, क्योंकि रेडियो आपको अपना काम करने देता है।
1: जब बात राष्ट्रीय गौरव की हो, 15 अगस्त और 26 जनवरी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का वो आंखों देखा हाल, तो हमारे कानों में कई बुलंद, जादुई और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें गूंजती हैं।
2: उनकी कमेंट्री महज शब्दों का बयान नहीं थी, वो साक्षात दृश्य को श्रोताओं की आंखों के सामने जिंदा कर देती थी।
3: नमस्कार, राजपथ से मैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, अपने साथी कमेंटेटर डॉक्टर ऋतु राजपूत, जैनेन्द्र कुमार सिंह और मीनू खरे के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत के इतिहास का एक अनमोल दिन।
4: हर हंसी खाब की ताबीर हंसी लगने लगी, एक नई सुबह ने धरती को संवारा। ऐसे
5: बजो
3: 2 मिनट के मौन के बाद राउस के धुन अर्थात पुनः आगे बढ़ चलने का संकल्प, अपने लक्ष्यों को हासिल करने का संकल्प।
4: दाहिनी ओर जो एक गेट बना हुआ है अर्धवृत्ताकार, उससे प्रवेश किया है प्रधानमंत्री जी ने
6: और अब योग फॉर्मेशन का प्रदर्शन यहाँ पर 6 सदस्यीय टीम कर रही है और गुलदस्ता खूबसूरत सा फूलों का, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए ये जाबाज यहाँ से सलामी मंच से आगे निकलते हुए।
1: आकाशवाणी सिर्फ जश्न का साथी नहीं है, संकट की घड़ी में ये एक अपने की भूमिका निभाता है। जन संचार में इसकी भूमिका सिर्फ सूचना देने की नहीं बल्कि एक मरहम लगाने वाले हमदर्द की भी रही है।
2: याद कीजिए बिहार की वो भयावह बाढ़ जब सब कुछ डूब चुका था, संचार के सारे साधन लगभग ठप थे, तब आकाशवाणी ने वहां एक ऐसा इंतजाम किया जिससे बाढ़ राहत, अपनों की तलाश और मदद की जानकारियां हर पीढ़ी तक पहुंचाई जा सके। इस मानवीय और रणनीतिक भूमिका पर रोशनी डाल रहे हैं आकाशवाणी के पूर्व अपर महानिदेशक आशीष भटनागर।
7: आईटी डिवीजन के अपने एक साथी वीआर हरी से हमने कहा, शायद गुरुवार या शुक्रवार था, कि हमें सोमवार को बिहार जाना है और हमें चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा आईटी प्लेटफॉर्म जिसपे कि बहुत सारे लोग एसएमएस करें, वो सारे एसएमएस आए वहां इकट्ठे हों, उसको फिल्टर हम अलग अलग ढंग से कर सकें और उसको हम फोन इन प्रोग्राम से जोड़ सकें और फोन इन प्रोग्राम के तहत हम जनता तक पहुंच सकें। एक तरीके से ये टेलीकॉम, आईटी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग तीनों की साझेदारी थी।

0: इस दौरान हम अपने डायरेक्टर जनरल महोदय जय जी जयलाल जी के पास गए और उन्होंने बहुत उत्साहित होकर कहा कि तुम जाओ, मेरा पूरा सहयोग तुम्हारे साथ है, तुम जो चाहो वो करो। हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 15 दिन वहां रहेंगे, आकाशवाणी पटना, आकाशवाणी भागलपुर और आकाशवाणी दरभंगा, इन 3 स्टेशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। उसके बाद तो पूरे स्टेशन के लोग, चाहे वो इंजीनियर हों, चाहे प्रोग्रामर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के, सब साथ आके खड़े थे। और वहां से शुरुआत हुई हमारी बात की। कैजुअल अनाउंसर्स की ताकत मैंने तब देखी, मुझे याद है मणिकांत झा नाम आज भी, हम लोग बोट्स के ऊपर, हर जगह पानी पानी था, दूर दूर जाते थे, कहीं थोड़ी सी जमीन दिखती थी वहां बहुत सारे लोग खड़े मिलते थे, और जैसे हम पास पहुंचते थे तो एकाएक वहां पे चीख चिल्लाहट, अरे मणिकांत झा आइल छ, मणिकांत बाबू आए हैं। हमको इतना गर्व हुआ अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर एक बच्चा टंगा हुआ मिला, और कितने दिन वो पेड़ पे रहा, वो उसको कुछ हौसला देके उससे बात हुई, उसकी बात की, और रेडियो पर उस फोन इन प्रोग्राम पे ब्रॉडकास्टिंग किया गया उसके बारे में, और उसके परिवार उसे मिल गया। इट वॉज एन इमोशनल अफेयर। SMS का जो प्लेटफॉर्म, उस पर तमाम सारे लोग SMS करते थे, मेरा बच्चा गुम गया है, मेरा पति गुम गया है, मेरी पत्नी नहीं है, बह गई है, उन सब SMS को लेके हम लोग फोन इन प्रोग्राम पर बात करते थे, और फिर लौट के हमारे पास SMS या फोन आ जाते थे, अरे वो हमको वहां मिल गया। बाद में भारतवर्ष में 13 महत्वपूर्ण जो काम जो किए गए, उस भारत सरकार के पब्लिकेशन में भी लाई गई, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया, इसके बारे में आर्टिकल्स लिखे गए। पर सच बताऊं तो इसका असली आनंद हम लोगों को मिला, वो फील्ड पे मिला। आकाशवाणी कितना मददगार है, जब कोई नहीं होता तो आकाशवाणी होता है।
1: नब्बे वर्षों का ये सफर गवाह है कि तकनीक के इस आधुनिक समंदर में, जहां आज सैकड़ों टीवी चैनल्स हैं, हजारों डिजिटल पोर्टल्स हैं, और हर सेकंड खबरों की रील्स और शॉर्ट्स बदल रहे हैं, उस शोरगुल के बीच भी आकाशवाणी समाचार आज भी देश का सबसे शांत, सबसे गंभीर और विश्वसनीयता के शिखर पर बैठा अव्वल संस्थान है।
2: ये आज भी केवल एक ब्रॉडकास्टर नहीं, बल्कि भारत की साख है। सोशल मीडिया के फेक न्यूज के दौर में भी देश इसी आवाज की तरफ देखता है, क्योंकि भारत जानता है कि अगर इस आवाज ने मुहर लगा दी तो वो सच है।

0: आकाशवाणी एट 90। 90 वर्षों का गौरवमयी सफर। आकाशवाणी ने सिर्फ खबरें और सूचनाएं ही नहीं दी, बल्कि उसने आजाद होते भारत के सपनों को अपनी आवाज दी। और जब बात खेलों की आई तो एक नई सोच का जन्म हुआ,
1: एक ऐसी सोच जिससे खेल के मैदान को स्टेडियम की चार दीवारी से निकालकर भारत के हर घर हर चौपाल तक पहुंचाया। बिना तस्वीरों के, सिर्फ शब्दों के जादू से करोड़ों आंखों के सामने लाइव मैच का थिएटर रच देना, ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी ने किया।
0: 60, 70 और 80 का दशक, ये वो दौर था जब भारतीय हॉकी अपने चरम पर थी। आइए इतिहास के पन्नों को एक बार फिर पलटते हैं और चलते हैं साल 1975 के क्वालालंपुर में, जहां भारत ने हॉकी विश्व कप जीतकर इतिहास रचा था। सुनिए जसदेव सिंह की उस जादुई आवाज को।
2: और ये फ्री हिट 25 गज की लाइन पर दाएं फ्लैंक में मिला पाकिस्तान के इफ्तिखार को, जिन्होंने हिट लगाया पास अख्तर रसूल को। अख्तर रसूल ने और गेंद भारत के डी में बाईं तरफ, जहां पे चौकन्ने हैं वहां पे पहुंच गया अब्बास। भारतीय डी में और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपने डी में से बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में। और ये खेल खत्म, भारत 2-1 से जीत गया। भारत विश्व हॉकी चैंपियन है। ये समाचार मैं मेलविन डिमेलो के साथ आपको क्वालालंपुर से देता हूं।

0: के मैदान से निकलकर जब ये रोमांच 22 गज की क्रिकेट पिच पर पहुंचा तो आकाशवाणी ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया। वो दौर जब अंग्रेजी का बोलबाला था, आकाशवाणी ने देश की माटी की भाषा यानी हिंदी में क्रिकेट कमेंट्री की शुरुआत करने की नई सोच दिखाई।
1: और इस विधा के भीष्म पितामह बने सुशील दोषी।
2: बहुत ही मुश्किल काम था जो FPS सिस्टम का खेल क्रिकेट, जिसको 22 यार्ड से 22 गज से जो शुरू होता है, ऐसे खेल की हिंदी में कमेंट्री करना। लोग मान रहे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता, लोग कह रहे थे कि पूरा हिंदी में करना हो तो अनुवाद करिए, स्क्वायर लेग को वर्गाकार पांव कहिए या फिर मिड विकेट को मध्य विकेट कहिए या फिर सिली मिडॉन को मूर्ख मिडॉन कहिए, इस तरह की बातें होती थी और लोग ग्रहण करना शुरू में नहीं चाहते थे। लेकिन मैं तो आकाशवाणी को बहुत ही मानता हूं कि उन्होंने खेलों को अपने प्रसारण के जरिए जिंदा रखा। दो काम किए, एक तो खेलों को गांव-गांव तक पहुंचाया, गृहिणियों तक पहुंचाया, खेत खेत में काम करने वाले जो खेतीहर किसान हैं उन तक पहुंचाया, मिल में मजदूर जो लोग काम करते हैं ना उन तक पहुंचाया, और सबसे बड़ी बात ऐसे लोगों को खेल को दिखाया अपनी आवाज के जरिए जो खेलों के बारे में जानते नहीं थे। तो खेल की शुरुआती क्रांति की शुरुआत मैं समझता हूँ आकाशवाणी के कारण हुई। और दो बातें हुई कि खेलों को तो पहुंचाया पर साथ ही एक संस्कार, भाषा का संस्कार जो दिया आकाशवाणी ने, वो एक उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। देखिए आज तरह तरह की बातें हो रही है, इतने सारे टेलीविजन पर हम देखते हैं जिस तरह की भाषा तोड़ी जा रही है, उससे बड़ा दुख भी होता है, लेकिन आकाशवाणी ने इसके साथ कभी समझौता नहीं किया। क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों के जो चाहने वाले हैं वो भी आकाशवाणी का हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और मैं तो समझता हूँ कि आकाशवाणी ने वो काम किया जो संजय ने महाभारत में जो काम किया था। रेडियो ही एकमात्र माध्यम था, मुझे याद है कि एक पान वाले की दुकान के आगे 500 लोग खड़े हो जाते थे और पूरी बातें सुनते थे। कि खेलों की जो क्रांति आकाशवाणी ने जो काम किया उसका ये देश शुक्रगुजार तो रहेगा ही, लेकिन उनका कर्तव्य भी था, उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरे ढंग से निभाया।
0: आकाशवाणी की इस कमेंट्री की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसने सिर्फ खेल को घर घर पहुंचाया ही नहीं बल्कि देश में खेल के प्रति एक ऐसी दीवानगी पैदा की जिसने नए टैलेंट को जन्म देना शुरू किया।
1: कुछ ऐसे दीवाने श्रोता भी थे जो रेडियो सुनते सुनते खुद इस विधा के उस्ताद बन गए। ऐसा ही एक नाम है कुलविंदर सिंह कंग।
3: मैं 1980 में आकाशवाणी में आया, उससे पहले मुझे याद है सन 1976 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक जो कि कनाडा में था, उसका फाइनल मुकाबला रात के तकरीबन 2:30 बजे मैंने आकाशवाणी पर सुना। उस वक्त मैं श्रीगंगानगर में था क्योंकि कनाडा में उस वक्त दिन था, भारत में रात थी, और फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था और पहली बार और एकमात्र बार न्यूजीलैंड ने उस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये जो ऐतिहासिक पल आकाशवाणी ने दिए हैं मैंने भी उसको जिया है और उसके बाद मुझे भी आकाशवाणी की तरफ से उन ऐतिहासिक पलों की कमेंट्री करने का मौका मिला जो कि आज इतिहास में दर्ज है। चाहे वो मुल्तान में वीरेंद्र सहवाग के 300 रन बने हों, पहले भारतीय बैटर बने और वो 300 रन उन्होंने मेरी कमेंट्री में ही सकलन मुश्ताक को मिड विकेट पर छक्का मारकर पूरे किए थे। मुझे याद है 13 जुलाई 2002 नटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल लॉर्ड्स के मैदान पर जहां भारत ने 326 रन बनाए थे, युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की साझेदारी के बाद भारत वो जीता था। मुझे अंग्रेजी कमेंटेटर सुरेश सरैया जी के साथ उस मैच का लॉर्ड्स के मैदान से आंखों देखा हाल सुनाने का मौका मिला था। ये वो बातें हैं, वो पल हैं जिसका कि मैं हिस्सा बना।
1: आकाशवाणी का योगदान सिर्फ लाइव मैचों तक सीमित नहीं रहा। खेल खिलाड़ी, खेल सेवा, स्पोर्ट्स कैन या 5 मिनट के खेल बुलेटिन, ये वो कार्यक्रम रहे जिन्होंने खेल जगत की हर छोटी बड़ी खबर को देश के कोने कोने तक पहुंचाया।
0: इन कार्यक्रमों में बतौर प्रेजेंटर और एक्सपर्ट जुड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा मेडल जीतने जैसा था। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के जाने माने नाम मलय नीरव अपना अनुभव कुछ यूं साझा करते हैं।
4: अगर मैं याद करूं कुछ चीजें, तो जिस आकाशवाणी को सुनते हम बड़े हुए थे, जिन जो बड़े नाम हमारे सामने थे, जसदेव सिंह, रवि चतुर्वेदी, मनीष देव, सुशील दोषी, सुरजीत सेन, सुरेश सुरैया, ये वो लोग

0: जिनसे मुझे मिलने की बचपन से ही बड़ी तमन्ना थी, और बाद में मुझे कहते हुए बहुत हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है कि जसदेव सिंह के साथ जैसे कि मैंने कार्यक्रम पेश किया, रवि चतुर्वेदी के साथ मैंने एक्सपर्ट टॉमेंट्स में कई बार हिस्सा लिया। तो मैं अगर आकाशवाणी की यात्रा, खेल यात्रा पर नजर डालूं, तो 1964 में पहली बार जब हॉकी ओलंपिक्स में हॉकी की कमेंट्री हुई जिसमें डिमेलो और जसदेव सिंह थे, उसके बाद क्रिकेट कमेंट्री आई और फिर नरोत्तम पुरी का जमाना आया, डिकी रत्नागर, और सबसे पहले तो तलियार खान साहब थे जिन्होंने कमेंट्री की परंपरा शुरू की। तो इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा। आकाशवाणी के जो खेल कार्यक्रम होते थे, खासकर स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम, जिसमें दिन भर के खेल खबरों का लिखा जोखा रहता था, तो ये आकाशवाणी का एक ऐसा योगदान है जो मुझे कहते हुए बिल्कुल कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्थान, मैं सबका नाम तो नहीं लूंगा लेकिन मैं अपने समाचार संस्थान का नाम ले सकता हूँ, बीबीसी में भी हम लोग हमेशा आकाशवाणी के खेल कार्यक्रम पर नजर रखा करते थे।
1: सिर्फ क्रिकेट या हॉकी ही क्यों, एशियन गेम्स का रोमांच हो, राष्ट्रमंडल खेलों में तिरंगे का शान से लहराना हो, या फिर खेलों का महाकुंभ ओलंपिक, आकाशवाणी ने हर पल को देश के साथ जिया है।
2: निशानेबाजी जैसे खेल जिन्हें लंबे समय तक आम दर्शकों से दूर माना जाता था, उसकी बारीकियों को, उसके नियमों को और खिलाड़ियों के संघर्ष को आकाशवाणी ने सीधे श्रोताओं के दिलों तक उतारा। पूर्व ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता अंजलि भागवत यादों को कुछ इस तरह साझा करती हैं।
3: आकाशवाणी बचपन से हमारा रूटीन का एक हिस्सा रहा है। मेरी माँ पहले आकाशवाणी सांगली केंद्र में गाया करती थी, तो सुबह उठते ही पहले ही सारे गाने हम सुनते थे। बहुत अच्छा लगता था वो माहौल, घर का, सुबह का बनना। 88 वॉज माई फर्स्ट नेशनल, तो तब तो ऐसे कोई इतने सारे चैनल्स और वो कुछ नहीं था, तो आकाशवाणी यही हमारे प्रोमिनेंट चैनल्स थे। तो तब बहुत सारी मेरी इंटरव्यूज आकाशवाणी में हुई है। मैं आकाशवाणी केंद्र वर्ली में बहुत बार जा चुकी हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ जाने की और जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वो शेयर करने की, क्योंकि आकाशवाणी ऐसा माध्यम था उस वक्त जो हर घर तक पहुँचता था। जो भी मेरा शुरुआत का जो अचीवमेंट्स है वो लोगों तक पहुँचने में या लोगों तक पहुँचने के बाद शूटिंग लोगों को पता चलने में आकाशवाणी में, मतलब मैं उनको क्रेडिट देती हूँ या उनका बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये खेल बहुत नया था हमारे वक्त।
2: आज का दौर खेलो इंडिया गेम्स का है, नेशनल गेम्स का है। आज भी जब देश का कोई खिलाड़ी मैदान पर पसीना बहाता है तो आकाशवाणी अपनी रेडियो रिपोर्ट्स, पल पल की अपडेट्स और पॉडकास्ट के माध्यम से देश के करोड़ों खेल प्रेमियों को उस रोमांच से जोड़े रखता है।
1: समय आगे बढ़ता है, पीढ़ियां बदलती हैं, तकनीक नए रास्ते बनाती है, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ और गहरी होती जाती हैं। आकाशवाणी की आवाज भी एक ऐसी ही विरासत है जिसने देश को खबरों से जोड़ा और खेलों के रोमांच को घर घर पहुंचाया। कभी किसी ऐतिहासिक समाचार की गूंज बनकर, तो कभी आखिरी गेंद तक सांसें थाम देने वाली कमेंट्री बनकर। आकाशवाणी के इन 90 गौरवशाली वर्षों का हार्दिक अभिनंदन।

अंतिम रूपक, आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खिला, आलेख आनंद श्रीवास्तव, वाचन स्वर नवोदिता मिश्रा और आनंद श्रीवास्तव, स्वरांश सहयोग आकाशवाणी संग्रहालय और प्रसार भारती संग्रहालय, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में अप्रैल माह से प्रारंभ 3 कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और

0: ये आकाशवाणी है। नमस्कार, रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। Tonight we present a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri M.S.N. Murthy.
0: Sri M.V. Subbarayudu aur Srimati M. Jalajakshi ke putra Sri M.S.N. Murthy sangeet ke parivesh mein hi pale bade hain. Aapki mata Srimati M. Jalajakshi swayam ek sangeet kalakar rahi hain. Aapne sangeet ki shiksha sangeet sahitya kala nidhi गुरु श्री एनसीएच कृष्णमाचार्युलु के पास प्राप्त की। बाल कलाकार के रूप में ही आपने अनेक मंचों पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विद्वान श्री एमएसएन मूर्ति ने कई प्रतिष्ठित संगीतज्ञों के साथ विभिन्न मंचों पर वायलिन संगत किया। इतना ही नहीं, आपके वायलिन एकल प्रदर्शन के लिए आपको समालोचक प्रशंसा भी प्राप्त है। आपने राष्ट्रीय एकता संगीत कार्यक्रमों के तहत हिंदुस्तानी संगीत कलाकारों के साथ जुगलबंदी कार्यक्रम में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। कई प्रतिष्ठात्मक संस्थानों ने आपकी कला को निदर्शनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन माना है। आप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के पैनलबद्ध कलाकार भी हैं। आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आकाशवाणी के स्टाफ कलाकार रह चुके श्री एमएसएन मूर्ति को वायोलिन में टॉप ग्रेड, कर्नाटक गायन और वायोला वादन में ए ग्रेड प्राप्त है। आपको कई प्रतिष्ठित मंचों द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आज के कार्यक्रम में श्री एमएसएन मूर्ति की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री एम हरिबाबू और सहायक वायलिन पर श्री साकेत पंतुला।
1: श्री एम एस एन मूर्ति's एक्सपोजर टू म्यूजिक बिगैन अर्ली। हिज मदर श्रीमती एम जलजाक्षी इज ए वेटरन वोकलिस्ट। रेकग्नाइज्ड एज अ चाइल्ड प्रोडिजी, श्री एम एस एन मूर्ति ट्रेन्ड अंडर द गाइडेंस of Sangeet Sahitya Kalanidhi, Sri N.C.H. Krishnamacharilu. He served Akashvani Vishakhapatnam as a staff artist for 2 decades. A versatile musician, Sri M.S.N. Murthy has the rare distinction of having top grade in violin, A grade in vocal, and an A grade in viola of Akashvani and Doordarshan. Sri M.S.N. Murthy's music is recognized for its amazing and silky smooth yet crisp and pure tonal quality, fine aesthetic sense, and for the artist's total command over the instrument. He has performed Jugalbandi concerts in collaboration with Hindustani classical musicians and has accompanied almost all veteran Vidwans of yesteryears and most of the leading contemporary artists. An empaneled artist of Indian Council for Cultural Relations, Sri M.S.N. Murthy has performed extensively in the country and abroad, in various prestigious centers of art and culture, and many reputed organizations and universities across the globe. He has been the recipient of several prestigious awards for his contribution in the field of music. In tonight's performance, Vidwan

0: Sri Emerson Murthy is accompanied by Vidwan Dr. Vankayala Venkata Ramanamurthy on the Mridangam, Vidwan Sri M. Haribabu on the Ghatam, and supporting violin is being provided by Sri Sakit Pantula.
1: Vidwan Sri Emerson Murthy aaj ke karyakram ka aarambh kar rahe hain. अठाणा राग में पुरंदर दास की रचना सकल ग्रह बल नीने से जो कि खंड चापू ताल में निबद्ध है.
0: श्री एम एस एन मूर्ति बिगिन्स दिस इवनिंग्स कॉन्सर्ट विद अ कृति ऑफ पुरंदर दास. इट इज एन अठाणा रागम खंड चापू तालम.

0: श्री एमएसएन मूर्ति की अगली प्रस्तुति है अमृत वर्षिणी राग में मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचना आनंद अमृत आकर्षिणी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री एमएसएन मूर्ति नाउ प्रेजेंट्स अ कृति ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितार इन अमृत वर्षिणी रागम आदि तालम।

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू और सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतुला। कार्यक्रम को जारी रखते हुए श्री MSN मूर्ति की अगली प्रस्तुति है हर हर प्रिय राग में संत त्यागराज की रचना चक्कनी राज मार्गमु, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: इन टुनाइट्स रविवासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा यू हैव बीन लिसनिंग टू अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटिक स्टाइल बाय विद्वान श्री MSN मूर्ति। He is accompanied by Vidwan Dr. Vankayala Venkata Ramanamurthy on the Mridangam and Vidwan Sri M. Haribabu on the Ghatam. Violin support is being provided by Sri Saket Pantula. Continuing this evening's concert, Vidwan Sri MSN Murthy will now present Chakkani Raja Margamu. It is in Karhara Priya Ragam Aditalam and is a composition of Saint Tyagaraja.

यह था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमण मूर्ति ने और घटम पर विद्वान श्री एम हरि बाबू ने। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है खमास राग में धर्मपुरी सुब्बा रायर द्वारा रचित जावली मरुबारी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है। That was Taniyavartanam on the Mridangam by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramanamurthy and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Sri MSN Murthy concludes this evening's concert with Marubari, a javali of Dharmapuri Subbarayar. It is in Khamas Ragam Aditalam.

अभी तक आप रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायोलिन वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू, सहकार वायोलिन पर श्री साकेत पंतुला। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया। With this we come to the end of tonight's रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, wherein we presented a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri MSN Murthy. He was accompanied by Vidwan Dr. Vankayala Venkata Ramana Murthy on the mridangam and on the ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Violin support was given by Sri Saket Pantula. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $9 अरब की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर $45 अरब तक पहुँचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरुआत यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में LPG सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक

0: Afghan 6-0 in the final. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज पर तथा FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 तथा 8 सेकंड हुए हैं। आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।